सुप्रभात, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहां जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड या

मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: सुप्रभात, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड में, कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुन के बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ है आप। और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी स्टूडियो में मौजूद है। हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे एफ एम मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: हाँ, वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं?
1: देखिए, पहले जैसे आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम को हम अपनी एक्सरसाइज में, हम अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है और हम अपने डेली रूटीन के काम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा समय भी ना हो तो हम 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का सूक्ष्म व्यायाम करें और उससे हमारी बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। बाकी जैसे आप कहीं ड्राइविंग पे हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप आराम से लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और हमारी पूरी दिनचर्या अच्छे से बीतती है। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
0: बिल्कुल, एग्जैक्टली।
1: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उन पे कभी अवेयर नहीं होते, उन पे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस रहेगा, और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
1: देखिये, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
1: टाइम तो होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें। okay. उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं। बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
0: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
1: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
0: ठीक है,
1: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है। हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
1: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है,
0: प्लीज,
1: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है, वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
0: वायु मुद्रा,
1: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
0: वाओ, क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
1: देखिए, स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
0: ओके,
1: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
0: जी,
1: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
0: वाओ, दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते
1: मेडिटेशन तो है ही भाई, आपको स्ट्रेस से दूर करने
0: के। कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं है स्थिरता के साथ।
1: देखिए, मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं।
0: ओके,
1: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है।
0: ओके,
1: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहिए वहाँ जा सकते हैं।
0: क्या बात,
1: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
0: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
1: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में, जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं, वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए, कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम। योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
0: क्या बात है।
1: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब हम अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ, ये देखा हुआ है सभी के प्रति, मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे अच्छे होने लगते।
0: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन हैं और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना, इट्स नॉट इजी, है ना?
1: yes,
0: हर
1: yes.
0: किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है जब वो सक्सेसफुल होता है। आज yes, आपको yes. इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या, मतलब आपको कभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
1: देखिए, मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है।
0: अरे वाह, क्या नाम है सर?
1: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक है वो।
0: अरे वाह,
1: तो उनका बहुत कोऑपरेशन रहता है। मेरा योगा, उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया।
0: Lovely.
1: और जब मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कम्प्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया।
0: लवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
1: सुबह तो योगा भी करवाती हूँ, योगा स्टूडियो के लिए। तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे, मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा। हाँ, तो वो मेरा
0: कंपनी देती है, सपोर्ट करते हैं। बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे, तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो। बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती है?
1: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
0: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार वाली, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा के रखते हैं रुचि मैम।
1: हाँ जी,
0: चलिए मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू गाइस, एफएम मुरादाबाद 89.9।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हो, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृहमंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और बीजेपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नए समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप है उसमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कानपुर में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई है। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुग्यो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
5: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
6: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी। धन्यवाद जागृति। एफआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा यह झूठ। टाइम ट्रिब्यून ने लिखा है घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद यह फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डोब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है। अब ऑन ड्यूटी

0: बुनियादी ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। प्रपोज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 crore rupees। Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in an eliminator match in Chandigarh.

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
6: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

एफएम मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे हैं। मेरा नाम आरजे आनंद है और आप सभी को पता है जब भी हम लोग रेडियो स्टेशन पे आते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ काम की चीजें लेकर आते हैं और इस कंपनी

0: फुलफिल करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, आरजे राज भी मेरे साथ हैं। भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच यार, अपने काम की चीज में मुझे भी जोड़ने के लिए। फिलहाल हम जुड़े हुए होते हैं, बहुत कम होता है कि जब हम जुड़े हुए नहीं होते किसी काम की चीज में।
0: लेकिन मजा तब आता है जब एक साथ दो लोग होते हैं।
1: हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजते तो दो हाथ का होना बहुत जरूरी है। तो बस आज के शो में ऐसे ही कुछ होने वाला है, दोनों हाथों को मिलाकर एक ताली बजने वाली है। उस ताली का रिजल्ट क्या मिलने वाला है वो आपको हौले हौले बता लेगा वो आनंद बता।
0: सो देखिए क्या है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, रेडियो सिर्फ गाने नहीं सुनाता है, एंटरटेनमेंट नहीं करता है, वो आपकी फिटनेस का भी ध्यान रखता है। और नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, इसी खास मौके पे हमने भी एक खास एनर्जेटिक और पॉजिटिविटी जिनसे मुझे मिल रही है, तो मैं चाहूंगा आरजे राज जरा उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कुछ।
1: देखो ऐसा है ना कि तारीफ करने को तो मैं बहुत कर सकता हूँ, ठीक है ना
0: भाई? तू
1: तो
0: तारीफ मत करना, तेरी तारीफें थोड़ी सी अलग वे में जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी सिर्फ काम की बातें हो जाए।
1: मेनली मैं बस इतना बोलने वाला हूँ और इंट्रोड्यूस करने के लिए शायद इतना ही काफी है कि मुरादाबाद की क्वीन फिटनेस के मामले में, हाँ जी बिल्कुल, मतलब फिटनेस की क्वीन उन्हें बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुराद का हर लड़का या फिर हर लड़की उन्हें जानती है अगर वो फिटनेस से कनेक्टेड है। और फिटनेस से कनेक्टेड नहीं है तो आज हम कनेक्ट कराने वाले हैं और आखिर कौन है वो फिटनेस की क्वीन, तो चलो उन्हें इंट्रोड्यूस करा।
0: तो चलिए आरजे राज प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए भाई।
1: बिल्कुल।
0: और आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है जिनके बारे में हमने एक लंबा चौड़ा चिट्ठा पढ़ा है, उनका स्वागत कर लेते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। कौन है ये? फिटनेस की खिलाड़ी अपूर्वा शर्मा जी। वेलकम टू एफएम मुरादाबाद फिटनेस कोच अपूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए पहले तो आपको कैसा लगा स्टूडियो में आके?
2: मुझे कैसा लगा, इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। मैं बहुत टाइम से ये सोचती थी कि कैसा स्टूडियो होता होगा जहाँ आप लोग बोलते हैं और सिर्फ हम आपकी आवाज सुन पाते हैं विदाउट योर एक्सप्रेशंस, और आपकी आवाज से ही हमको आपके एक्सप्रेशन जज करने होते हैं कि जब आप प्रैंक्स करते हैं तो आप खुद भी हंस रहे होंगे या नहीं, या सीरियस होंगे, या फिर जब वो आपका लाइफ होता है उसके बाद आप कितना हंसते होंगे कि आज हमने ये किया। तो वो आज मुझे लाइव देखने का मौका मिल रहा है, आई एम प्रिविलेज्ड। थैंक यू सो मच।
0: एंड टू बी ऑनेस्ट टुडे आई फील कि मैं कांटा लगा गल के साथ बैठा हूं, बिकॉज आप देख नहीं पा रहे होंगे अभी आप, मतलब वो मैं आपको लाइव बता रहा हूं उनकी जो चोटी है ना आगे की, वो बड़ी स्टाइलिश दिख रही है मुझे, वो रील्स भी जाएगा इंस्टाग्राम पे, डोंट वरी। सो भाई राज तुझे कैसे लग रहा है आज इतना सुंदर चांद स्टूडियो में आए, लाइटें फेल हो गई है?
1: देखो ऐसा है ना,
0: ऐसी बात नहीं, मैं राज के साथ क्यों, मजा आएगा।
1: देखो मेन चीज ये है कि इन सफेद दीवारों में बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे
0: और आज ये भी सफेद ड्रेस पहन के आए,
1: रंगीन करने के लिए कोई आ गया है
0: क्या? लवली है, ब्यूटीफुल। अच्छा तो
2: ये बहुत अच्छा तरीका था फ्लर्ट करने का, आई लाइक।
0: बहुत कम ऐसा मौका मिल पाता है हम लोगों को। एनीवेज चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैम देखिए नवरात्रि का जो है बहुत ही पावन पर्व चल रहा है, सो मुझे लगता है राज भाई कि इस खास मौके पे एक बहुत ही खूबसूरत देवी शक्ति हमारे स्टूडियो में आई, तो हम फ्लर्ट कम करेंगे अब।
2: बिल्कुल,
0: अब काम की बात ज्यादा करेंगे।
1: तो
0: फिलहाल एवरीबॉडी
1: कंट्रोल करने,
0: बिल्कुल, तो एवरीबॉडी अब काम की बात करते हैं। तो अपूर्वा जी सबसे पहले ये बताइए आपकी खूबसूरती का राज क्या है?
1: ओह माय गॉड,
2: मेरी खूबसूरती का राज है
0: राज या फिर फिटनेस?
2: ऐसा कुछ नहीं है, मेरी खूबसूरती का जो राज है वो राज नहीं है।
0: राज तो यही बैठा है,
2: राज नहीं है। वो है मेरी, मेरा जिम, मेरा स्केड्यूल, मेरा डिसिप्लिन, मेरा डाइट एंड माय फिटनेस।
0: ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने और बहुत मजा आने वाला है एवरीबॉडी आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में। तो अपूर्वा जी सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे एफएम मुरादाबाद परिवार की ओर से। प्रोग्राम का नाम है एक खास बातचीत, मतलब विशेष बात, और उस विशेष बात में आप विशेष गेस्ट हैं हमारी आज की, आरजे राज भी हमारे साथ कंपनी दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि आपको फिटनेस का क्रेज कहाँ से आया? मतलब
2: एक्चुअली मेरे को जो इंस्पिरेशन मिली है वो मेरी मदर से मिली है।
0: ओके
1: ओके।
2: और मतलब जब हम छोटे छोटे से थे तब से शी इज वर्किंग। और सबसे बड़ी चीज क्या थी, एक दिन मैंने अपनी मम्मा से क्वेश्चन किया, माय मदर नीरा शर्मा जी, तो मैंने उनसे एक दिन क्वेश्चन किया कि मम्मा आप जॉब भी करते हो, आप हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करके जाते हो, हमारा लंच भी बना के जाते हो, फिर उसके बाद वापस आके इवनिंग स्नैक्स भी बनाते हो, फिर शाम को फिर म्यूजिक क्लासेस भी लेते हो, और फिर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे उठ के आप पूजा भी कर लेते हो, कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने मेरे को एक छोटी सी बात बोली कि बेटा अगर आप अपने आप को और अपनी डाइट को और अपनी फिटनेस पे ध्यान दोगे ना, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप जीत नहीं सकते।
0: True.
2: तो ये एनर्जी मेरी इसलिए आती है क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं थकूंगी, ये मेरी सारी ड्यूटी है जो मुझे परफॉर्म करना है, और मैं इसके लिए अपने डाइट का और अपनी फिटनेस का ध्यान रखती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों की भी डाइट का ध्यान रखती हूँ, तो आगे चल के आप इसी को फॉलोअप करो। तो ये मेरी सारी इंस्पिरेशन मेरी मदर से।
0: क्या बात है, आपकी मदर के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अपूर्वा जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपको जो मोटिवेशन आया वो अपनी मम्मी से आया, और मोस्टली मुझे लगता है कि जब पेरेंट्स का सपोर्ट हो जाता है एक लड़की को तो आगे और ज्यादा बढ़ चढ़ के चीजों को अच्छे से करती है, मतलब उनकी कोशिश होती है कि आप अपना 100% दें। ये चीज आप भी कर रही है मुरादाबाद शहर में, नो डाउट सारे लोग आपको जानते हैं, आई एम श्योर जो नहीं जानते आज वो भी जानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये विमेंस के लिए स्पेशल काम कर रही है यार, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि, मुझे बाद में पता चला मैम कि आप स्पेशली विमेंस के लिए करती हैं, तो थोड़ा सा बताइए ये वाला कैसे आपने सोचा?
2: एक्चुअली मैंने इसलिए सोचा ये कि देखिए जिम तो मुरादाबाद में बहुत सारे हैं, यूनिसेक्स है, और ऐसा नहीं है, मैं कभी ये नहीं कहती कि यूनिसेक्स जिम में सेपरेट फीमेल्स बैचेस नहीं है, बट उसमें उन बैचेस में भी अभी कोई मेल का कोई टाइमिंग इन आउट होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको आने से रोक सकते हो. किसी कोई इवनिंग नहीं आ पाया तो हो सकता है फीमेल टाइमिंग में आके अपने कार्डियो कर रहा है ऑल. बट मुझे एक ऐसा लगता है कि जिम एक ऐसा प्लेस है जहां पर एक फीमेल जो है बहुत कंफर्ट माहौल चाहती है, और जो एक्सरसाइज के हमारे पॉस्चर्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आप किसी मेल के सामने कंफर्टेबल नहीं हो सकते. फिर क्या करना पड़ता है, हमको वो एक्सरसाइजेस स्किप करनी पड़ती हैं. या फिर इफ यू आर फीलिंग लाइक कि मैं थोड़ा सा फ्री होके थोड़े यू नो कह सकते हो आप शॉर्ट्स में मैं इजीली वर्कआउट करूं, तो कई बार ऐसा होता है यार बॉयज भी जैसे वर्कआउट करते हैं तो वो अपना यू नो गंजी वंजी पहन के और शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के, रीजन है उसका. आप जब तक मसल जिस पे आप वर्क कर रहे हो आपको दिखेगी नहीं मेरा, तो आपको एक मोटिवेशन नहीं आएगा काम करने का. ऐसे गर्ल्स
0: भी नहीं बनता है,
2: ऐसे गर्ल्स फील करती हैं. बट अगर यूनिसेक्स जिम है और मेल्स हैं वहाँ, तो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो ये फील करते हैं कि यार हम ये एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं या फिर हम ये नहीं करते, या फिर शाय फील करती हैं, हेजिटेट फील करती हैं. ये सारी चीजें मैं फील कर रही थी जब मैं खुद यूनिसेक्स जिम में जा रही थी. तो फिर मैंने इस चीज का एक बैरियर को तोड़ने का सोचा कि यार क्यों ना सिर्फ लड़कियों के लिए ही खोला जाए, जिसमें लड़कियां जो मर्जी पहने जैसे मर्जी रहा, एक सेफ माहौल हो, एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो, और जब उन्हें एक फीमेल को एक फीमेल ट्रेनर मिलेगी तो शायद वो और भी अच्छे से ब्यूटीफुली अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाएंगी. तो ये एक रीजन था कि सिर्फ फीमेल को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे दूं जहां पर वो बिना. और सबसे बड़ी चीज है, एक और चीज है अबव ऑल, कि कितने मुरादाबाद में कितने ऐसी फैमिलीज हैं जो एक लड़की को या अपनी वाइफ को या अपनी डॉटर को वहां उस जगह पे भेजना ही नहीं चाहते जहां पर मेल्स, तो उनके लिए भी एक बड़ा ड्रॉबैक था. वो चाह रही है जिमिंग करना, फिटनेस करना, वर्कआउट करना, बट उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, उनके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे. तो उस सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए मैंने एक ऐसी जगह बनाई जहां पर विदाउट एनी कोई रोक टोक आप आओ, अपने फिटनेस पे ध्यान दो, अपना मेंटली हीलिंग करो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, और इसके अलावा भी अगर कोई दिल में कुछ राज वाज परेशान कर रहे हैं. राज का नाम फिर आ गया यार, क्या
0: आता ही रहेगा, आनंद और राज ऐसी चीजें आती रहेगी.
2: कोई सीक्रेट ऐसे हैं जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, आप उससे परेशान हो रहे हैं, वो भी आप आके डिस्कस कर सकते हो. तो मेंटल, फिजिकल एंड वोकल तीनों चीजें एक ही जगह पे लाके रखती.
0: बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस.
1: मतलब कहते हैं क्रिकेट की फील्ड में शर्मा जी का लड़का कमाल कर रहा है, वैसे फिटनेस की जिम में जो है शर्मा जी की लड़की कमाल कर रही है आनंद भैया.
0: सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल.
1: जैसे कि हमने ये तो सुन लिया आनंद भैया कि फीमेल्स के लिए स्पेशली मैम ने जो है जिम प्रिपेयर कर रखा है. सबसे पहली मेन थिंग ये है कि उस जिम का नाम क्या है, उस जिम का नाम रखने के पीछे रीजन क्या है, ये भी मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा. तो आनंद भाई जाना जाए?
0: बिल्कुल यार, बिल्कुल.
1: हाँ, तो इस बारे में थोड़ा बताइए हमें, एक्सप्लेन करके.
2: देखिए द अल्टीमेट फिटनेस जिम जो नाम मैंने रखा था,
1: हाँ जी,
2: वो ये सोच के रखा था कि यार जिम तो सब है, अल्टीमेट क्या होने वाला है,
1: अल्टीमेट क्या होने वाला
2: तो है? हम यहाँ पर अल्टीमेट चीजें दे रहे हैं. हम यहाँ फिजिकल फिटनेस भी दे रहे हैं, हम यहाँ मेंटल हीलिंग भी दे रहे हैं, यहाँ हम एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं. समय समय पर हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, कभी माहौल हुआ डांसिंग का तो डांसिंग ही हो रही है, कभी माहौल हुआ चिट चैट का तो सिर्फ वोकल चिट चैट हो रही है, जिससे मानसिक रूप से भी जब कोई आपको फ्रेंडली माहौल मिलता है फीमेल्स के साथ, तो स्पेशली है कि अगर वो घर से डिप्रेस्ड होके आई हैं और अगर हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं और काइंड ऑफ काउंसलिंग कह लो या कुछ, तो वो जब घर जाती हैं तो रिफ्रेश होके जाती हैं, तो नेक्स्ट डे वहां से एक हमें बड़ा अच्छा कमेंट मिलता है, यार बीवी गई तो नाराज थी, आ तो बड़ी खुश होके आई है,
1: खुश होके आई है.
2: इट्स लाइक दैट, हम वी आर गिविंग अल्टीमेट थिंग्स, और अब बहुत कुछ और भी इनोवेटिव करने वाले हैं, इसीलिए हमने इस जिम का नाम द अल्टीमेट फिटनेस जिम रखा.
1: क्या बात है, मतलब कि नाम के पीछे भी राज थे और राज खुल के आ गए सामने.
0: लेडीज आपको सुन रही हैं इस वक्त, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारी लेडी हैं जो जिम जाना तो चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर के इतने सारे काम होते हैं, कुछ घर के रूल्स होते हैं कि वो नहीं आ पाती है. ठीक है, हर किसी के घर में परमिशन भी नहीं है, क्योंकि आज भी मैं मानता हूँ कितना हमारा समाज एजुकेट हो जाए और हो रहा है, बट कुछ चीजें हैं जो अभी भी है समाज में. तो क्या वो घर पे रहकर भी अपने आप को फिट रख सकती हैं? आपके पास कोई ऐसे टिप्स जो आप उन्हें देना चाहें?
2: अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं यहाँ इसलिए भी आना चाह रही थी आपको बताऊं आनंद कि ये इन्फॉर्मेशन ना मैं अपने सोशल मीडिया पे टाइम टू टाइम डालती हूँ, लेकिन जो 89.6 के व्यूअर्स हैं वो मेरे सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग होंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचेगी. ये मेरा बेस्ट रीजन था, ये क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल पूछा है आपने कि जो फीमेल्स अफोर्ड नहीं कर सकती या फिर वो आ नहीं सकती अपने टाइम स्केड्यूल की वजह से या फिर घर में परमिशन ना होने की वजह से, वो फिटनेस को कैसे लेती हैं और उन्हें कैसे लेना चाहिए. तो उन सबके लिए मेरे लिए मेरा ये एक मैसेज है कि गाइस देखिए, जिंदगी में शरीर से बड़ी पूजा, शरीर से बड़ा मंदिर कोई नहीं है. आप लोग कुछ भी आज कर पा रहे हैं बचपन से लेकर अब, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी आपका साथ दे, ठीक है। और ये वो जगह है, आप अपना घर क्लीन करते हो, आप अपना मंदिर क्लीन करते हो, आप अपने बच्चों का रूम्स क्लीन करते हो, आप अपना आस पड़ोस क्लीन करते हो, इवन कि हफ्ते में एक बार आप अपना टेरेस भी क्लीन करते हो। व्हाट अबाउट योर बॉडी, जिसकी वजह से आपका वजूद है, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी है, तो इसको सिर्फ ये सोच के इग्नोर ना करें, ठीक है। एज के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सबके साथ होती हैं, मेडिकल हेल्थ इश्यूज हैं, घुटनों में दर्द, एज के साथ कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं अनफिट, इस तरीके से आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को कैरी कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। अगर आप जिम नहीं आ पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, अपना एक स्केड्यूल बनाइए पूरे दिन में, एक घंटा किसी भी वक्त, इसका कोई टाइम नहीं होता, आप जब भी फ्री हो एक घंटा अपने वर्कआउट के लिए निकालिए, चाहे आप योगा करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे कुछ भी ना हो, तो आपके घर में अगर स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां, तो 10-15 बार उसको ऊपर चढ़ें उतरें, इस तरीके का कोई भी फिजिकल वर्कआउट एक घंटा कंटिन्यूअसली, सबको अलग हटा के, पूरी दुनिया को अलग हटा के अपने लिए करें, पहली चीज। दूसरी चीज, डाइट का ध्यान रखें। मैं नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी खा सकते हो ऐसे एटमॉस्फेयर में जब आपको सबको सब कुछ बनाना होता है, बट इतना जरूर हो सकता है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें। अगर अनहेल्दी बनाए तो उसको कम खाएं, कुछ हेल्दी बनाए तो उसको ज्यादा, सिर्फ इतने ही चेंजेस से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग जिमिंग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, रात का खाना प्लीज बंद करें। रोटी, चावल, ये जितनी भी हैवी चीजें, ऑयली नॉन वेज हो गया या आपका पनीर हो गया, ये सब अपनी जितनी फेवरेट चीजें हैं सब लंच में ऐड करें। और रात में आप या तो खाना बिल्कुल ना खाएं, और खाएं तो बहुत लाइट खाएं और सेमी लिक्विड खाएं। सिर्फ ये दो तीन चीजें करने के बाद ही आपकी लाइफ में इतने ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे ना, मैजिकली चेंज हो जाएंगे, कि आपको खुद बॉडी से, अपनी अपनी एनर्जी से प्यार होने लगेगा, और आपको खुद ब खुद जिम खींच के अपनी तरफ बुला लेगा।
0: ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पूर्वा जी आपने। एक क्वेश्चन और है राज, फिर तू पूछ लियो। मैंने ना बहुत सारे लोगों के साथ मैंने जब बातचीत की है, जो मेरे खुद के रिलेटिव जिम जाते हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे भी रेकमेंड करते हैं कि आने तुम जिम जाओ, तो मैंने उनसे पूछा जिम में सबसे सॉर्टेड चीज क्या है, तो उसने मेरे को ना एक चीज बोली है पूर्वा जी, कि लोग कहते हैं नहीं 50% जिम होता है, 30% 40% आपका डाइट होता है, तो ये कंफ्यूजन बहुत है लोगों में। आप एक सही सजेशन क्या देना चाहेंगे, कि डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वर्कआउट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
2: फाइन, मैं उसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई इंसान है जो कोई काम, ठीक है, उसके पास सारी फैसिलिटीज है घर पे, वो बहुत अच्छी डाइट ले रहा है, उसको शेफ भी है उसके यहाँ, एवरीथिंग इज, मतलब लाइक जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल है, लेकिन उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, ना मेंटली ना फिजिकली, वो घर में अपने लाइक अ किंग या लाइक अ क्वीन, और वो बहुत हेल्दी डाइट ले और बहुत अच्छा अच्छा खा रहा है, कोई ऑयली नहीं खा रहा, कोई जंक नहीं खा रहा, कोई पैकेजिंग फूड नहीं खा रहा, अगर आप उसका डेटा चेक करोगे या किसी डॉक्टर के पास जाके उसे एग्जामिन करोगे, तो वो अनहेल्दी निकले। इसी तरीके से कि एक इंसान है जो बिल्कुल भी डाइट फॉलो नहीं कर रहा है, और वो घंटों जिम में रहता है और वर्कआउट करता रहता है और बहुत अच्छी बॉडी मेंटेन करी, आप उसको भी एग्जामिन करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी अनफिट। तो इट्स अ रोल ऑफ 50। डाइट जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। अगर खाली डाइट से आप पतले होगे तो बॉडी लूज हो जाएगी, बॉडी पतली जरूर होगी, आप वेट लॉस जरूर करोगे, लेकिन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपका जो फैट है वो वैनिश नहीं होगा, वो लटक जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप वर्कआउट करोगे और डाइट नहीं करोगे तो कैलोरी डेफिशिएट में नहीं जाएगी, ना वेट बढ़ेगा ना कम होगा, और वो पैरेलल रहेगा। दोनों का रोल बिल्कुल माँ और पिता जैसा है, जैसे माता और पिता का एक बच्चे।
0: जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अपूर्वा जी जैसे मतलब अगर आप जिम जाओगे तो मोटे हो जाओगे, जिम मोटे होने के लिए जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जिम में सिर्फ आप फिट होने के लिए जाते हो, आपकी बॉडी जो है कट शेप में आती है, थोड़ी सी स्टाइलिश आप दिखते हो, तो क्या ये भी एक मिथ है या फिर सच में वेट ग्रो होता है हमारा अगर हम जिम जाते हैं?
2: मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअली मैं भी ऑनलाइन लाइव करती रहती हूँ इंस्टा पे या फेसबुक पे, तो मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं, जैसे अगर हम जिम ज्वाइन करेंगे और जिम छोड़ देंगे उसके बाद हम वापस वही वेट गेन कर, मतलब
0: ये तो है
2: ना। ऐसे ही आपने जो क्वेश्चन किया कि जिम क्या सिर्फ मोटे और पतले होने के लिए है, ऐसा तो ये सारे मिथ्स, ये उन लोगों के मिथ्स बनाए हुए हैं जो जिम को कभी प्रेफर ही नहीं करेंगे, ना अपने आप के लिए और ना दूसरों। अभी लास्ट मैंने वीडियो भी बनाई थी एक बॉडी शेमिंग के ऊपर, अभी इंस्टा पे मैंने बनाई है, शायद आपने, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो बॉडी शेमिंग को लेके एक हथियार बना लेते हैं कि यार हम जैसे मर्जी सही, आप कोई नहीं होते, हम पर फिंगर आउट करने वाले, हम अपने घर में अच्छा खा पी रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट अंदर इंटरनली आप जाके देखेंगे तो वो इतने ज्यादा अनफिट हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने हैं। तो ये सारे मिथ्स हैं उन लोगों के बनाए हुए जो जिनको फिट रहना पसंद नहीं, ठीक है, या जो फिटनेस को बिल्कुल वेस्ट चीज। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप जिम आ रहे हो, एग्जाम्पल देती हूँ, एक बाथरूम में तीन टैप्स लगी हुई है,
0: ठीक है,
2: दो टैप्स हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, उनका फ्लो बिल्कुल रेगुलर है, और बकेट में पानी आ रहा है या शावर है उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, पानी फ्लो में, एक टैप जो हमारी कभी यूज नहीं हो रही थी उसको जब हम अचानक खोलेंगे तो पानी का फ्लो गड़बड़ाए, पहले दिन भी गड़बड़ाएगा, दूसरे दिन भी गड़बड़ाएगा, कहीं जाके थर्ड फोर्थ डे वो फ्लो में पानी आना स्टार्ट होगा। सिमिलरली जब आपने अपनी बॉडी को फिटनेस दिया ही नहीं तो फिटनेस का ज्ञान आपको कैसे मिल सकता। स्टार्टिंग में आप जिम आओगे, आप डिमोटिवेट भी होगे, आपको बॉडी पेन भी होगा, आपको मसल पेन भी होगा, लेकिन एक दिन आफ्टर अ वीक और आफ्टर 15 डेज आप इतना स्मूथ आपकी बॉडी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि अब तक तो मैं कर क्या रहा था यार अपने साथ, मैं कितना गलत कर रहा था अपने साथ, ये तो राइट वे है जिसको मुझे करना चाहिए था, जो लाइफ मेरे को लीड करनी चाहिए। तो जिम एक ऐसा प्लेस है, इट्स लाइक अ मंदिर फॉर अ बॉडी। तो जिम से कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता अंटिल अनलेस आपका ट्रेनर अच्छा हो, उसको नॉलेज हो। कोई झोला जाप लेके नहीं बैठा हो, कोई यूट्यूब देखने वाला गूगल सर्च करके
0: एक्सरसाइज भी बहुत चल रहा है
2: एग्जैक्टली वो ना बैठा हो, अगर आपका ट्रेनर अच्छा है और उसको नॉलेज है तो वो आपके लिए बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे एक मंदिर एक परेशान व्यक्ति के लिए काम करता है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही।
1: तो चलो एक काम करते हैं, मैं भी पूछ लेता हूं आनंद भैया बीच में।
2: आपके क्वेश्चन से तो मुझे डर लगा।
1: नहीं नहीं, मेरे क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरो, काम का क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बिना काम का नहीं पूछने वाला हूं मैं। एक्चुअली मेरा जो अगला क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन रहेगा पूर्वा जी, जिम तो हम चले जाएंगे ठीक है ना, जिम जाने के बाद
2: मुझे आप देख नहीं रहे हैं थोड़ा सा।
1: मैं देख नहीं रहा हूं। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिलहाल मैं पूछ रहा था, हम जिम तो चले जाएंगे हाँ। पर जिम जाने के बाद मैटर करता है कि ट्रेनर वहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है हाँ। ठीक है, तो एक जिम के अंदर ट्रेनर क्या रोल अदा करता है इस बारे में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेनर के बिना जिम अधूरी है हाँ। और अगर आपको फिट रहना है तो ट्रेनर का होना भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जिम तो चले जाते हैं पर ट्रेनर नजर आता नहीं, बस वेट उठाते रह जाते हैं। उसका पता चलता है कि नहीं यार कमर में दर्द बढ़ गया है, वेट हमारा कम लॉस हुआ है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो इस बारे में थोड़ा बताइए।
2: ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत सारे लोगों, इसलिए मैंने ट्रेनर का जिक्र किया अभी कि जिम होना जैसे स्कूल में, स्कूल होना तो कितना भी लेवेश स्कूल हो, कितनी अच्छी फैसिलिटीज हो, टीचर्स के बिना और एक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना स्कूल बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इसी तरीके से एक जिम में और ट्रेनर का वही रोल है, क्योंकि कितनी सारी एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिनके पोस्चर्स आपको पता ही नहीं, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना वेट उठाना है, किस तरीके का पोस्चर्स रखना है। वो बड़ी मीम्स बन रही है ना, वो जिम ट्रेनर आता है वो पोस्चर हमेशा वो बम आउट वाला करा देता है, कितने सारे वो मतलब मीम्स है, तो वो गलत नहीं है। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब से, गूगल से, इधर उधर से, इंस्टा से देख के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वो गलत पोस्चर्स होते हैं। तो जिम में एक ट्रेनर का तो रोल बहुत है। और मैं सबको यही इन्फॉर्मेशन दूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस जिम में ये देखें कि ट्रेनर्स अवेलेबल हैं या नहीं है और वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं या नहीं देते हैं, अदरवाइज आपका जिम करना खराब है, आप अपना हार्म कर लेंगे अच्छा करने के बजाय।
1: बट एक चीज ये भी है ना कि हम कैसे समझेंगे कि जो सामने ट्रेनर बैठा है वो हमारे लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है, क्योंकि जिम तो बहुत है ट्रेनर भी बहुत है, पर वो ट्रेनर एजुकेटेड है या फिर नहीं है उस चीज को लेकर वो कैसे हम समझेंगे, ये चीज भी तो मैटर करता है।
2: देखिए ये ऐसे मैटर करता है कि जब आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने जाते हैं तो आप के लिए पूरा होमवर्क करते हैं, वो कैसे टीचर्स हैं, कैसा स्कूल है, कितने साल पुराना है, कहाँ से एफिलेशन है, कहाँ ट्रेन टीचर्स हैं या अनट्रेन टीचर्स हैं। सिमिलरली मैं वही बोलूंगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है, थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है कि ये ट्रेनर क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका जिम कब से ओपन हुआ है, कितने टाइम से काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात उसके रिव्यूज क्या है। आजकल तो सोशल मीडिया पे आपको रिव्यूज मिलते हैं कि फीडबैक्स क्या है, उसने कितने लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया, कहीं इसके जिम में कोई हादसा तो नहीं हुआ, कोई इंजरी तो नहीं हुई। सारा होमवर्क आपको करना पड़ेगा, आपका एक बार होमवर्क कंप्लीट होता है और आपको पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, तो जस्ट गो इट।
1: मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव देखिए, अगर पॉजिटिव थिंग आपको नजर आ रहा है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो क्या, तो भैया बाद में आएंगे बस हम
2: बस, ओके टाटा बाय बाय।
1: नहीं कभी कभी खासकर हम लड़कों का मुझे इतना बताया कि हम लोग जिम तो जाते हैं पर वहाँ पे एक वीक का हमें ट्रायल मिलता है फ्री, हमने ट्रायल लेकर वापस आ जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि वुमेन्स आती तो हैं पर एक वीक का ट्रायल लेकर वो वापस चली जाती है, वो लौट कर नहीं आती, तो ये प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं।
2: आपको सच बताऊं आपको झूठ लगेगी, ये मैंने बाकी के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिम ट्रेनर्स और जिम ओनर्स उनसे तो सुना है कि वो बंदी आई थी उसने इतना हार्ड वर्कआउट कराया और ट्रायल लिया और वापस लिया, बट टच वुड मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर मेरी चेयर पे ऑफिस टेबल पे कोई क्लाइंट आ गया और मैंने खुद से उसको डील कर लिया तो अभी तक मेरे पूरे करियर में ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे पास वापस ना।
1: मतलब इन्फ्लुएंस पावर मैम की अच्छी है,
2: व्हाटएवर आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आई एग्री विद इट। बट कोई भी स्टूडेंट जो मेरे पास बैठ के डिटेल्स लेके गया हो वो क्योंकि मैं कनेक्ट इतने अच्छे से कर पाती हूँ, मैं समझ पाती हूँ चीजों को, जो चीज चाहिए अगर आप उसको, आप ऐसे भी कह सकते हो, जो चीज अगर सामने वाले को चाहिए और आप उसको दे रहे हो है ना, और उसके इकोनॉमिकल रेट्स में दे रहे हो या फिर जिस तरीके से वो कंफर्टेबल है उस टाइमिंग पे दे रहे हो, तो आपका क्लाइंट क्यों जाएगा,
1: क्लाइंट क्यों जाएगा, ये बात।
0: तो राजीव कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: यार देखो मैं बात जरूर करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में है और वो क्वेश्चन मैं पूछे बिना शायद आज जाने नहीं दूंगा, ठीक है। फीमेल जिम की मतलब फीमेल्स की बात हो रही है और फीमेल्स की फिटनेस की बात हो रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पूछना चाहिए पीरियड्स के टाइम पर,
2: हाँ जी,
1: क्या फीमेल्स को जिम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए?
2: Okay.
1: क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम जिम जाते हैं और जब हम जिम के प्रति प्यार नहीं करते हैं तो आलस ना
2: हाँ.
1: और छुट्टी लेने का हमारा मन करता है कि आज छुट्टी हो जाए, बहुत तो पीरियड्स के टाइम पे क्या फीमेल्स ये बहाना बनाती है या फिर पीरियड्स के टाइम पे जिम जाना सही है या फिर नहीं है, इस बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे तो शायद हमारे फीमेल्स के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा।
2: नहीं बिल्कुल बताऊंगी, एक्चुअली क्या है, देखिए कुछ लोग वाकई में एक्सक्यूजेस बनाती हैं कुछ फीमेल्स कि उनको कोई क्रैम्प्स नहीं होते या इतना फ्लो नहीं होता, लेकिन वो कहती हैं कि भाई ठीक है इस बहाने दो दिन की छुट्टी मिल जाएगी, ट्रेनर भी नहीं डांटेगा और घर पे भी कोई प्रेशर नहीं होगा। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको सच में मेडिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए तो ओके है कि आप स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड डे जब आपको पेन बहुत है, क्रैम्स हो रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है, तो आप दो दिन का रेस्ट ले लें। लेकिन बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है इस लेवल की कि आप चल नहीं पा रहे हैं या कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बल्कि पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट करना और भी अच्छा होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसका पहला रीजन तो ये है कि जो जिन लोगों को फ्लो कम होता है उनका फ्लो

0: अच्छा होता है. दूसरी चीज, जिनको पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम है के साथ अगर वो पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट करते हैं तो वो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव होता है, और आगे चल के अगर वो लगातार ऐसा करते हैं तो उनके पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है. और थर्ड वन इज कि आपकी जो बॉडी है वो पीरियड्स के टाइम पे नीडेड होती है, कि अगर आप उसको वर्कआउट दोगे जो वर्कआउट चाहिए. वही बात आ गई कि अगर ट्रेनर आपका अच्छा हो तो वो आपको बता सकता है कि जब आपको पीरियड्स हो रहे हैं आपको क्या वर्कआउट करना है क्या नहीं करना. बट मिस करने वाला यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. पीरियड्स की वजह से वर्कआउट मिस करने वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता.
1: ओके.
0: और मैं उसको मतलब मैं उसको प्रमोट भी नहीं करती.
1: तो मतलब मेन थिंग ये कि पीरियड्स के टाइम पे आप जिम जा
0: बिल्कुल करना चाहिए,
1: आपके लिए हार्मफुल नहीं रहेगा.
0: बिल्कुल हार्मफुल.
1: दिमाग में ये मिथ था कि आप नहीं जा सकते, पर आप जाना शुरू कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जैसा कि मैम ने बताया. तो ओवर टू यू आनंद भाई.
2: चलो भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत ही बढ़िया. मुझे लगा चलो एक तो ऐसा सवाल निकल के आया जो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मुझे लगता है बात विमेंस की हो रही है, नारी शक्ति की हो रही है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट था. बहुत अच्छा लगा. और आजकल तो समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है.
0: मैं आप कर रही हूँ, चलते चलते आपके व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना चाहूंगी.
2: अच्छा भाई, हमने तो बोला भी नहीं, देखिए मैम के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है. अभी ये बोलेंगी चलते चलते मैं आरजे भी बोलना चाहूंगी. तो गाइस आप सुनने के लिए रेडी रहिए.
1: वैसे लगता है आनंद भैया आपने मैम का इंट्रो नहीं सुना था. मैम ने इंट्रो में बताया कि इनके जो मदर हैं, लेकिन वो सिंगर हैं ऑलरेडी.
0: सिंगर है
1: तो वो सुना
0: कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, चाहे वो सिंथेसाइजर हो, चाहे वो तबला हो, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे वो वट एवर इट मे बी, चाहे वो गिटार हो. माय मदर
2: ऑलराउंडर लग रही है,
0: वो सब कुछ आता है. उन्होंने कभी सीखा नहीं है.
2: अरे
0: मतलब सीखा इन द सेंस, अब बाद में तो उन्होंने म्यूजिक में ही सब कुछ किया, लेकिन उनको ये बाय बर्थ उनको गॉड गिफ्ट था, तो उनको सब कुछ आता है. तो वो प्रेरणा थोड़ी सी हमें मिली है
2: अपनी मधुर आवाज में. जरा हमारे
0: मधुर तो नहीं है, जिम वालों की आवाज
2: तो मधुरी आ रही थी मुझे.
0: जिम वालों की
2: गाने के बाद कितनी मधुर होगी,
0: मधुर नहीं हो सकती. बट ये सॉन्ग मेरा बहुत फेवरेट है. आई ऑलवेज यूज टू सिंग दिस जब भी मैं कहीं जाती हूँ, और बहुत अच्छे से
2: ये गाएंगे और हम बजाएंगे बाद में.
0: हाँ, जब मैं किसी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती हूँ तो मैं ये लाइनें जरूर बोलती हूँ. तो ये 89.6 के व्यूअर्स के लिए, और जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके लिए.
2: हम भी करते हैं.
0: थैंक यू.

0: कहना।
1: ब्यूटीफुल, मैंने कहा था ना मधुर आवाज है इनकी, वाकई में बहुत मधुर आवाज है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आज आप आई, इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने दिया। और गाइज आपने हमारे वीडियोस तो डेफिनेटली देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी भी देख सकते हो। मैम इंस्टाग्राम आप बता दीजिए अपना, जो हमारे लिसनर्स हैं जो ब्यूटीफुल आवाज सुन रहे हैं वो देखना भी चाहते हैं ब्यूटीफुल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम पे अपूर्वा 65 से जा सकते हैं, अपूर्वा शर्मा भी डालेंगे तब भी आ जाएगा अपूर्वा 65 से। इसके अलावा अगर आपको जिम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या फ्री फिटनेस टिप्स चाहिए तो हमारा पेज है फेसबुक पे द अल्टीमेट फिटनेस जिम के नाम से, TUFG के नाम से।
1: और बाकी अगर इनका पेज ना दिखे तो आप हमारे ऑफिशियल पेज पे आइए FM मुरादाबाद 89.6, वहाँ पर एक वीडियो दिखेगी जो मैम के साथ कोलैब है, वहाँ से भी आप मैम के अकाउंट में जा सकते हैं। राइट,
0: बिल्कुल।
1: जाने से पहले कोई एक मैसेज आज मुझे लगता है भाई होना चाहिए, है ना?
2: जाने से पहले
1: हम दोनों लड़कों के लिए एक मैसेज, आई डोंट नो इसको पतला होना है बट मुझे नहीं पता, बट मुझे थोड़ा सा हेल्दी होना है।
2: पर मैं उससे पहले कहना चाहूंगा, जैसे मैम ने बोल दिया कभी अलविदा ना कहना, तो फिर हम भी कहना चाहेंगे अभी ना जाओ छोड़ कर दिल अभी बनाने।
1: भाई इसका चालू रहेगा, एक काम करते हैं हम अपना शुरू करते हैं तो प्लीज मैम।
0: अच्छा ऐसा कैसे है कि मतलब आप तो बड़े सोफिस्टिकेटेड से फन लविंग एंड ऑल, ये इतने फ्लर्टी में?
1: यार देखो अपना एक जोनर होता है पूरा जी, मैं आपको बताऊं तो इसका नाइट का शो है तो ये रात में जो लोग खाना खा रहे थे वो भी रोमांस में नृत्य करते हैं इसकी बातें सुनकर। तो ये एक्चुअली बना है इसलिए, और होता है हर इंसान में कोई स्पेशलिटी होती है, हर इंसान हर चीज नहीं कर सकता।
2: जब चांद की चांदनी तुम्हें पसंद करने लगे तो इंसान को ऐसा बनना पड़ता है, तो चांद की चांदनी मुझे पसंद करती है इसलिए थोड़ा फ्लर्टी।
1: अभी शरद पूर्णिमा आ रही तू जाके चांद देख लो, तो हम चांदनी जो भी है व्हाटएवर। तो अभी हम ये कह रहे थे मैम, तो
2: एक प्यारा सा मैसेज,
0: आप दोनों के लिए मैसेज है कि आप दोनों बिल्कुल मुझे मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट लग रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम है, आप वो इक्विपमेंट्स अपने घर पे आके रख ले, मेरे से पूछ लें किस तरीके से यूज होना है। आपके पैसे वहाँ बच सकते हैं लेकिन आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ फिटनेस,
1: नो एक्सक्यूजेस। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं यार कल पक्का करूंगा, मैं भी ऐसा करता हूँ लेकिन वो कल आता ही नहीं,
2: अगले हफ्ते जरूर ज्वाइन करूंगा।
0: इसके लिए तो इसके लिए इसी
1: ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं, उनको कुछ कहना चाहूंगा
0: इसी के लिए शायद हम आज यहाँ बैठे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जो लोग ये कहते हैं ना कल आएगा कल आएगा कल आएगा, तो टुमारोज नेवर, आज जो कर लिया
1: जो करना है
0: आज ही करना है।
1: आज इंटरव्यू आज ही करना था, इन्होंने मेरे को बोला भाई कल मत कर आज ही करना है, आज ही करना है, तो आज ही हुआ।
0: हाँ क्योंकि वो टलता है तो फिर टलता चला जाता है, तो फिटनेस को मजाक ना ले सभी लोग, आप प्लीज कल ना सोचें आज अभी, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो तो तुरंत भाग के जाकर रजिस्ट्रेशन करा के आए जिम में।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: और फीमेल्स को भेजिए हमारे पास और मेल्स जहां मर्जी जाए।
1: वेरी नाइस। चलो भाई राज कुछ कहना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो?
2: फिलहाल देखो ऐसा है ना कि आनंद भैया हो गए बहुत सारे सवाल,
1: एग्जैक्टली
2: है ना, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी भावनाओं में बहूं, तो एक काम करते हैं मैम को थोड़ा सा
1: फ्री करते हैं अभी आज के लिए। एंड सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा एंड ऑल द बेस्ट आपकी फिटनेस में, जो आप इतना अच्छा रॉक मचा रही हैं स्पेशली वुमेन्स के लिए। हमारी तरफ से हमारी टीम की ओर से है ना, हमारे रेडियो स्टेशन की ओर से बहुत बहुत बधाइयां, एंड आई एम श्योर आप आगे भी ऐसे रॉक मचाती रहेंगी। एंड मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी जरूर आएंगी, ठीक है? आपकी अल्टीमेट फिटनेस जिम को बहुत बहुत शुभकामनाएं,
0: थैंक यू सो वेरी मच। और आप
1: जी राज का ख्याल रखेंगे हम,
0: आप दोबारा आएंगे। राज और आनंद आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम 89.6
1: FM। एक चीज और मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी टू से, अपूर्वा जी के बारे में जाने से पहले, ये ना रेडियो फैन भी बहुत अच्छी है, ये बहुत टाइम से रेडियो सुन रही है, तो रेडियो लवर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी आवाजें आप गाड़ियों में सुनती हैं, आज आप लाइव हमें देख रही हैं, हमारे साथ बैठी हैं, सो कैसा फील?
0: वही मैं बोल रही थी कि मतलब इसलिए मैं आप लोगों को थैंक्स करूंगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो कई बार ऐसा होता है हम हाथ में मोबाइल नहीं ले पाते हैं या स्क्रीन पे नहीं बैठे होते हैं, तो गाड़ी जो चलाते हैं हम, वो टाइम हमारा बड़ा ना वेस्ट सा टाइम होता है डिस्टेंस को मेंटेन करने के, उस वक्त हम ना कोई फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं ना किसी से ज्यादा कॉल पे बात कर सकते हैं। तो ये जो 89.6 से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो एंटरटेनमेंट मिल रहा है, और जो टाइम टू टाइम आपने ये नया इनिशिएटिव लिया ना, किसी भी अच्छे एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या फिर कोई डॉक्टर्स हैं या कोई फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, ये जो लगातार आप बुला रहे हो, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं उस टाइम अगर हमें कोई सुनने मिले तो एक तो बहुत मजा आता है, हमारा टाइम पास हो रहा है बहुत अच्छा,
1: और इन्फॉर्मेशन
0: मिल रही है और हमें डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, डिस्ट्रेक्शन नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं तो भाई बहुत बिग फैन हूँ रेडियो की, और मुझे इतना मजा आता है आरजे आनंद और आरजे राज को सुन के, मेरा तो दिन बन जाता है सीरियसली। तो मैं आप सबसे भी बोलूंगी कि अभी जिन लोगों ने रेडियो 89.6 सुनना शुरू नहीं किया है वो सुनना शुरू कर दें। आज मुझे इस स्टूडियो में इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, इतना मजा आ रहा है, आप लोग सुनेंगे तो आपको कितना मजा आएगा
1: सीरियसली। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा लग रहा है, इससे ज्यादा मत बोलना नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे। के लिए सो मच. बंद करते हैं इस पॉडकास्ट को, सुनने वालों को लगेगा गाना नहीं आया, पूर्वा जी इतना अच्छा सुनाया. तो चलिए ये वाला गाना अब हम आपको सुनाएंगे, मैं और राज, फिर किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे किसी और मस्त पर्सनालिटी के साथ.
0: बिल्कुल
1: ठीक है पूर्वा जी, थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए आप, और फिर दोबारा जरूर आइए कभी मौका लगे तो. बाय बाय, टेक केयर,
0: बाय.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियल हीट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें ग्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है, और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले अपना नाम बता देता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद, और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन, मेरी प्यारी दोस्त
1: आरजे रीना।
0: यस आरजे रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, और सबसे मजेदार बात स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहे है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए आखिर यह योजना कैसे काम करेगी।
1: जरूर, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
0: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
0: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
1: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
0: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
1: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
0: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
1: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
0: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
1: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
0: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
1: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
0: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
1: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
0: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों
1: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
0: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
1: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
0: दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गाँव या शहर तक सीमित था, पराठा अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
1: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
0: सही कहा आपने आरजी रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा
1: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करें, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखें और कैसे ब्रांडिंग करें और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाए।
0: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
1: बिल्कुल, कल्पना कीजिए किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाई या स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
0: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
1: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
0: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
1: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
0: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
1: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
0: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
1: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
0: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
1: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए।
0: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे तभी सच मायनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।

0: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: तो मैं हूँ आरजे आनंद
0: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना।
1: फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। और आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
8: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप निकल चुके हैं अपने ऑफिस के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी गुड मॉर्निंग है जी। क्या कहा, आज तो आनंद छुट्टी है, आज कोई ऑफिस नहीं है, आज तो हमारी ऑफ है, क्या बात है। तो आज छुट्टी का दिन तो बिल्कुल है जी, क्योंकि आज हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, कुर्बानी का पर्व ईद आज मनाया जा रहा है। तो आप सभी को ईद की दिल मुबारकबाद, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने ट्यून इन कर लिया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। गुरुवार की ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, यानी थर्सडे की सुबह है। 9:03 का समय हो गया है। हम आपसे ढेर सारी बातचीत करने आपके रेडियो पर आ गए हैं। हमारा तो आगमन जो है भैया हो गया है, यानी कि मेरी तो एंट्री हो गई है, अब आपकी एंट्री भी होनी चाहिए मेरे स्टेशन पे। तो आपको क्या करना है जी, फटाक से मुझे मैसेज पहुंचाना है 9837896896। किसी को कोई खास मैसेज देना है, कोई विश पहुंचानी, कुछ भी जो भी आपको लगता है, व्हाटएवर, यू कैन व्हाट्सएप मी 9837896896। सबसे पहले शुरू करेंगे आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। तो आज का विचार कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, यानी कि अपनी आदतों को चेंज करना होगा। क्योंकि कभी कभी ना छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ को उस ओर ले जाती हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते, और कभी कभी हमारी छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी पॉजिटिव आदतें हमारी जिंदगी को इतना आसान बना देती हैं, इतना ब्यूटिफुल बना देती हैं कि शायद हम शब्दों में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए अपनी आदतों को जरा चेंज कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ आदतें हमें ना बहुत पीछे कर देती हैं यार, सच बता रहा हूं आपको। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं तो प्लीज चेंज कीजिए, आदतें बदलिए, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा, लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हम अवॉइड करते हैं, और यही चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाती हैं। श्रोताओं, तो दोस्तों चलिए, आज का सिलसिला, आज का सफरनामा तो हो गया है शुरू, बारी अब आपकी भी है। आप भी हमें व्हाट्सएप करिएगा, जैसे कि मैंने बताया, आप अपने संदेश हमें पहुंचाइएगा। हमारा नंबर तो हमने आपको दे ही दिया है, ठीक है जी। तो इस नंबर पे आप अपने मैसेज करिएगा। ब्यूटीफुल गाने के साथ कर रहे हैं आज के दिन की शुरुआत, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, एंजॉय कीजिए इस गाने को। रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाइए, आरजी आनंद को सुनते जाइए। कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेजेस पहुंचाइए 9837896896। सुबह वाली गुड मॉर्निंग है।

बिल्कुल दोस्तों, दिन तो गजब का है ही और गजब की सुबह भी है, क्योंकि यहाँ पर आपका साथ जो है मेरे साथ लगातार बरकरार है। और ये जो साथ होता है ना आपका और हमारा 9 से 10 के बीच, ये वो प्यारा सा साथ होता है जहाँ पर आप भी पॉजिटिव होते हैं और मैं भी आपके साथ पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करता हूँ। वेलकम बैक है अरिजीत सिंह की आवाज साथ में अमाल मलिक दे रहे थे साथ। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने एंजॉय किया। गजब का है ये दिन बिल्कुल। जब ऐसे पॉजिटिव वाइब्स अपने आप को दोगे तो दिन अपने आप ही गजब का हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद के साथ हैं आप। ये है FM मुरादाबाद। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है 28 मई की घटनाएं, क्या कुछ खास बताती हैं, तो चलिए आपको बताते चलें फटाफट से क्या कुछ खास रहा है आज की तारीख में। दोस्तों आपको बता दें, सन 2002 में आज के दिन नेपाल में फिर आपातकाल लगा था श्रोताओं। और आपको बताते चलें, आज का दिन अपने आप में तमाम सारी महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जो है काफ़ी चर्चित है। और आज मैं देख रहा हूँ आज के दिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के इतिहास को बहुत ही खास और स्पेशल बना रही हैं श्रोताओं। आपको बताते चलें, सन 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यकर्ता 5 न्यायाधीशों को स्थानीय को जो है मतलब इन्होंने नियुक्त किया था आज के दिन। और आपको बताते चलें एक और खास चीज़ जो आज के दिन हुई, जो आज के इतिहास के पन्नों को और भी सबसे अलग बना देती है श्रोताओं।

आपको बताते चलें, आज ही के दिन नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही आधारिक रूप से उसका मतलब अंत हो गया था श्रोताओं। और आज ही के दिन जो है इसे लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था सन 2008 में। आज ही के दिन और आज ही के दिन 1959 में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो अमेरिकी बंदरों ने जो है अबल और बीकर ने अंतरिक्ष में सफल यात्रा और सुरक्षित धरती पर वो लौटे थे आज ही के दिन श्रोताओं।

तो श्रोताओं, देखिए आज के दिन का इतिहास अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही आपके साथ हम साझा कर रहे थे। और आज इतिहास के पन्नों की बात करते करते मुझे ख्याल आ गया है दोस्तों कि अभी मुझे आपके साथ मौसम का हालचाल भी शेयर करना है, बहुत ज़रूरी है। आज का मौसम अगर मैं बताऊं तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, क्योंकि हवाएं बड़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ जो है आज हवाएं चल रही हैं, और एक अलग ही फ्लो में जो है हवा चल रही है। श्रोताओं, इस हवा में बस कहीं मैं उड़ तो नहीं जाऊँगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, आज के दिन प्रतिमा जी का जन्म हुआ था श्रोताओं 1969 में। और आपको बता दें, आज के दिन पानी चंद्र घोष जो भारत के प्रथम लोकपाल हैं 1952 में, इनका भी जन्म हुआ। वहीं प्रयाग शुक्ल हिंदी के कवि, कला और समीक्ष अनुवादक रहे और एक कहानीकार रहे, सन 1940 में इनका भी जन्म हुआ था आज के दिन। एनडीवी जी का भी जन्म हुआ था 1921 में, जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, आज ही के दिन इनका भी जन्म हुआ। श्रोताओं, तो आज का दिन जो है अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। और कुछ क्या खास आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। आज और कौन कौन से दिवस हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हम ज़रूर अपने शो में शामिल करेंगे और आपके साथ भी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप अपने मैसेजेस हम तक साझा कर सकते हैं 9837896896 9837896896। स्टूडियो का नंबर मैंने आपको बताया, फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 9:14। आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपके शहर का अपना मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज रिचार्ज मॉर्निंग। बात करें अगर मौसम की, तो फिलहाल मौसम का हालचाल क्या कुछ खास कह रहा है, तो अभी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, और अगर बात करें मैक्सिमम की तो 40 डिग्री जो है वो

आगे बढ़ते हैं और अभी एक बढ़िया सा गीत आपको सुनवाते हैं। इस गाने के बाद जब लौट कर आएंगे तो एक और खास बात आपको बताएंगे जो आज के दिन से जुड़ी हुई है और आज के दिन को बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बना रही है। वो कौन सी बात है जरूर आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं अभी लौट कर आता हूँ। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, सुनते रहेंगे आरजे आनंद को। कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837 896 896। स्टूडियो का नंबर ये बहुत ही आसान है। सुन रहे हैं विद्यास मॉर्निंग।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
8: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: क्या बात है, देखो ये छोटे छोटे मैसेज होते हैं, छोटे छोटे संदेश होते हैं, ताकि इससे आपको एक अलर्ट मैसेज मिलता रहे और आप पूरी सावधानी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़े। श्रोताओं वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। तमाम सारे मैसेज लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए। वक्त हो गया है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:27:12 और ये है बिंदास मॉर्निंग और आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। श्रोताओं देश भर में बारिश और तेज हवाओं का जो है खतरा है, आईएमडी की चेतावनी आई है। भाई आपको बता दें, देश के कई राज्यों में एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ मौसम तेजी से बदलता नजर आ रहा है। आपको बता दें भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी की तेज हवाओं के साथ अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण बंगाल की खाड़ी और जो है अंडमान में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे जगहों पर मानसून की एंट्री शुरू हो चुकी है, जहां पर अभी भी जो है बारिश और हवाएं जो है लगातार जारी है। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी बताया जा रहा है कि भैया बारिश जो है कल यानी 29 को होने के पूरे चांसेस हैं। बाकी आपको बता दें, भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। असम और मेघालय में तो कई मतलब कुछ ऐसे एरिया है जहां पर ज्यादातर बारिश हो सकती है। तो ऐसे में क्या करना है ना पाजी, आपने जरा सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ ही घर से बाहर निकलना है। और अगर बारिश हो भी जाएगी तो कहीं ना कहीं गर्मी से तो थोड़ी राहत मिलेगी ही, श्रोताओं, है ना। बारिश होनी भी चाहिए वैसे तो। कल 29 मई को बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है और तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। देश के कई हिस्सों में कल लगातार बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब कल की प्रोडिक्शन तो कल ही देखते हैं पाजी क्या होने वाला है। 48.2 डिग्री जो है मतलब बना रहा दुनिया का सबसे गर्म शहर जो है इस वक्त चर्चाओं में है। राजस्थान का श्री गंगानगर बुधवार को दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ओ माई गॉड। और आपको बता दें, आज ईद के मौके पर आगरा की अगर मैं बात करूं अपने उत्तर प्रदेश की, तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक वहां पर ताजमहल में जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। जो हमारे आगरा में कुछ लिसनर्स हमें सुनते हैं, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है। अगर आज ईद के मौके पर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं हैंग आउट करने जाने का प्लान कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ आप जाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आज आप जो है गुरुवार 28 मई की सुबह 7 बजे से यानी कि अब एंट्री फ्री है और 10 बजे तक ही आपको सिर्फ ये एंट्री मिलने वाली है। ताजमहल के परिसर में जो है जितने भी भारतीय और विदेशी पर्यटक हैं वो बिना टिकट के प्रवेश कर सकेंगे। तो अगर आप आगरा में हो और अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं ताजमहल, तो बिल्कुल ये आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज हो सकती है पाजी। आपको बताते चले, 1 जून से महंगे हो जाएंगे रेलवे स्टेशन के खान पान। जी हाँ, मतलब कुछ नई रेट लिस्ट आने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि रेल यात्रियों को स्टेशन पर खाना पीना खरीदना थोड़ा सा उनके लिए महंगा पड़ सकता है। भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन ने रेलवे स्टेशनों पर बिकने वाले खाने पीने के जो भी खाद्य पदार्थ सामग्री है उनकी कीमतों को जो है बढ़ाने की एक मंजूरी दे दी गई है। 1 जून 2026 से ये लागू हो सकती है। श्रोताओं ये कुछ कड़क अपडेट जो मैंने आपको फटाफट से बता दी है और अभी कुछ और खास जानकारियां हैं जो आप तक हमें देनी है। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरे पास तमाम सारे श्रोताओं के मैसेज पहुंचे हैं। जुल्फी भाई जुड़ चुके हैं, लिखते हैं ईद मुबारक हो आनंद जी, और आपका प्रोग्राम सुन के बहुत मजा आता है। 2 दिन से आप नहीं थे, हमने आपको बहुत मिस किया। थैंक यू सो मच, आपने हमें मिस किया, हमने भी आपको ढेर सारा मिस किया। बहुत बहुत शुक्रिया ये ब्यूटीफुल मैसेज देने के लिए। एक संदेश मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ आनंद जी। सुबह सुबह आपको सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें और हमारी मॉर्निंग भी गुड हो जाती है आपकी बातें सुनकर। अरे वाह, थैंक यू सो मच, ये बात बोल के आपने मेरा दिन बना दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है आज की सुबह। गुड मॉर्निंग आनंद सर, ईद की बहुत बहुत मुबारक है। देखिए ईद का मौका है तो ऐसे में ही गाना तो बनता है, तो मेरी तरफ से सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद और साथ में एक बेहतरीन गीत, इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। 9:31 का समय, ईद का दिन है आज।
3: मेरा सोना सजन घर आया, हो गई
0: बेहतरीन गाना, आप सभी को ईद की दिली मुबारक है।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
10: अपोजिट
9: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
10: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: मिल होना हो सी गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे। 9:42 का समय हो गया है जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? वेलकम बैक है वंस अगेन। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे है आप आनंद के साथ। अजी वाह जी वाह, नए नए कपड़ों में कमाल लग रहे हो जी, कमाल लग रहे हो, बहुत ही बढ़िया। आज सब लोग ईद का जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं पर्व, बहुत ही खूबसूरत पर्व अपने आप में है आज ईद का जो ये दिन है। मैं तो चाहता, देखिए दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कुर्बानी का पर्व है और आज के दिन मैं चाहता हूँ अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो अपने जो घमंड है, जो अपने अंदर की गलत चीज़ें हैं उनकी भी हम जो है कुर्बानी दे सकते हैं ना, ताकि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आए, एक सकारात्मक ऊर्जा आए, है ना। कोई भी पर्व आता है, कोई भी त्यौहार आता है तो उससे जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे हमारे फेस्टिवल हमें सिखा कर भी जाते हैं कि हर बुराई के पीछे ना एक अच्छाई होती है और जो अच्छाई होती है ना वो हमेशा जीतती है। आगे बढ़ते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे आपको आज के दिन की आपको ढेरों मुबारक है। और फिलहाल तमाम सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें मैसेज पहुंचा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए, थैंक यू वेरी मच। और आपको बता दें फिलहाल 25 मई से लेकर 2 जून तक जो है नौतपा शुरू हो गया है, ये 9 दिनों तक चलने वाला है। और आपको बता दें इस 9 दिनों के अंदर जो है काफ़ी तेज धरती पर जो है रोशनी, सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ती हैं जिससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य की गर्मी सबसे तेज़ होती है तो उसे ही नौतपा कहा जाता है। ऐसे में अगर आप पानी कम पी रहे हैं, आपको थकान जल्दी हो रही है, तो आपको ऐसे में जो है लगातार सबसे पहले तो पानी को बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आपको डिहाइड्रेशन, आपको लग रहा है कि भैया नहीं मुझे तो डिहाइड्रेटेड रखना है खुद को, तो उसके लिए आपको पानी पीते रहना चाहिए और कोशिश करें कि धूप में ज़्यादा ना निकलें। और अगर आपको जाना पड़े तो आप छाता लेकर जाएँ, बहुत ही ठंडा पानी आपको तुरंत नहीं पीना है बाहर से आकर, ठीक है। देर रात तक आपको नहीं जागते रहना है, काफी मसालेदार ऑयली खाना आपको बिल्कुल खाने से बचना है। इस वक्त देखिए क्या है ना कि अगर आप ज्यादा भारी भरकम मसाले वाला खाना खाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पेट में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। और गर्मियों का जो मौसम होता है वो बिल्कुल लाइट खाना खाने का होता है ना, ऐसे में आप जो हमारे तरल पदार्थ हैं उनको ज्यादा महत्व दें तो ज्यादा बेहतर है। तो बस नौतपा तो चल ही रहा है, इस नौतपा से बचने के लिए सादा और हल्का भोजन करें, नारियल पानी का इस्तेमाल करें, बेल का शरबत आप ले सकते हैं, सौंफ का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ, खीरा, तरबूज, ककड़ी, इन सभी को अपने जो है डाइट में शामिल कीजिए। और आम का पन्ना भी आप ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आम मार्केट में आए हुए हैं। साथ ही साथ आप खरबूजे, तरबूज, इन सबका भी जो है हेल्प ले सकते हैं। बाकी श्रोताओं, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और बार बार हम आपको सिम्टम्स बताते हैं, बार बार हम आपको बताते हैं कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं सावधानी के लिए भी एक अलर्ट करती है और कहीं ना कहीं आपको अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। और अभी मैं आपका ख्याल रखता हूँ, तमाम सारे आपके मैसेज मुझ तक पहुँच गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे मैसेजेस के लिए, थैंक यू वेरी मच। विक्की सागर जी जुड़ गए हैं, लिखते हैं रेडियो वाला आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग है। साथ में जुड़ रही हैं हमारे साथ शबीना खान, रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से लिखती हैं, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं, आपको ईद मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। गली नंबर 1 से जुड़ी हैं, लिखती हैं सर मैं ये कहना चाहूंगी कि बकरा ईद पर सिर्फ जानवरों की ही कुर्बानी ना करें, बकरा ईद पर अपनी जिद और हसद, गुस्सा, घमंड, लालच और अपनी इतनी सारी बातें आपने लिखी हैं कि इन सभी की भी आप जो है इनको भी कुर्बान कीजिए और अपने आप को जो है इन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं दूर रखिए। बिल्कुल सही कहा है आपने। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बकरा ईद एक सेक्रीफाइस का दिन है तो इस दिन बहुत सारी चीज़ों को हमें सेक्रीफाइस और कुर्बान करना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शहीद शारिक अली जी जुड़ गए हैं, लिखते हैं आनंद जी आपका प्रोग्राम सुन के बहुत ही आनंद आता है, ईद की ढेरों दिले मुबारक है, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग सर आप कैसे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। ये बबलू जी मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह और एक वॉइस नोट भी मेरे पास पहुँचा है, तो आइए ज़रा ये भी सुन लेते हैं कहाँ से क्या पहुँचा रहे हैं आज की सुबह ये।
1: सर नमस्कार, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके लिए हलवा भेजा है, खा लीजिएगा, मेरा नाम अलचित सिंह है।
0: थैंक यू सो मच, आपका हलवा बहुत प्यारा है।
1: लोगों को ईद की शुभकामनाएं, मेरा नाम अलचित सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोला हूँ।
0: थैंक यू सो मच अर्जित,
2: ईद का गेट अंसारी बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग आप सभी आरजो को और डायरेक्टर साहब को, सभी लिसनरों को मेरी जानिब से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो नई नई जानकारी के साथ,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अपना प्यारा सा मैसेज देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जनाब। ऐसी खूबसूरत मैसेज आप भी पहुंचा सकते हैं दोस्तों 9837896896 पर, ये स्टूडियो का नंबर है। शफी अहमद साहब मेरे साथ जुड़े थे ईदगाह से। अगर आप निकल चुके हैं कहीं ना कहीं आज घूमने के लिए फ्रेंड्स के घर, जहाँ भी आप जा रहे हैं अच्छे से जाइए, ऑल द वे बेस्ट। आज खुशियों का दिन है, फेस्टिविटी का दिन है, तो इसको सेलिब्रेट करते रहिए। रिहाना जुड़ गई है रानी नांगल से, लिखती है गुड मॉर्निंग सर, सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रिय मित्र आनंद जी को नमस्कार, आपका खूबसूरत प्रोग्राम सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है। गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से जुड़े हैं। प्रियंका जुड़ चुकी है गायत्री नगर से, साथ में सोनल भी जुड़ी है मेरे साथ लाइन पार से।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इतने प्यारे प्यारे संदेश के लिए, आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वक्त हो गया है 9:54, आनंद के साथ हैं आप और एक छोटा सा सवाल का जवाब आप मुझे पहुंचाएंगे तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। आज इस प्रोग्राम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारे गाने का म्यूजिक प्ले कर रहा हूं, इस गाने को आइडेंटिफाई करना है आपने, ये जो म्यूजिक है वो कौन से गाने का है यही आपको मुझे बताना है। बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत जो है इसमें स्टार कास्ट है और बहुत ही प्यारा गाना है, तो जरा पकड़िए कौन सा गाना है। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। व्हाट्सएप करना है अपने नाम के साथ, अपना सही जवाब उठाना है, अपना फोन टाइप करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर सेंड कर देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9837896896। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं अपना आज का सवाल। कौन सा ये गाना है, इस गाने को आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, सो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके बढ़िया वाले मैसेजेस का। गर्मियां बहुत ज्यादा है तो ऐसे में थोड़ा सा एक कूल और फ्रेश वाला गाना जो आपको ताजा तरीन कर देगा और थोड़ा सा बेहतरीन कर देगा। एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये जवानी है दीवानी का बेहतरीन ट्रैक। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430। अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
5: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
4: अरे वाह।
5: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
4: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स। कॉल 9412965333।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
6: बिल्कुल जी, बिंदास मॉर्निंग आप सुन रहे हैं आनंद के साथ। आज गुरुवार का दिन है, यानी कि ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, थर्सडे की सुबह है। आनंद के साथ आप जुड़ चुके हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। 10 बजने को है स्टूडियो की घड़ी में। नहीं पाजी, 10 बज के 1 मिनट हो गए यार, समय का पता नहीं चलता है। खैर वायदे पे आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही सिंपल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब आप मुझे लगातार पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

और सुनो, इस वक्त जो है स्किन कैंसर अवेयरनेस मंथ भी सेलिब्रेट किया जाता है मई में ही, और बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखना, है ना। ऐसे में जो है ना, जिस तरीके से गर्मी है, ऐसे में अपनी स्किन को प्रोटेक्शन के साथ रखना बहुत ज़रूरी है।

आपको बता दें, दसवीं और बारहवीं के जो स्टूडेंट हैं उनकी किस्मत चमकने वाली है। 1 जून को 1 लाख रुपए और टैबलेट देंगे हमारे मुख्यमंत्री साहब उत्तर प्रदेश के। जी हां, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि भैया यूपी बोर्ड समेत विभिन्न शिक्षक हाई स्कूल और जो इंटरमीडिया वाले हैं, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, 10th+12th वाले जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको 1 जून को सम्मानित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 223 जो मेधावी स्टूडेंट हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। एंड जो स्टूडेंट हैं उनको भाई साहब एक टैबलेट मेडल से जो है सम्मानित किया जाएगा। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। तो ऑल द वे बेस्ट बच्चा पार्टी।

0: गारा
1: किसी मर्जी का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल।
0: ना ना ना ना ना ना ना ना ना रेडियो बंद मत करो, मैं बिल्कुल नहीं गाने वाला, बस मैं अपने सवाल आपसे पूछ रहे हैं। वंस अगेन आई रिपीट माय क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बस आइडेंटिफाई करना था ये कौन सी गाने का म्यूजिक है, इस गाने को आपने पहचानना था। बहुत ही प्यारा गाना है एंड ऑफकोर्स आपने बहुत बारी सुना होगा ये गाना। लास्ट मौका है आपके पास, फटाफट से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कौन सा गाना है ये। जी हाँ दोस्तों, जाइए अपने मैसेज बॉक्स में, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पर। हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, बस अभी आएंगे लौट कर तो बताएंगे कौन है आज का सुपरस्टार। 10:05 हो गए और आज 28 मई को विश्व पोषण दिवस मनाया जाता है। संतुलित पोषण स्वस्थ जीवन की पहचान है, पोषण अपनाए स्वस्थ और खुशहाल जीवन पाए। तो आज का दिन अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। पोषण अगर आपको सही तरीके से मिलता है तो फिर आपका शरीर भी स्वस्थ होता है और आप भी पूरी तरह फिट एंड फाइन होते हैं। तो ये आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी थाली में जो जरूरी पोषण को हमें जरूर शामिल करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, आज के दिन विश्व भूख दिवस भी मनाया जाता है। इस अवसर पर जो सड़क के किनारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे खाना भी नहीं खा पाते हैं, तो ये दिन बहुत ही स्पेशल है। आज विश्व भूख दिवस के मौके पे बहुत सारे लंगर, बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं आज के दिन। और वैसे तो मुझे लगता है कि आपको जो है ना यार, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही दिन लंगर लगाएं। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका जेब अलाउ करता है, उस हिसाब से भी आप किसी एक इंसान का पेट तो भर ही सकते हैं, किसी एक को भोजन तो करा ही सकते हैं, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आज का दिन बहुत ही खास है और आज का जो दिन है मतलब मुझे लगता है कि इंसानियत का फर्ज निभाने का दिन है। तमाम जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कौन है आज के हमारे शो का विनर।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफ एम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

ब्यूटीफुल नंबर, ऐसे म्यूजिक आर्टिस्ट की सुबह और भी फर्स्ट क्लास हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं आज थर्सडे की सुबह, मैं आपका साथ दे रहा था बिंदास मॉर्निंग में। कहते हैं मॉर्निंग मुरादाबाद की अब गुड नहीं बिंदास होती है आरजे आनंद के साथ, और ये आज से नहीं पिछले 3 सालों से मेरी और आपकी जो बातचीत है वो लगातार चल रही है। श्रोताओं, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत के लिए। ढेर सारे मैसेजेस आपने किए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं, इतने प्यारे प्यारे संदेश और इतने अल्टीमेट जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। हम आपके शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको फटाफट बता देते हैं, अभी फिलहाल हमारे पास कुछ खास मैसेज पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में लगातार मैसेज आ रहे हैं। हमारे पास प्रेरणा जी का सबसे पहले से ही जवाब आया था, उन्होंने मेरे को बताया था कि आनंद जी जो आपने म्यूजिक प्ले किया था ना, ये कौन से गाने का है, इन्होंने मेरे को एकदम सही वाला जवाब दिया था, थैंक यू। एंड भास्कर जी, इन दो लोगों ने मेरे को सबसे पहले राइट आंसर दिया है, बाकी लक्ष्मी देवी जी ने भी सूर्यनगर से सही जवाब दे ही दिया है, एंड बाकी लोगों का तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन प्रेरणा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज की सुबह आप बनती हमारे कार्यक्रम की सुपरस्टार, तो आपके लिए जोरदार तालियां। बाकी लिसनर्स के लिए भी मेरे पास ढेर सारी तालियां हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए तो यार प्यार और जो मतलब हमारी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं वो तो हमेशा ऑलवेज रहती ही हैं, लेकिन तालियां, थैंक यू सो मच भास्कर जी, और बाकी लिसनर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए थैंक यू सो मच, और सही जवाब देने के लिए भी बहुत बहुत बधाइयां जी। क्या बात है, ये ऐसी तालियां जोरदार आपके लिए होती रहेंगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल मैं लेता हूँ जाने की अनुमति, अब जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे, है ना। लेकिन उससे पहले मैसेज को आपके शामिल कर लेते हैं। हमारे पास ये मैसेज आया है, हेलो, आई एम सो हैप्पी आपके शो से जुड़ के मुझे बहुत मजा आता है। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है। गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। हाय, मेरा नाम शुभी है। हाय शुभी, गुड मॉर्निंग। हेलो आनंद सर, आप कैसे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे, और जो भी सॉन्ग आपने प्ले किए हैं ये बहुत ही बढ़िया थे, और जो भी आपने प्ले किया था ये बॉडीगार्ड मूवी से था, तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, एंड आई होप आप अच्छे होंगे। आई एम भूमि, कैसे हाल चाल हैं। थैंक यू भूमि, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके संदेश हम तक मिल रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। डी के अरोड़ा चंदन नगर से सही जवाब पहुँचा रहे हैं, और मेरे पास एक मैसेज पहुँच गया है प्रकाश नगर लाइन पार से, ये लक्ष्मी देवी जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, एंड और भी तमाम सारे श्रोता साथ ही लगातार हमें संदेश पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फेस्टिविटी का दिन है, एंजॉय करते रहिए और ऐसे ही मस्त रहिए, झकास रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 FM। अंसार हुसैन दौलतबाग से मुझे लिखते हैं, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, ईद मुबारक हो जी आपको भी। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे, एंजॉय करते रहिए, बढ़िया बढ़िया ऐसे आगे भी गाने आते रहेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई को बिल्कुल नहीं घुमाना है, अगला प्रोग्राम आप ही के लिए है, सो बस आप जो है ऐसे ही सुनते जाइए आपके शहर का अपना ब्यूटीफुल रेडियो। मैंने फिर से बोल दिया है यार, फिलहाल अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और खूब सारा पानी पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपने दिन की शुरुआत हैपनिंग तरीके से करते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ करते रहिए, बहुत जरूरी है। जब सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, तो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। ये मेरा और आपका जो सिलसिला है ये और भी गहरा हो गया है आपकी और मेरी मोहब्बत से। चलिए दोस्तों, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए।

शिवराज, आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूँ आप सब के लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आखिर वो बात क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला। मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे, इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के। इतना मुनाफा, कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह, ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, OTP, UPI पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें, जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें, शक हो तो नहीं कहना सीखें, ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते थे श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।
हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है। तो राज फिलहाल इस शो से अभी के लिए अलविदा लेना चाहता है और

से पहले एक बार फिर कहना चाहता है कि लालच बुरी बला है। अगर कहीं पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा 2 गुना 4 गुना इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इन्वेस्ट करने से पहले कृपया करके जांच कर लें कि क्या आप सही जगह निवेश कर रहे हैं या फिर नहीं। तो अभी के लिए लेता हूँ यहाँ से अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए FM मुरादाबाद। जल्दी मिलूंगा कुछ और ऐसी ही इम्पोर्टेंट बातों के साथ।

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन गीत। और एक बार फिर से हमारा आवागमन हो गया है, यानी कि हमारी एंट्री वापस हो गई है। वेलकम बैक है, सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है लेडीज एंड जेंटलमैन। फिलहाल अभी तो मैं स्टूडियो में हूँ और आपके साथ ढेर सारी बातचीत करने वापस आ गया हूँ। खुशी कुछ काम में बिजी है, तो मैंने सोचा तब तक हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, आपके साथ ढेर सारी बातचीत करते हैं, कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और कुछ एंटरटेनमेंट का चस्का और तड़का दोनों लगाते हैं। लेकिन उससे पहले इस घंटे का विचार, देखिए सपने तभी पूरे होते हैं दोस्तों जब नींद तोड़कर मेहनत की जाए। रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, पहला कदम ही मंजिल तक लेकर जाता है। और जो पहला कदम होता है ना, वो हर कोई नहीं बढ़ा पाता मेरे दोस्त। जो बढ़ा लेता है पहला कदम, जो निकाल लेता है पहला कदम, उससे सफलता मिलना निश्चित है। वो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वो डायलॉग नहीं सुना है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। और ये बिल्कुल भी हवा हवाई नहीं है, ये एकदम सच है। तो दोस्तों याद रखो, हार मान लेना सबसे आसान है, लेकिन डटे रहना ही सबसे बड़ी असली ताकत और असली जीत है। जी हाँ श्रोताओं, बस तुम्हारा समय आएगा, बस तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं, चलते चले जाना है पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ और फुल ऑफ एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जो है आगे बढ़ना है। जो आप चाहते हैं वो आप जरूर कर सकते हैं, बस थोड़ी सी लगन और थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। दोस्तों फिलहाल मेरे स्टूडियो में आपको कोई मेहनत या मशक्कत नहीं करनी है। अगर आपको कुछ भी सुनना है, कुछ भी कहना है, जो भी आपको लगता है, उसके लिए बस आपको अपना फोन उठाना है, खड़ाक से मेरा नंबर नोट करना है 9837896896। एग्जैक्टली इस नंबर को नोट करते हुए फटाक से मुझे मैसेज करना है 9837896896 पर व्हाट्सएप करना है और अपने दिल के हालचाल सीधा पहुंचाना है मुझ तक।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: आवश्यक सूचना, 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉर्पोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: ना है यार, ब्यूटीफुल ट्रैक, क्या बात है जी। यश चोपड़ा की प्रोडक्शन में जब अच्छी गाने और अच्छी फिल्में बन जाए तो अल्लाह रे ब्यूटीफुल नंबर। इस गाने के बाद तो हम भी हल्ला काटने आ गए हैं आपके रेडियो पर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर ट्यूनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। बातें वही जो आपका दिल सुनना चाहता है और हम भी आपसे वही बातें करना चाहते हैं। ढेर सारे मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं हमारे पास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ चुके हैं हमारे पास सहारनपुर से हमारे प्रिय मित्र गणेश प्रसाद जी भी जुड़े हैं, और ये जुड़े हैं जॉन रोजी पल विलीस हमारे साथ आज की सुबह, एंड एक गाने की फरमाइश उन्होंने की और साथ में ईद की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं आज की मॉर्निंग। और भी तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार आनंद जी, कैसे हालचाल हैं आपके? मुझे एक गीत सुनवा दीजिएगा खुदा गवाह फिल्म से, मुझे इस गीत को सुनना है। दीपक शर्मा, पूनम वर्मा एंड साथ में ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी का मैसेज पहुंचा है जरूर। अम्रपाल ठाकुर जी जुड़े हैं, लिखते हैं आनंद सर को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हालचाल हैं आपके? मैं बहुत ही बढ़िया हूं सर, आई होप आप भी अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए साहब। आगे बढ़ते हैं, एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूं और आपके गीत संगीत से जो है हमें काफी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और गाने आपके सुन के बहुत आनंद आ जाता है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। बस हम भी यही चाहते हैं कि आपको आनंद आता रहे और आप ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहें और आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी हम देते रहें।
1: सितारों की दुनिया में,
0: चलिए गाना निकल गया है अमृपाल जी की रिक्वेस्ट पे, अगला गाना आपकी पसंद का हो सकता है और ढेर सारी जानकारियां भी होंगी इसी प्रोग्राम में। 10:37 का समय हो रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन। एक मैसेज पहुंच गया है प्रसारक जी को, नमस्कार गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? गुड मॉर्निंग जी सुशीला देवी। साथ में हमारे पास सदानंद जी का मैसेज आ गया है एंड कुमार गौरव जी भी जुड़ चुके हैं आज की सुबह।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
1: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:04। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक सुना है, ईद मुबारक। और आप सभी को ईद के प्यारे से त्यौहार के बहुत बहुत प्यारे से त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए फेस्टिवल, और हर दिल में मोहब्बत, हर चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। दुआ है कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, दुआ है कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, घर में सुख शांति बनी रहे और रिश्तों में हमेशा अपनापन बना रहे। आप सभी को दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारक एवरीवन। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। अच्छा दोस्तों, मुझे बताओ, मेरे गले में ना बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझे जिससे मेरे गले को राहत मिले और दर्द भी ना हो? फटाफट से चीज़ें बताइए। नंबर है 9837 8968 9 6। क्या करना चाहिए एवरीवन मुझे जिससे मेरे गले को राहत मिले और मेरी आवाज़ भी ठीक हो जाए, तो आप मुझे बताइएगा। तब तक मैं आपको एक प्यारा सा गाना सुनवाती
1: हूँ। जहर काटता है, कोल्ड ड्रिंक पियो तुम तब कर।
0: नहीं बहन, वो नहीं पीनी है। रीना जी मुझे कह रही है, सजेस्ट कर रही है कि आप कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा। तो क्या एवरीवन मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए?
1: जहर काटता है।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
6: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, यहाँ पर वक्त की बात करें तो अभी समय हुआ है 11:20 और खूबसूरत सा शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी मोहब्बतें। चलते चलते कहीं खो जाता हूँ मैं, हाँ चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपने सुना। और मैं आपसे कहती हूँ कि चलते चलते तो हम भी रुक जाते हैं, पता है कहाँ पर? जैसे हम किसी पेड़ की छांव देखते हैं तो इतनी भरी गर्मी में, मतलब जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो मन करता है कि कोई पेड़ का बड़ा सा वृक्ष हो और उसके नीचे हम आराम से 5 मिनट बैठ जाएँ, वहाँ पर बैठ के पानी वानी पिएँ, बड़ा सुकून मिलता है ना दोस्तों वहाँ पर। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी पेड़ लगाओ, और जब पेड़ लगाएंगे तो छाया भी आएगी। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत संदेश आए हैं हमारे पास, तो उनको भी हम जल्दी से शामिल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और साथ में ये फैमिली भी है। आप सभी को ईद की मुबारक। एडवांस में नहीं, आज तो ईदी है, आपको ईद की शुभकामनाएं। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में इनके मित्र भी हैं रईस दूल्ला अंसारी जी, और ये कहते हैं हाउ आर यू खुशी जी, आई एम फाइन सर, बहुत ही अच्छे हैं हम, बस थोड़ी सी तबीयत नशाज है लेकिन ठीक हो जाएंगे। दवाई वगैरह तो लेकर आए हैं, उनको खाया भी है। और बाकी मैंने आपसे मालूम किया था कि दोस्तों मुझे बताओ आप, मेरी गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे राहत मिल जाए। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमारे पास आया हुआ है सोनू कुमार जी का, सेक्टर 10 बुद्धि विहार से। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? अब आपकी

और सब कैसे हैं आपकी फैमिली में? हाँ जी, बहुत ही अच्छे हैं। और कहते हैं कि सुनने वालों को और आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक है। खुशी जी, आपकी तबीयत कैसी है अब? सो मत पूछिए कैसी है तबीयत। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। नमस्कार मैम, धर्मेंद्र कश्यप जी का मैसेज आया लाइन पार कुंदनपुर ढका से, और ये कहते हैं आपका गला खराब है, आप मुलैठी अच्छा अपन सारी की दुकान से हमको ये लेकर आना है, और उसके बाद उसको आप चबाइएगा। और ठीक है सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है। गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये संदेश हमें पहुँचाते हैं कश्मीर से महराजुद्दीन जी, और ये कहते हैं मैडम जी हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अरे हम तो आ गए हैं, अब मिस क्यों कर रहे हैं आप? देखिए हमसे आपकी बातचीत हो रही है, और ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया आपको सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खूबसूरत से कुछ गीत आपको मैं सुनवाती हूँ दोस्तों, उसके बाद लौट कर आऊँगी, और एक बहुत ही प्यारी सी जानकारी मेरे पास है जो मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, चिपक के रहना है और बने रहना है अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। चलिए, मेरा मन है कुछ हरियाणवी गाने सुनने का और सुनवाने का, तो कुछ हरियाणवी गाने भी हो जाए दोस्तों। अभी घर पर गेस्ट भी आए हुए हैं, मेहमान भी घर पर आते हैं। देखो अभी बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, और छोटे बच्चे अक्सर घूमने के लिए जाते हैं बाहर, कुछ जाते हैं नानी के घर तो कुछ जाते हैं बुआ जी के घर। तो अभी आपके घर भी गेस्ट आए होंगे, या फिर आप कहीं गए होंगे मेहमान रिश्तेदारी में। तो जब रिश्तेदारी में हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पर बच्चे ऐसे शर्माते हैं ना, मतलब जो घर में बच्चे इतना उधम मचाते हैं, वो जब किसी रिलेशन में जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो वहाँ जाकर इतने शाही बनते हैं, इतने मासूम होकर बैठ जाते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है, है ना और अपने घर आते ही शरारते शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों की जो नटखटपन है ना, जो यू नो उनकी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, मन को मोहती भी है, और बच्चों को डांट लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर गलत करते हैं तो बच्चों को डांटना भी चाहिए, और जहाँ बच्चे गलत नहीं है तो वहाँ उनको प्यार करना चाहिए। चलो अभी प्यारा से गाना सुनो, मैं लौट कर आती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
10: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो एवरीवन, आज तो सारे ही बड़े सोने सोने लग रहे हैं, सब तैयार होके घूम रहे हैं। और जब लड़कियां स्पेशली तैयार होती हैं ना, फीमेल्स तैयार होती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, सादगी में भी प्यारी लगती हैं। लेकिन कभी कभी सजने संवरने का मौका मिलता है तो तैयार होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी, चाहे फेस्टिवल हो या कोई फंक्शन हो, तो उसे ना हमें स्किप नहीं करना चाहिए। माना कि घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन काम के साथ साथ खुद को थोड़ा टाइम दो, लाइक खुद को भी थोड़ा सजा कर संवार कर रखो यार। काम होते रहेंगे, काम काम की जगह है, लेकिन जो त्योहार होते हैं, लाइक कोई भी चीजें घर में हो रही हैं, फंक्शन है, तो अपने आप को पीछे मत रखा करो। इतनी प्यारी सी आप हैं, तो थोड़ा सा वन संवर की राह करो। और बहुत प्यारी लगती हैं आप। मैं आपसे कहती हूँ कि आंखों में ना काजल तो लगा ही रही हैं आप, नो डाउट। आंखें भी आपकी बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन आप काला टीका भी लगा लो, पता नहीं नजर लग जाएगी यार। आजकल नजर बहुत जल्दी लग जाती है लोगों की। ये मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं रियली कह रही हूँ। दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात की गई है कि किरणें चाहे सूरज की हो या आशाओं की, जब निकलती हैं सारे अंधकार को मिटा देती है। रास्ते मुश्किल लगते हैं दोस्तों, रास्तों में देखिए मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है, रास्ते मुश्किल लगने लगते हैं और उम्मीद कहीं खो सी जाती है। लेकिन याद रखिए, एक छोटी सी उम्मीद, एक प्यारी सी मुस्कान और एक सकारात्मक सोच हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। जैसे सुबह की पहली किरण रात के अंधेरे को हटा देती है, वैसे ही उम्मीद की एक किरण हमारे मन के डर, दुख और निराशा को भी दूर कर देती है। तो दोस्तों, साथियों, मैं आपसे यही कहूंगी कि हमेशा हिम्मत का दामन थामे रखिए, क्योंकि जहां आशा होती है वहां नया सवेरा जरूर होता है। और इसी खूबसूरत सी सोच के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे पास यहाँ पर पूजा जी का मैसेज आया है विकास नगर से, और ये कहती हैं, हेलो मैम, कैसे हैं आप? आपका मुझे लगता है कि ये स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल पूजा, आपने सही सोचा है और सही सुना है। आवाज़ में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है गले में, तो आवाज़ भी चेंज हो गई है क्योंकि कोल्ड भी हो गया है। ये कहती हैं कि मैम आप काढ़ा बनाकर पिएगा तो आपके गले को राहत भी मिलेगी और आपका जो कोल्ड है ना, जल्दी से ठीक हो जाएगा। ओके पूजा, थैंक यू। इन्होंने बताया है कि अदरक, इलायची, लौंग, तुलसी जी के पत्ते जो होते हैं, उनको पानी में बॉईल कीजिएगा, इनका इन सबको मिलाकर काढ़ा बनाइए और इसका सेवन आप कीजिएगा तो आपको काफी राहत मिलेगी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, थैंक यू पूजा। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं प्राची जी, और प्रकाश नगर से कहती हैं, हाय मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पूजा एंड प्राची, पूजा और प्राची दोनों का नाम का अक्षर पी से ही है और मैं कंफ्यूज हो गई। तो प्राची कहती हैं कि हम सुबह FM मुरादाबाद ऑन करते हैं और रात 11 बजे तक हम रेडियो सुनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। सारे जो शोज आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, हमारी हमारी सेहत से जुड़े हुए, जो हमें बताते हैं कि क्या डाइट में लेना चाहिए, लाइक सुबह सुबह योगा मेडिटेशन कितना ज़रूरी है, किस तरह से करना चाहिए, वो सारे इन्फॉर्मेटिव जो भी आप कार्यक्रम आप लोग प्रस्तुत करते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच प्राची। जब आपके पॉजिटिव फीडबैक हमें आते हैं तो हमें भी लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा करें।

तो चलिए दोस्तों, अभी सुनाती हूँ मैं एक खूबसूरत से गीत, उसके बाद लौट कर आती हूँ। आप कहीं मत जाइए, दिल से मुस्कुराइए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और बहुत ही खूबसूरत सा आपने अभी ये ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी बदलापुर से। एंड इस खूबसूरत सी गाने को गाया था आतिफ असलम जी ने, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़। म्यूजिक डायरेक्टर थे सचिन जिगर जी। और अमेजिंग ट्रैक ना दोस्तों, कितना प्यारा सा गाना था ना। कभी कभी कुछ गाने ना ऐसे होते हैं जो दिल को सुकून दे जाते हैं। और दोस्तों, सनातन धर्म की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है जहां भगवान को सिर्फ पूजा नहीं जाता बल्कि परिवार के सदस्य की तरह अनोखी उनकी सेवा और देखभाल भी की जाती है। राजस्थान की कोटा में स्थित ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में सदियों पुरानी एक अनोखी परंपरा आज भी निभाई जाती है। कहा जाता है कि करीब 300 साल से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगदीश, बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए 51 कलशों के ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें 200 किलो स्वादिष्ट आमरस का भोग भी लगाया जाता है। लेकिन इसके बाद शुरू होता है भगवान का बीमारी अवकाश यानी मेडिकल लीव्स। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि ठंडे जल और भारी मात्रा में आमरस के कारण भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए पूरे 14 दिन तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि भगवान विश्राम कर सकें। इस दौरान मंदिर की घंटियों को भी कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि उनके आराम में कोई बाधा ना आए और भगवान के स्वास्थ्य लाभ के लिए दूध और काली मिर्च का विशेष काढ़ा भी चढ़ाया जाता है। सच में दोस्तों, यही तो है हमारी संस्कृति की सबसे प्यारी बात, जहां आस्था में अपनापन और भावनाओं में परिवार जैसा रिश्ता नजर आता है। अगर आपको भी हमारी भारतीय परंपराओं की ये अनोखी बातें पसंद आई हैं तो हमें जरूर बताइएगा मैसेज करके। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और कुछ खूबसूरत संदेश भी आए हैं, उनको भी हम जल्दी से शामिल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अजीत कसाना जी का, और साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी। ये मैसेज पहुँचाते हैं अपने नदावली जिला मुरादाबाद से। कहते हैं, दिलकश सॉन्ग्स के साथ दिल प्रिय प्रोग्राम मनपसंद होस्ट आरजे खुशी जी। नमस्कार। नमस्कार आपको भी सर, थैंक यू सो मच। आप काम करते करते खेतों में फटाफट से हमें मैसेज भी पहुंचा देते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया सर। एंड यहां पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास ये मैसेज आया है ईदगाह मुरादाबाद से। ये समीर जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं और गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं, ईद की मुबारक भी दे रहे हैं। सेम टू यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है अंसार हुसैन जी का दौलतबाग मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दीपक जी का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है। और दीपक जी कहते हैं, खुशी मैम कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं सर, लगता है आपका स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। हाँ जी सर, मुझे कोल्ड हो गया है लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गाना मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया है आज की मॉर्निंग। बहुत ही प्यारा सा गाना है, नेहा कक्कड़ साथ में रोहन प्रीत जी की खूबसूरत सी आवाज़। इस गाने को सुनिएगा आप, मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गीत की उस पार।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, अब हमारे जाने का भी वक्त हो गया है, लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और इस विशेष दिन पर आज हमारे शो में अब हम बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड चलाने वाले हैं, प्ले करने वाले हैं आप सभी के लिए। और मेरे जाने का वक्त हो गया है, तो जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, स्वच्छता को अपनी आदत बनाइए और महिलाओं की सेहत को समझना और उनका साथ देना भी हमारी जिम्मेदारी है। और अगर अपने जब आप अपने अपनों का ख्याल रखते हैं तो ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है। तो हमारा ये एपिसोड आज जो हम प्ले करने वाले हैं मासिक धर्म से रिलेटेड है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी हैं, तो आप सुनना ना भूलिएगा ठीक 12:15 पर। और अपने फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। आप नंबर है 9837896896। और अब मुझे दीजिए जाने की अनुमति, मैं मिलूँगी आपसे 3 से 5। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना भी ख्याल रखिए। और आप सभी को अगेन ईद की बहुत बहुत मुबारकें। और एक खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए आरजी खुशी यहाँ पर प्ले करती है,

0: Dominate the Rift with Opera.
1: क्या सिमरन, क्या जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: टायर लो, सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
7: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
8: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: से सेहत सही लाभ कई। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रीना। आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दे सके तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
1: धन्यवाद आरजे रीना, और मेरे सभी प्यारी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही एक ऐसे विषय हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफा जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उसकी प्रक्रिया को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां झिझक मौजूद है।
0: सच कहूं सेहत ये भैया, आज भी कई घरों में पीरियड्स शब्द बोलना भी आसान नहीं होता, लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों है?
1: देखो आरजे रीना, ये एक सामाजिक सोच का मामला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जिससे ये कोई गंदगी या शर्म की बात नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हर लड़की और हर महिला के जीवन में एक सामान्य जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
0: मतलब ये सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
1: हाँ, माँ पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी

0: और इस्तेमाल की गई सामग्री को सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
1: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम संसाधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती हैं क्या?
0: बिल्कुल अर्जेरीना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिलते हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार वे समुदाय मिलकर सुविधाएं सुनिश्चित करें।
1: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
0: बिल्कुल आरजे रीना, बिल्कुल सही समझाया आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी जैसे चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: तो एक और संतुलित आहार कैसा होना चाहिए और हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
0: देखिए अर्जेरीना, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विधिवद्धता, आधी थाली में सब्जी हो, साथ में दाल या प्रोटीन जैसे अनाज, रोटी, चावल और अगर संभव हो तो दूध, दही या हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए। पानी भी पर्याप्त मात्रा में ही पीना चाहिए।
1: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
0: बिल्कुल अर्जेरीना, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है वही सबसे अच्छा है, बस हम उसे सही तरीके से अपनाते हैं तो।
1: सेहतिया भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझ पाते जब तक वे किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
0: बिल्कुल आरती रीना जी, मेरे पास एक कहानी है और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ श्रोताओं। हमारे ही एक गांव में एक लड़की रीना की कहानी। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुए तो वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी खुलकर बात ही नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया और कहा, किसी को बताओ मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए और ना ही उसे ये पता था कि कितनी बार बदलना है। वो भी बस उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रहती थी। धीरे धीरे उसे खुजली और जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद ये भी नॉर्मल है। इसी के साथ एक और समस्या थी, रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब तो बहुत ही कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था, इवन उसे चक्कर भी आते थे। कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा, वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आई। उन्होंने लड़कियों से इस विषय में खुल के पीरियड्स के बारे में बात की। पीरियड्स क्या होता है, उसे कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतना खुलकर सब कुछ बता पा रही थी और सारी बातों को सुन पा रही थी। शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्यकर्ता ने उसे समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। उसे सैनिटरी पैड दिए गए और ये भी बताया गया कि आयरन की कमी उसे क्या क्या प्रॉब्लम दे सकती है। और उसके बाद आशा दीदी द्वारा उसे आयरन की गोली दी गई और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह भी दी गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, समय समय पर पैड बदलना सीखा और अपने खाने में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण हमें इसे आसानी से संभाल सकने में हमारी हेल्प कर सकता है।
1: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल

0: जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
1: बिल्कुल आरजी रीना, और हमारा मकसद भी यही है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
0: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। अपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आरजे रीना। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों में भी पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, दहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता है। कई बार वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं। इसका असर उनकी ताकत कम करना, उनकी क्षमता कम करना और उन्हें लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर असर भी पड़ता है। इसका
0: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझते हैं, उसके पीछे भी पोषण की ही कमी हो सकती है।
1: बिल्कुल आरजे रीना, यही बात हम विश्व पोषण दिवस के माध्यम से समझाते हैं, और विश्व पोषण दिवस की संदेश से हमें ये बात जोड़ देती है। इसी दिन का मकसद है सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए जरूरी है। और जब हम आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, तो इसका मकसद भी यही है कि सही पोषण पुरुष हो या महिला, हर किसी को मिलना चाहिए। और जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर अ पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड, तो इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसे समाज की योजना बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और बिना झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। और इसमें पोषण भी एक बहुत बड़ी कड़ी है श्रोताओं, और बहुत ही मजबूत कड़ी है, यानी कि ये दोनों ही विषय एक दूसरे को जोड़ते हैं।
0: सेहतिया भैया, आपने अनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
1: देखिए आर्जेरीना, अनीमिया भारत में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य समस्या है, खासकर किशोरी लड़कियां और महिलाओं में इसकी दरें काफी ज्यादा हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं में यह समस्या ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हर मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो ये कमी और भी बढ़ जाती है।
0: तो इसका सीधा मतलब है, अगर हम पोषण पर ध्यान देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना, और बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए तो जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, दाल और चना, गुड़, मूंगफली, तिल, और अगर संभव हो तो दूध, दही या अंडा या अन्य प्रोटीन के जो सूत्र हैं, उनको भी आप आहार में जरूर शामिल करें। फल जैसे केला, अमरूद, संतरा, ये भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज को रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
0: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी, सेहत उतनी मजबूत होगी।
1: बिल्कुल सही कहा आरजी रीना आपने, और यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक और बात हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वो भी हमें बीमारी का कारण बना सकता है।
0: साथियों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि यह हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती हैं। तो साथियों, आज के इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
1: याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज की यही शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा इसी शो में यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, नमस्कार।
2: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: आपका अपना सामुदायिक रेडियो है मेरा। लेकिन जैसे तैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि भैया आज हालत तो खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर की एकदम घड़ी सर पर खड़ी है। तो दोस्तों, पहले सिर्फ मौसम गर्मी हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आसपास।
1: अरे आरजे आनंद, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी तो है, पसीना आएगा ही। लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वकाई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों को भी इसमें कोई भूमिका निभानी है? सच बताऊं तो अभी गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं हो रही है।
1: अरे आरजी आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
1: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: हाँ अजय आनंद, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
0: तो भाभी, अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
1: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो पसीना आना भी बंद हो सकता है, और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
0: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
0: तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए घर में हो या बाहर हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
1: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पियेंगे लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
0: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ORS क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे आनंद। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
0: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
1: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
0: हाँ, ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
1: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
0: क्या बात है टीकन भाभी, और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाए। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा ले जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
0: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
1: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी हवा मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
0: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए क्योंकि ये समस्या सबकी है।
1: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
1: ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
0: भाभी एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
1: अरे आरजे आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
0: साथियों आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है, गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान

0: रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बीस जुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहाँ लापरवाही भारी पड़ गई हो?
1: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया, और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था, और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
0: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
1: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी पिला दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
0: सही कहा टीकन भाभी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है। इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
1: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए, और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छांव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है, और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले अपना नाम बता देता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त RJ आनंद, और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन, मेरी प्यारी दोस्त
1: RJ रीना।
0: यस RJ रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, और सबसे मजेदार बात, स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा RJ रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय। उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है,
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहे है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए, आखिर यह योजना कैसे काम करेगी?
1: जरूर, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
0: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
0: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
1: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
0: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
1: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
0: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
1: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
0: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है,
1: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
0: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
1: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
0: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
1: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
0: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों,
1: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
0: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
1: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
0: दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गांव या शहर तक सीमित था, अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
1: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
0: सही कहा आपने आरजी रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा
1: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करे, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखे और कैसे ब्रांडिंग करे और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाए।
0: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
1: बिल्कुल, कल्पना कीजिए किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाइयां, स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
0: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
1: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
0: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
1: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
0: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
1: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
0: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
1: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
0: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
1: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए।
0: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे तभी सचमायनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।
1: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
0: तो मैं हूँ आरजे आनंद
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना।
0: फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार और आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जहां आपको मिलेगी कुंदन पॉल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजी खुशी। साथियों, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है और सच कहूँ तो थोड़ा डराने वाला भी है, लेकिन जरूरी है कि हम इस पर खुलकर बात करें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे ही पास के गांव में एक बच्चा तेज बुखार से पीड़ित हुआ। घर वालों ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बुखार डेंगू निकला और जब तक अस्पताल ले जाया गया बहुत देर हो चुकी थी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये चेतावनी है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो सालों से गांव-गांव जाकर लोगों के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो सालों से गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं।
4: धन्यवाद आरजे खुशी, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को भी धन्यवाद। आपने जो कहानी बताई वो बहुत दुखद है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि डेंगू को हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है।
3: भाभी, सबसे पहले तो ये बताइए कि डेंगू आखिर क्या है? लोग इसे हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं? सच कहूँ तो नाम ही इतना डरावना है कि सुनते ही घबराने लगते हैं।
4: देखिए आरजे खुशी, डेंगू एक वायरल बीमारी है, जो एक खास तरह के मच्छर, जिसे हम एडिज मच्छर कहते हैं, के काटने से फैलती है। अब इसे हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये बीमारी होती है तो शरीर में इतना तेज दर्द होता है कि इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी हड्डियाँ टूट रही हो। हाथ पैर, जोड़ों और पीठ में ऐसा दर्द होता है कि उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे खास बात ये है कि ये मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर में जमा पानी, बाल्टी, गमले, पुराने टायर या छत पर जमा पानी। इसीलिए लोग अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि साफ घर में कोई खतरा नहीं होता है।
3: मतलब गंदगी नहीं बल्कि साफ पानी भी खतरा बन सकता है? ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया है हमारी सोच से।
4: बिल्कुल, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि अगर घर साफ है तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं भी पानी जमा है, इवन एक छोटे से ढक्कन में भी, तो मच्छर वहाँ अंडे दे सकता है। इसीलिए सिर्फ सफाई काफी नहीं है, पानी का जमा होना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
3: भाभी, ये बात तो सच में सोचने वाली है, लेकिन अब ये बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि ये साधारण बुखार नहीं बल्कि डेंगू हो सकता है?
4: देखिए, डेंगू के लक्षण शुरू में बिल्कुल आम बुखार जैसे होते हैं। अचानक तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द महसूस होना, पूरे शरीर में दर्द, कमजोरी, उल्टियाँ, मिचली आना और कई बार शरीर पर लाल लाल चकत्ते भी दिखाई देते हैं। इसी वजह से लोग इसे साधारण वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब बुखार उतरने के बाद भी शरीर ठीक नहीं होता, मगर मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, पेट में तेज दर्द हो, बार बार उल्टी हो, सांस तेज चलने लगे या नाक और मसूड़ों में से खून आने लगे, तो ये संकेत है कि बीमारी गंभीर रूप ले रही है, उसी समय तुरंत डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है।
3: मतलब बुखार उतरने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता? हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि बुखार गया मतलब बीमारी खत्म।
4: नहीं आरजे खुशी, यही सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार लोग यही लापरवाही कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन असल में शरीर अंदर से कमजोर हो रहा होता है। डेंगू में कई बार बुखार उतरने के बाद ही हालत बिगड़ती है, इसीलिए उस समय ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है।
3: साथियों, अब मैं आपको एक सच्चाई की बहुत करीब एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमें डराती भी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा सिखाती है। ये कहानी है हमारे ही जैसी एक छोटे से गांव की और उस गांव में रहने वाले 12 साल के बच्चे सोनू की। गर्मियों के बाद बारिश का मौसम शुरू हुआ था। गांव में हर जगह पानी जमा होने लगा था, कहीं कूलर में, कहीं पुराने टायरों में, तो कहीं छत के कोनों में। सोनू को खेलना बहुत पसंद था और वो रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलता था। एक दिन सोनू घर आया तो उसे हल्का बुखार था। उसकी माँ ने सोचा शायद धूप में ज्यादा खेलने की वजह से हो गया होगा। उन्होंने उसे आराम करने को कहा और घर का ही इलाज शुरू कर दिया, लेकिन अगले दिन बुखार और तेज हो गया। सोनू ने सरदर्द और बदन दर्द की शिकायत भी की। शुरुआत में परिवार ने इसे साधारण बुखार समझा, लेकिन सोनू की बड़ी बहन जो स्कूल में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें सीखती थी, उसने तुरंत ध्यान दिया। उसे याद आया कि गांव में कुछ दिन पहले ही आशा दीदी ने डेंगू के बारे में बताया था कि तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द और बदन दर्द इसके लक्षण हो सकते हैं। उसने अपने माता पिता से कहा इसे हल्के में मत लो, हमें तुरंत अस्पताल चलना चाहिए। शुरू में परिवार थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उन्होंने बहन की बात मान ली। सोनू को तुरंत पास के अस्पताल केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा। रिपोर्ट आई तो पता चला कि सोनू को डेंगू है। एक पल के लिए पूरा परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें समझाया घबराने की जरूरत नहीं है, आपने समय पर कदम उठाया यही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर ने सोनू को भर्ती कर लिया, उसे आराम कराया गया। शरीर में पानी की कमी ना हो सके इसके लिए उसे लगातार तरल पदार्थ दिए गए, पानी, ORS, नारियल पानी, बुखार के लिए सही दवाइयां दी गई और उसकी हालात पर लगातार नजर रखी गई। सोनू की माँ हर समय उसके पास बैठी रहती, उसे पानी पिलाती थी, उसका हौसला बढ़ाती थी। बहन हर दिन डॉक्टर से पूछती क्या सुधार हो रहा है। 3-4 दिन थोड़ी मुश्किलें थी, बुखार कभी कम नहीं होता, कभी कम होता तो कभी बढ़ जाता, लेकिन धीरे धीरे सोनू की हालत में सुधार आने लगा। उसके प्लेटे काउंट स्थिर होने लगा। उसका 3-4 दिन थोड़ी मुश्किलें थी, बुखार कभी कम होता कभी बढ़ जाता, लेकिन धीरे धीरे सोनू की हालत में सुधार आने लगा। उसका प्ले काउंट स्थिर होने लगा, कमजोरी कम होने लगी। 1 हफ्ते के अंदर सोनू मुस्कुराने लगा और कुछ दिन बाद वो पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। हंसता है आज सोनू, फिर से खेलता है, हंसता है, स्कूल जाता है, लेकिन अब एक फर्क है, अब उसका पूरा परिवार और गांव पहले से ज्यादा जागरूक हो गया है। उस दिन के बाद गांव में लोगों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया, कूलर हर हफ्ते साफ होने लगे, पानी जमा होने वाली जगहों को खत्म किया गया, बच्चों को सिखाया गया मच्छर से कैसे बचना है। साथियों, सोनू की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। डेंगू खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। सबसे जरूरी, लापरवाही ना करें और सही समय पर सही फैसला लें। तो साथियों, आपने सुना समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। आपने इतनी सारी बातें बताई, सच कहूँ तो अब थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, इतनी तेजी से फैल क्यों रही है आजकल?
4: देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण हमारा बदलता हुआ माहौल। आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही, बीमारी का समय और बारिश का समय और तरीका बदल गया है। जगह जगह पानी जमा होने की समस्या बढ़ गई है, शरीर में भी और गांव में भी। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारा बदलता हुआ माहौल। आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बारिश का समय और तरीका बदल गया है और जगह जगह पानी जमा होने की समस्या बढ़ गई है। शहरों में भी और गांव में भी हर जगह ऐसे हालात बन रहे हैं जहां मच्छर आसानी से पनप सकते हैं। इसके अलावा लोगों की जीवन शैली भी एक बड़ा कारण है। हम पानी को ढककर नहीं रखते, कूलर साफ नहीं करते, आसपास सफाई नहीं रखते। इन सब वजहों से मच्छरों को पनपने का मौका मिल जाता है और अगर एक बार मच्छर संक्रमित हो गया तो वो कई लोगों को काटकर बीमारी फैला सकता है।
3: मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और माहौल का भी नतीजा है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने और यही वजह है कि इसका समाधान भी हमारे हाथ में ही है।
3: तो भाभी अब ये बताइएगा कि क्या इसका कोई इलाज है? अगर किसी को डेंगू हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
4: देखिए, डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है, यानी इसके लिए कोई ऐसा दवा नहीं है जो सीधे वायरस को खत्म कर दे। लेकिन अगर समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिले तो मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। डॉक्टर आमतौर पर आराम करने की सलाह देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को कहते हैं और बुखार या दर्द के लिए पैरासीटामोल देते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए, खासकर इम्ब्रूफेन या एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बुखार बढ़ाने का खतरा बढ़ सकता है, जो डेंगू में बहुत खतरनाक हो सकता है।
3: मतलब सबसे जरूरी ये है समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह लेना और खुद से इलाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए।
4: और उससे भी ज्यादा जरूरी है बचाव, क्योंकि अगर हम पहले से सावधान रहे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है।
3: तो भाभी अब सबसे जरूरी सवाल हमारे श्रोताओं को बताइए कि डेंगू से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने घर और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं?
4: देखिए, डेंगू से बचाव का सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका यही है कि हम मच्छरों को पनपने नहीं दें। इसके लिए हमें अपने घर, छत और आसपास की जगह पर खास ध्यान देना होगा। कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कूलर हो, बाल्टी हो, गमले की प्लेटें हो या छत पर पड़ा कोई पुराना टायर। हर हफ्ते कूलर का पानी खाली करना और उसे साफ करना बहुत जरूरी है। पानी की टंकियों को हमेशा ढक कर रखें और जहां भी पानी जमा हो सकता है उस समय समय पर साफ करते रहें। इसके साथ साथ हमें अपने शरीर को भी मच्छरों से बचाना होगा। जितना हो सके पूरे कपड़े पहने, खासकर दिन के समय, क्योंकि ये मच्छर दिन में ज्यादा संक्रमित होते हैं। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और अगर संभव हो तो मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे भी लगाएं। और एक बहुत जरूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है तो उसे भी मच्छरों से बचा कर रखें, ताकि कोई मच्छर उसे काटकर वायरस को दूसरे लोगों तक ना फैला सके।
3: मतलब भाभी ये सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। अगर एक व्यक्ति भी लापरवाही करता है तो उसका असर सब पर पड़ सकता है।
4: बिल्कुल सही कहा आप, डेंगू ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति के साधारण रहने से काम नहीं चलेगा। जब तक पुराना मोहल्ला, पूरा गांव मिलकर काम ना करे तब तक इसे रोकना मुश्किल है। इसीलिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
3: भाभी एक बात बताइए, ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी होता है ना? मैंने कहीं सुना था इसके बारे में।
4: हाँ अर्जे खुशी, बिल्कुल होता है। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद यही होता है कि लोग समय रहते जागरूक हो जाए, बरसात शुरू होने से पहले तैयारी कर ले, ताकि जब मच्छरों का खतरा बढ़े तब हम पहले से तैयार हो।
3: तो भाभी गांव में लोग इसे कैसे मना सकते हैं? क्या सिर्फ भाषण देने से काम चल जाएगा?
4: नहीं आरजे खुशी, सिर्फ बातें करने से नहीं, काम करने से बदलाव आता है। गांव में लोग इस दिन सफाई अभियान चला सकते हैं, नालियों को साफ कर सकते हैं, जहां पानी जमा है उसे हटा सकते हैं। स्कूल में बच्चों को समझाया जा सकता है कि मच्छर कैसे पैदा होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कहीं आसपास पानी जमा तो नहीं है। जब पूरा गांव मिलकर काम करेगा तभी असली बदलाव आएगा।
3: साथियों, आज इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, डेंगू कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी में

0: स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
1: इसी के साथ हम अब आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म करते हैं, पर जाने से पहले लेते हैं हम सब मिलकर अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ। तो श्रोताओं, सेहत सही तो लाभ कई। मैं अब आपकी दोस्त आपसे विदा लेना चाहती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने गांव, अपने मोहल्लों को डेंगू से सुरक्षित रखिए। फिर मिलेंगे इसी शो में।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
8: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे RJ आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त RJ रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं, ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों RJ रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
9: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
8: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
9: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
8: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से AC में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
9: बिल्कुल सही।
8: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
9: और स्टूडियो में ना तब भी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
8: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है, और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा, नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पर हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसके उसकी जिम्मेदारी है रीना,
1: वो हमारी
0: हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए,
0: जरूर लगाइए। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों,
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल,
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप, और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है,
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे के ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है और जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपने प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कंट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो इससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ,
1: ये घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते तो, लेकिन हम धोने लग जाते, ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें, बिल्कुल, है ना? ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी, तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी
1: वेस्ट होता है।
0: तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सकें। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी। साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खोसा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पोल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा के वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों के वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए।
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं, उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले यह बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है?
6: मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
7: क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया साहब।
6: आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
7: मैं क्या करूँ साहब?
6: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
7: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
5: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है,
6: तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें। पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
9: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
8: अरे वाह।
9: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
8: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
10: टायर लो सोना जीतो।
11: क्या?
10: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
12: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
13: अपोजिट
12: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
13: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
14: That we end the midday news.
15: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
11: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
15: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए

0: अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को। ऑफ कोर्स जब आनंद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है, और आज एक और खास बातचीत में एक खास एक्सपर्ट को हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही सीरियस भी है, लेकिन काफी मजेदार भी होने वाला है। यस, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। जी हाँ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है इस पर बात करना। और मुझे लगता है आजकल के लाइफस्टाइल इतना बिजी है, जितना ज्यादा प्रेशर हमें और आपको मिल रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा हमें स्ट्रेस देखने को मिलता है। आजकल के छोटे बच्चे, बड़े जितने भी लोग हैं, सब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को लेकर जूझ रहे हैं, और आज इसी पर हमने सोचा बात करना जरूरी है। यार रेडियो आप सुनते हैं तो काम की बातें भी होनी चाहिए, और इसीलिए आज हम अपने बीच में एक बहुत ही कमाल की एक्सपर्ट को लेकर आए हैं, जो आपको तमाम सारी चीजें बताने वाली है, और मेरे और आपके मन में जो मिथ है वो भी आज क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का मतलब सिर्फ मानसिक समस्याओं को समझना नहीं है या उनके लक्षणों को पहचानना नहीं, बल्कि उसका जो डर है आपके मन में, जो झिझक है, उसको भी कम करना बहुत जरूरी है। और आज यही हम समझेंगे हमारी एक्सपर्ट से। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस ऑफ कोर्स आप सही सुन रहे हैं, और आज हमारे बीच में जो मौजूद है, शी इज एब्सोल्यूट अल्टीमेट लेडी और बहुत ही कमाल की एक्सपर्ट हैं। आज इनसे बात करना तो बनता है इस प्रोग्राम में। तो अब आइए जरा मैम से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तो मैम का तारुफ करा दूं। तो आज हमारे स्टूडियो में है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर मनोरंजनी जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू एफएम मुरादाबाद एंड हाउ वी डूइंग, कैसे हैं आप?
8: थैंक यू मिस्टर आनंद, मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप लोग से मिलने में मुझे बेहद खुशी हो रही है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल आप लोग हमें इन्वाइट किया है। एंड ये जो मंच है, ये मेनी पब्लिक को ये रीच होना है, एंड इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट, सब लोग इसमें से एटलीस्ट कुछ चीजें लेके जाना है ताकि दे कैन इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ, राइट? जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट दे हैव टू अप्लाई इन डेली लाइफ, राइट? तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे स्टोरी शेयर करेंगे सो दैट दे विल बी इम्प्रेस्ड बाई इट, एंड अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ सकें।
7: That's very nice, ma'am. Wonderful intro. Thank you so much. And आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको रेडियो स्टेशन में आके कैसा लग रहा है?
8: रेडियो स्टेशन, दिस इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्थ इंडिया आने के बाद दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई गॉट, एंड यहाँ पे मेरा पहले बात हुई है मिस्टर गौरव जी से, ही इज सो गुड, एंड आई हैव कम अक्रॉस विद मिस्टर अखिल, एंड ही इज सो नाइस इन टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स, एंड सो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंड वी बोथ विल बी बेनिफिटेड बाई दिस।
7: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, मैम को अभी आपने सुना, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर मनोरंजनी जी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। सो मैम, आई वांट टू आस्क यू, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं।
8: ओके, आई एम सो प्रिविलेज्ड मिस्टर आनंद।

0: आई एम डॉक्टर मनोरंजनी विष्णुप्रियन जे, बट मैं ये जो डॉक्टर टाइटल लेने से पहले आई हैव स्टार्टेड माई वेरी बेसिक राइट एज अ बीएससी नर्सिंग कंप्लीशन स्टूडेंट. यस, तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आई हैव ट्रैवल्ड टू देहरादून एंड आई हैव मेट अ विजनरी लीडर right, our vice chancellor Dr. Vijay Dasmana ji, he had a full hope on me and mujhe language nahi pata, mujhe basic hindi nahi aata, but still unka jo hope hai right, wo mujh par itna bharosa rakhe hain to wo mujhe leke aaye Dehradun tak right, kahan se Chennai se Dehradun tak, that itself a motivating for me. To wahan pe I have trained myself as a staff nurse, to uske baad I become as a clinical instructor, fir wo jo विजनरी लीडर है जिनके बात मैं कर रही हूँ डॉक्टर विजय दसमाना जी, ही हैड फुल होप ऑन मी एंड वो मुझे बोला है मनो यू गो बैक टू चेन्नई राइट, आप चेन्नई जाओ और आगे पढ़ो. तो मैं गई चेन्नई एंड आई डिड माय मास्टर्स. तो मास्टर्स मैंने साइकेट्री नर्सिंग में किया है जिसको हम बोलते हैं मानसिक स्वस्थता राइट, उसमें हम जागरूक करने के लिए. तो आई हैव कंप्लीटेड, फिर आई वेंट बैक टू देहरादून एंड मेरा करियर दोबारा वहां शुरू हुआ एज ए नर्सिंग ट्यूटर. फिर मैं हुई असिस्टेंट प्रोफेसर राइट. तो ऐसे देहरादून में आई हैड 13 फुल ईयर्स ऑफ अ हैंडसम एक्सपीरियंस राइट, नॉट ओनली एक्सपीरियंस बट ऑल्सो अ वेरी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज. देन आई हैव ट्रेवल्ड टू अदर पार्ट ऑफ दिल्ली एंड मैंने करियर ऐसे आगे बढ़ाया एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज अ प्रोफेसर एंड आज मैं एक यूनिवर्सिटी में दैट इज मोरादाबाद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर राइट. तो अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेसरशिप आई डील विद स्टूडेंट्स, मेंटोरिंग, रिसर्च गाइडशिप राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड what I'm trying to say is जो भी हम बहुत ऊंचे पहुंचने से पहले we have to start from scratch है ना, तो वो हमें क्या लगता है, बहुत डर लगता है कैसे शुरू करें कहाँ शुरू करें, but once we step into it right, तो with a good hope and spiritual blessings जरूर हम आगे बढ़ेंगे. yes, apart from this I'm also a certified counselor and who do online counseling concentrating more on adolescents. Yes, students, children and जिनका मानसिक स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, मानसिक रोग है राइट, बीमारी है, उन लोग ट्रीटमेंट के बाद जो गिविंग अ साइको एजुकेशन, उन लोग आगे नेक्स्ट लाइफ में क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए. हम मानते हैं उन लोग को तकलीफ है पर हम उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते है ना, तो आगे हम उनको कैसे अपनी लाइफस्टाइल के साथ दवाई के साथ साथ नॉर्मल लाइफ कैसे वो लोग जिएंगी राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द होल कॉम्पैक्ट ऑफ मनोरंजनी.
1: That's very nice, ma'am. Such a beautiful introduction, and you are so ultimate, absolutely.
0: Thank
1: and
0: you.
1: I'm super glad with you.
0: Thank
1: because जब हम लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो feelings और positivity दोनों ही match हो जाती है, मजा आ जाता है.
0: Yes, of course.
1: And you are also very positive.
0: Thank you so much.
1: Well, आगे बढ़ते हैं और आज का मेरा पहला question होगा, ma'am, आपके लिए. What is mental health? Basically, क्या है ये?
0: देखिए, mental health ये एक कॉम्पोनेंट होती है राइट. हम सब लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, WHO, जो भी हमें स्टैटिस्टिकल डाटा मिल रही है, जो भी बीमारी फैल रही है, जो भी अच्छी चीज हो रही है, ये सब हमें कहां से, जो ऑथेंटिक मतलब जो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो डाटा कहां से मिलता है, WHO से मिलता है. वो जो WHO क्या कहते हैं, हेल्थ मतलब स्वस्थता क्या होती है, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ. अगर आपके शरीर में कोई बीमार नहीं है, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो राइट, मानते हैं वो हेल्थ है, बट दैट इज नॉट पूरा हेल्थ राइट. आपका मन कैसे होना चाहिए, आपका सोच कैसे होना चाहिए, आपका मन का स्वस्थता कैसे होना चाहिए राइट. तो हमारा शरीर का हेल्थ एंड हमारा मन का हेल्थ प्लस हमारा सोशल हेल्थ राइट. अगर हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा है, हमारा सोच, हमारा काम, हमारा एटीट्यूड अच्छा है, तो हम कैसे रहते हैं सोसाइटी में, हम मिलजुल कर रहते हैं राइट. तो वो क्या होता है, दैट बिकम्स अ सोशल हेल्थ. तो अभी हमने क्या क्या देखा, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, इसके साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ राइट. ये सब लोग कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते. जो नहीं मानते नो प्रॉब्लम राइट. तो जो मानते हैं, दिस चार कॉम्पोनेंट मेक यू हेल्दी पर्सन राइट. यहाँ से शायद आपको समझ में आ गया होगा मेंटल हेल्थ कितना जरूरी होता है
1: correct.
0: राइट. सो दिस मेंटल हेल्थ, देखो नॉर्मली क्या होता है, मेंटल हेल्थ सबको अच्छा होना चाहिए है ना, पर उसमें हम इतना ध्यान नहीं देते हैं. अगर फिजिकली कुछ बीमार हो गई है, बुखार हो रहे हैं, जुकाम हो रहे हैं, पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत भागते हैं
1: डॉक्टर्स के पास
0: राइट. बट अगर मेरा मेंटल हेल्थ इतना ठीक नहीं है, मैं उदास बैठी हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ राइट, और मुझे खाने के लिए मन नहीं है, सोने के लिए मन नहीं है, मुझे अकेला रहना है, मुझे कुछ कुछ अजीब सोच आ रहे हैं, तो क्या हमारा फैमिली हमें इम्पोर्टेंस दे रही है इस चीज के लिए? अगर किसी फैमिली ने इम्पोर्टेंस दिया एंड इसको अर्लियरली राइट जल्दी पता लगना होगा, देन क्या होता है, आपका मेंटल हेल्थ ठीक होने का बहुत बहुत चांसेस है राइट. तो मेंटल हेल्थ क्या है, एक दिन में जैसे हम सारे काम करते हैं वैसे मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेली लाइफ राइट. तो दो चीज मैं बोलती हूँ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर इनसेपरेबल, मतलब एक छोड़कर एक नहीं रह सकते हैं. अगर आपका फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हुआ, पक्का आपका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुआ. अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो कैसे लोगों को दिखता है, आपका फिजिकल शरीर से दिखता है. आप उदास बैठते हो, आप हंसते नहीं हो, आप सोते नहीं हो राइट. तो आपका फेस, आपका बॉडी पूरा टायर्ड हो जाता है राइट. सो फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ कितना कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम उसमें चांस नहीं ले सकते हैं.
1: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह गई है मैम, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी मुद्दा है जिस पे मैं और मैम आज डिस्कस कर रहे हैं. बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमारे सामने हमें तुरंत दिख जाते हैं. उन्होंने कहा कि सामने वाले की बॉडी से पता लग जाता है कि उसकी मेंटल हेल्थ किस तरीके से खराब है, क्योंकि हमारा उदास रहना, बीच बीच में किसी से बात ना करना, चिड़चिड़ापनी, वो सब सिम्टम्स है जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ से हम कितना डिस्टर्ब हैं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो कहते हैं ना, मुस्कुराहटों के पीछे भी दर्द छुपा होता है. हर इंसान अंदर से उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना मुझे और आपको दिखता है. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. दूसरा क्वेश्चन हम मैम से पूछना चाहेंगे आगे बढ़ते हुए. मैम, व्हाई इज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस, हमारे लिसनर्स को जरा इसके बारे में बताइए.
0: यस, ये आपने बोल दिया, अवेयरनेस मींस जागरूकता राइट. तो ये मैं सिर्फ तीन पॉइंट में बोलती हूँ
1: प्लीज.
0: पॉइंट नंबर वन, रिड्यूस स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या होता है, कलंक है ना. तो अगर ये स्टिग्मा कैसे होता है, अगर किसी बच्चे ने बोल दिया या किसी बड़ों ने बोल दिया, मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा है राइट, और फैमिली उसको देख रहे हैं, वो बहुत दिनों से ठीक नहीं है राइट, उसका फिजिकल भी ठीक नहीं है और उसका मेंटल एक्टिविटी भी ठीक नहीं है, बट वो डॉक्टर के पास जाना बहुत सोचते हैं. क्यों सोचते हैं? बिकॉज इसलिए सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, है ना. अच्छा, इसका कुछ बीमारी है, ये मानसिक डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहे हो, ये पागल हो गए क्या, है ना. पहला सवाल ये आता है राइट, विच दिस स्टिग्मा, ये जो कलंक है ये पूरा फैल चुके हैं, है ना. तो ये आज हमारा ये जो डिस्कशन है, दिस इज जस्ट अ ड्रॉप, है ना. ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप होकर ये जो सारे स्टिग्मा है वो हम मिटाने के लिए कोशिश करेंगे. ओके, सो दिस इज पॉइंट नंबर वन. हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो कलंक है उसको पूरी तरह से मिटाने के लिए. ओके, राइट. सो पॉइंट नंबर टू, एनकरेजेस अर्ली डिटेक्शन. सो अर्ली डिटेक्शन क्या होता है, जल्दी पता लगाना है राइट. क्या पता लगाना है, मतलब लक्षण राइट. जो साइंस बाहर दिखता है हमें, ये मेरा बच्चा है ये उदास है, वो नहीं बोल रहा है, इसका 20 साल हो गई है, आज तक मैंने उसको ऐसे नहीं देखा है, पर ये पिछले एक हफ्ते से बहुत उदास है, अकेले कोने कोने में जाके बैठता है, नहीं खा रहा है, नहीं पी रहा है राइट, और ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहा है जो हम कभी फैमिली में हम इस्तेमाल ही करते हैं, पता नहीं इसके ऊपर क्या हो रहा है राइट. सो व्हाट इज ऑल दिस, ये सारे होते हैं लक्षण राइट. जब आपको ये लक्षण पता चल गए तो आपको क्या करना चाहिए? आनंद जी आप बताइए, आप क्या करोगे?
1: मैम मैं तो सीधा एक्सपर्ट के पास जाके विजिट करूंगा.
0: बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच. आपने इतना एक शब्द में बोला है दैट यू विल विजिट एन एक्सपर्ट राइट, पर सब लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं ना.
1: गॉट इट
0: राइट. ऑल आर नॉट डूइंग दिस. वो लोग बहुत कुछ घर में जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी किसी के पास लेके जा रहे हैं, है ना. वो लोग एक्सपर्ट के पास नहीं जा रहे हैं जिनको जाना चाहिए. चीजें ज्यादा बिगड़ने से पहले रोक लो राइट. डरो मत जो भी चीज है, जल्दी पता लगने में चीजें वहीं की वहीं खत्म नहीं भी होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, exactly. उसका हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे. अगर हाथ से चली गई चीजें, सिर के ऊपर चली गई, तो फिर हम रोए धोए कोई फायदा नहीं है, राइट. सो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? एनकरेजिंग अर्ली डिटेक्शन. अगर आपको कुछ पता चल गए तो तुरंत एक्शन लो, बातें ज्यादा मत करो, एक्शन लो, राइट. काम करो ज्यादा, यू अंडरस्टैंड, राइट. सो पॉइंट 3, इम्प्रूव ओवरऑल वेल बीइंग, है ना. तो मैंने पहले ही बोला है, जो WHO ने बोला है, हेल्थ का कॉम्पोनेंट्स 4 होते हैं, है ना. तो इसको हम क्या बोलते हैं, होलिस्टिक बोलते हैं. होलिस्टिक मतलब पूरा, राइट. एक इंसान, जब एक पूरा इंसान होते हैं, तब का मन अच्छे हो या शरीर अच्छे हो, जो लोग से अच्छे से व्यवहार करते हो, और उसको सारी जो खामियां है वो प्रॉपरली चल रहा हो, राइट. तो अगर हम मेंटल हेल्थ क्यों बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंडिविजुअल का ओवरऑल एक्टिविटीज अच्छे होना चाहिए, एंड जो इंसान जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी क्वालिटी होना चाहिए, है ना. पर आजकल हम कर क्या रहे हैं, हम जिंदगी काट रहे हैं,
2: करेक्ट,
0: है ना. एक ही शब्द में बोलो, हम जिंदगी काट रहे हैं. सुबह 9 बजे चले गए, काम कर रहे हैं मशीनों की तरह, राइट. 1 बजे लंच कर रहे हैं 10-15 मिनट में, फिर पेपर फाइल लेके भाग रहे हैं काम के लिए, मीटिंग है. शाम 5 बजे घर जा रहे हैं, घर जाके भी वही सेम, है ना. मशीनरी लाइफ, हम जिंदगी काट रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं, यू अंडरस्टैंड, हम जी नहीं रहे हैं. बट अगर आप इसको पहले रेट्रो पीरियड में लेके गए, 90s में, 80s में, 70s में, लाइफ बहुत बहुत सिंपल थी, राइट. बहुत सिंपल थे, राइट. बट अभी वो 70s, 80s, 90s पीरियड नहीं आ सकते हैं, है ना. अब नाउ वी आर इन 2026. अगर इस मशीनरी वर्ल्ड में भी हम कैसे कैसे काम करें ताकि हमारा मेंटल हेल्थ पूरा हमारे साथ हो जाए, राइट. तो उसमें हमें कॉन्सेंट्रेट करना है. तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट. 1, जो कलंक है उसको मिटाना है. 2, जल्दी पता लगाना है. 3, जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसको क्वालिटी लाइफ देने के लिए, यू अंडरस्टैंड. आई होप आनंद जी, मैंने आपका जो सवाल को जस्टिफाई किया है.
1: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे से आपने किया है मैम, थैंक यू वेरी मच. और मैम, कई लोग हैं जो साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं, मतलब वो स्ट्रगल करते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: साइलेंट स्ट्रगल, सी, एक ही शब्द में बोलूंगी, दैट यू शुड नॉट हेसिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, है ना. आपको अगर जरूरत पड़े आपको मदद लेना चाहिए, आप पीछे मत हो, यू स्टॉप ओवर थिंकिंग, है ना. आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना. हम ओवर थिंकिंग करते हैं,
1: ये ऐसे कई बार करने लग जाता हूँ छोटी छोटी चीजों को लेकर. तो इसका रीजन क्या है विल मैम?
0: बिकॉज वी आर इन मोड ऑफ फियर एंड एंग्जायटी, आगे क्या होगा,
1: क्या एग्जैक्टली, राइट. एक बात की 4 बात आने लगती है, और ये मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है दुनिया के हर दूसरे इंसान के साथ.
0: मैं इतना बोल रही हूँ ना, मुझे भी होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, है ना, राइट. ह्यूमन बींग, जब हम प्रैक्टिकली एक चीज से फॉलो करते हैं ना, तब हमें बहुत सारे सवाल उठते हैं मन में.
1: एब्सोल्युटली,
0: यस. सो प्लीज आप हेसिटेट मत करो हेल्प लेने के लिए, राइट. ज्यादा मत सोचो, अगर मैं पूछूंगी तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ना ना ना ना ना,
1: सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते होते हैं कई बार.
0: डोंट थिंक, जीना है या मरना है, जिंदगी अच्छी तरह से जीना है या तुम्हारी जिंदगी काटना है, वो सारे तुम्हारा ऊपर है,
1: डिपेंड करता है,
0: आपके ऊपर है, मेरे ऊपर, इनके ऊपर है, राइट. सोसाइटी मैं मानती हूँ, आप टिकट जल मुल के लेना पड़ेगा, मैं मानती हूँ, बट डू नॉट डिपेंड ऑन देम, वो क्या कहेंगे, बस आप सो आप इट. एंड एक चीज, दूसरे को बुरा मत करना, है ना,
1: एंड
0: खुद को भी नुकसान मत करना, डोंट डू, एंड दूसरों को डोंट डू. अगर इट पे आप जियोगे, आई विश दैट विल लीड अ वेरी गुड लाइफ इन अ बेसिक एंड पीसफुल मैनर. ये बोलना आसान है, आप अगर बोलोगे करके दिखाओ, मुझे भी मुश्किल पड़ेगा.
1: So absolutely,
0: है ना, मुझे भी मुश्किल पड़ा. तो मैं एक बोलूंगी, जो छुप छुप कर बहुत पेन में रहते हैं ना, प्लीज कमा, ये मत सोचो लोग क्या सोचेंगे, ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, मुश्किल तो आपको हो रहा है ना, यू आर सफरिंग, है ना, पेन आपको हो रहा है, दूसरों को क्या है, वो 1-2 शब्द में बोल के चले जाएंगे, बट हु इज सफरिंग, यू, मी, ही, राइट. ये जो साइलेंट सफरर्स हम खुद भी है, तो वॉट वी हैव टू डू, ब्रेक ऑल द स्टिग्मा एंड कम आउट, आस्क फॉर हेल्प, राइट. 10 लोग से मत पूछो, आपको पता है एक बंदा, राइट, इनसे मैं शायद पूछ सकती हूँ, है ना. तो वो जो भरोसा जिनके पास है उनके पास जाओ, एंड यू डोंट हेसिटेट टू आस्क फॉर हेल्प. अगर वो हेल्प ना भी कर सके, जरूर वो कुछ ना कुछ रास्ता बताएगा, सो दैट यू कैन रीच दैट प्लेस एंड यू कैन ओवरकम दैट इन एन अर्ली फेज. जो मैंने पहले बोला है, जल्दी पता लगाना है, यू गॉट इट,
1: आई एग्री मैम, आई गॉट इट. बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच.
0: ओके आनंद जी,
1: थैंक यू वेरी मच मैम इतनी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो कॉन्वर्सेशन है गाइज, आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प करने वाली है. और मैं तो कहता हूँ ईच वन टू कीच वन, आप भी सुने औरों को भी सुनाएं. बहुत जरूरी है आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में ना, हर दूसरे पर्सन को मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, बट वो कह नहीं पाते. इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं. बहुत लोग जूझ रहे होते हैं. और आज उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही कमाल के एक्सपर्ट हैं. जी हाँ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर मनोरंजनी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. ढेर सारी कॉमन उनसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन उनसे लगातार हो रही है. तो मैम कॉमन साइंस बोल देता हूँ, सिंपल कॉमन साइंस. ओके, सो मैम कॉमन साइंस पीपल शुड बी नोटिस, मतलब वो कौन कौन सी, अगर मैं बात करूँ, ऐसी चीजें हैं जो मेंटल हेल्थ को अट्रैक्ट कर रही हैं, बट वो लोग उसको नोटिस नहीं करते हैं और उनको जरूर करना चाहिए.
0: यस आनंद जी, दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. देखिए, जो नॉर्मल हमारा जो व्यवहार है उससे हटकर कुछ भी अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा दूसरे ट्रैक में जा रहे हैं, राइट, सो दैट इटसेल्फ अ रेड सिग्नल. ठीक है ना, तो ये मेंटल, अगर आप मेंटल डिसऑर्डर बोले, हर हर डिसऑर्डर को, हर हर बीमारी को हर हर साइंस होते हैं, है ना. वो दैट डिफर्स, एक में बहुत उदास होते हैं, एक में बहुत हाइपर एक्टिविटी होते हैं, है ना, तो ये अलग होता है. बट मैं एक पांच छह चीजें ऐसे कांस्टेंट बोल देती हूँ, अगर इस चीजें हैं तो इसका मतलब मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है. ओके, सो दोस थिंग्स कम्स एज कॉन्स्टेंट सैडनेस. सो सैडनेस आपको पता है ना, उदास से भी ज्यादा, है ना, उदास से भी ज्यादा. कभी कभी ज्यादा काम है तो हम उदास हो जाते हैं, या कितना काम कर रहे हैं ना, थोड़ा मैं बस ऐसे बैठ जाऊंगा, राइट. तो ये सैडनेस है वो किसी स्ट्रांग कारण के पीछे होते हैं, राइट, वो कॉन्स्टेंट सैडनेस. दूसरा है बहुत चिड़चिड़ होना, बहुत गुस्सा करना, या गुस्सा सब लोग करते हैं, बट वो हम देखते हैं ना ये हद से ज्यादा हो रहा है, ये तुम्हारा हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, है आपको क्या हो गया है. तो जब हम ये सवाल पूछते हैं ना, मतलब वहां कुछ ना कुछ है कारण जो हमें नोटिफाई करना है, राइट. बहुत चिड़चिड़ होना, वैसे वो बंदा ऐसे नहीं है, बट आजकल हो रहा है ऐसे, बहुत चिड़चिड़ापन एंड बहुत बहुत गुस्सा है जो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं. ओके, एंड नींद, राइट, कल हम पूरी नींद ले नहीं रहे हैं,
1: exactly,
0: है ना, exactly. वो डिलिबरेटली हम कर रहे हैं, कुछ कारण है, बस मैं वो नहीं बोल रही हूँ अभी. जिसमें हम जो साइंस है ना, जो रेड सिग्नल, वो मैं बात कर रही हूँ. जो नींद एक बहुत ज्यादा लेना, या जरूरत से कम लेना, या जो नींद ले रहे हैं वो क्वालिटी नहीं है, बीच बीच में उठ रहे हैं, उठ के बैठ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, राइट, और घबरा रहे हैं, ऑल दिस क्या होता है, नींद का डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस. ओके, नेक्स्ट ओवर थिंकिंग. ये जो ओवर थिंकिंग है आजकल ना, हमारा पार्ट एंड पार्सल हो गए हैं, राइट. हर बंदे ओवर थिंकिंग, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हो, ये भी करते हैं,
1: करता है दुनिया का हर दूसरा इंसान, ओवर थिंकिंग से परेशान है.
0: यस, बट ये ओवर थिंकिंग के वजह भी हम हमारा नॉर्मल काम से तो नहीं हट रहे ना,
1: करेक्ट.
0: बट ये जो ओवर थिंकिंग के कारण एक बंदा अपना रूटीन काम छोड़कर बैठ गई, दैट मींस इट इज अ रेड सिग्नल, राइट. आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. बोल रही हूँ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट यहाँ जो ओवर थिंकिंग है वो रेड सिग्नल है. कैसे, ये जो ओवर थिंकिंग के कारण बाकी सारे काम हट गई, जो करना है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ वो कोने में बैठ के सोचते रहे, राइट. सो इट मींस दैट इज वन ऑफ द सिग्नल. ओके, नेक्स्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, है ना. तो इसको हम कहते हैं एनहिडोनिया, राइट, हमारा जो टर्म है उसमें कहते हैं. लॉस ऑफ इंटरेस्ट मींस जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, राइट, गाने सुनना या गार्डनिंग करना, वो बहुत अच्छा लगता था, बट आजकल पूरा छोड़ दिया है. सामने हो रही है, मेरा जो पौधा है वो बहुत सूख रहे हैं, पानी नहीं है, फिर भी मैं नहीं दे रही हूं, क्यों, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे उसमें फोकस ही नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: राइट, क्यों, बिकॉज मैं कुछ और चीजों में मैं उलझ गई,
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: करेक्ट,
0: राइट. सो नेक्स्ट इज फीलिंग लोनली. देखो, अब चार लोग मेरे साथ बैठे हैं, मैं बात कर रही हूँ, हंस रही हूँ, फिर रही हूँ, राइट, अगर ये चार लोग मेरे पास होने के बावजूद भी मैं ऐसे फील कर रही हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई सुनने के लिए नहीं है, राइट, मैं right. कुछ कह रही हूँ, कोई उसको रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं, राइट, मैं अकेला फील कर रही हूँ, मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, मेरा जिंदगी में कोई होप नहीं है, मैं किसी वैल्यू की नहीं है, राइट. ये सारी चीजें जब आते हैं ना, तब फील होता है मैं अकेली हूं, You understand? So that is one of the red signal. And sudden silence. ये बच्चे है ना बहुत लड़ाकू है, कुछ भी उसको कह दिया ना बस लड़ने आ जाएंगे. बट आजकल क्या हो रहा है, बिल्कुल साइलेंस. शी आइसोलेटेड हर सेल्फ फ्रॉम दिस सोसाइटी.

0: दी, वो अकेले चली गई, कुछ भी बोले वो आजकल अच्छे से बात भी नहीं कर रही है। पता नहीं व्हाट हैपेंड टू हर, ये एक हफ्ते 10 दिन से ऐसे चल रही है, एक महीने से ऐसे चल रही है ना। व्हेन यू सी ऑल दीज थिंग्स, प्लीज नॉक द डोर ऑफ सम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बिकॉज दैट पर्सन शी और ही इज इन नीड ऑफ हेल्प, राइट। उनको बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसके बाद अगर हम कुछ हो गए फिर वी आर आंसरेबल, है ना। हम अगर हम ये नोटिस नहीं किया है, जान पूछ कर हमने कुछ काम कर दिया है, दूसरे को नुकसान हो गए, यू अंडरस्टैंड। सो ये जो चीज है, दिस इज वेरी कार्डिनल साइंस। कार्डिनल किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा है, राइट। अगर कोई आपके पास में, आपकी फैमिली में, आपको पड़ोस में, आपके कलीग, आपके स्टूडेंट्स कोई भी है, प्लीज नोटिफाई करना। कुछ नहीं बिगड़ता है ना, किसी को आपने मदद किया है, यू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज आनंद विच यू से एज अ रेड साइंस वेर वी हैव टू पे मोर अटेंशन। आनंद जी, आपको समझ आया?
1: बिल्कुल मैम, समझ क्यों नहीं आएगा, आप इतनी प्यार से समझा रही है तो बिल्कुल, इवन मुझे नहीं, मेरे लिसनर्स को भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है।
0: या, हमारा गोल तो वही है,
1: एब्सोल्युटली,
0: यस।
1: एंड मैम सीरियसली, आप इतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सबको समझ में आना चाहिए और सब समझ भी रहे हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी जी जी जी।
1: हाई ब्यूटीफुल पीपल, वंस अगेन यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, जहां आनंद आज आपके साथ ढेर सारी बातचीत कर रहा है आपके मेंटल हेल्थ के बारे में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर मनु रंजनी जी, इस टाइम स्टूडियो में हमारे साथ हैं और वो ढेर सारे सवालों के जवाब आपके दे रही। लिसनर प्लीज रिमेम्बर, आस्किंग फॉर हेल्प इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। क्यों मैम?
0: एब्सोल्युटली।
2: फिर से लो गया, फंबल आ गया।
1: फंबल कहाँ? स्ट्रेंथ पे आया, स्ट्रेंथ पे। फिर से करूँ? ठीक है। लिसनर प्लीज रिमेम्बर, आस्किंग फॉर हेल्प इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। क्यों मैम? दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज की कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी लंबी हो गई, आई नो दैट, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार थी। एंड आई थिंक मैम को फ्री करने से पहले एक ऐसा क्वेश्चन जो डेफिनेटली मुझे पूछना चाहिए मैम, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। या सो माय क्वेश्चन इज कि हाउ फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन हेल्प।
0: राइट, वेरी गुड, बिकॉज दे आर दी प्राइमरी केयर गिवर्स, है ना। फैमिली, जो फैमिली मेम्बर्स अफेक्ट हो रहे हैं तो उनको ही पहले पता चलेगा, या कलीग्स या स्कूल्स या कॉलेजेस, फ्रेंड्स को पहले पता चलेगा एंड फैकल्टीज को, राइट। तो ये हाउ यू कैन डू इज, मैंने ये बोला है, जो सिम्टम्स मैंने बोला है ना, इफ यू फाइंड दैट सिम्टम्स तो आपको जरूर नॉक करना है नियर बाई साइकेट्रिक स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अगर ओके, आई विल कम टू योर पॉइंट, अगर आपको लग रहा है मैं कैसे पहले वहां मानसिक डॉक्टर के पास कैसे लेके जाऊंगी या कैसे जाऊंगा, मुझे ना अच्छा नहीं फील हो रहा है, इट्स ओके, एवरीथिंग हैपेंस, राइट। तो पहले एक डॉक्टर के पास जाइए, यू गो टू अ जनरल फिजिशियन, है ना। बुखार है, सर्दी है, जुकाम में जाओगे ना, तो वैसे उसी डॉक्टर के पास आप जाइए, ओके। सो ही और शी विल आइडेंटिफाई उस बच्चे में या उस बंदे में क्या प्रॉब्लम है, राइट, या व्हाट साइन इट इज, एंड वो कितना इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी हमें हेल्प लेना चाहिए, राइट। तो अगर उस हेल्प आपको मिल गए तो आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, ताकि यू कैन गो टू द राइट पाथ।
1: 100%,
0: यस। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से, सी देर आर वेरियस सोर्सेस, सी आजकल सबके पास जो है या ना है, मोबाइल तो जरूर है,
1: करेक्ट,
0: है ना। एंड मोबाइल में है हमारा इंटरनेट फैसिलिटीज, उसे बिना मोबाइल का कोई मतलब नहीं,
1: कोई
0: है।
1: मतलब,
0: सो वी ऑल आर नाउ ट्रैवलिंग विथ अवर एआई, जेमिनाई, है ना, यू ऑल नो, है ना, सब चैट जीपीटी, यस, दैट इज अ हार्ट, है ना, चैट जीपीटी बिकम अ हार्ट ऑफ एवरी पर्सन, राइट। सो कैन पुट टेली मानस, आनंद जी आप जब लिसनर से बात करोगे इसका हर बार इसका आप थोड़ा सा री इन्फोर्स करिएगा, राइट। इट इज टेली मानस, TELEMANAS। अगर आप डालोगे गूगल में, इट विल गिव यू अ डिटेल्ड पिक्चर, ठीक है। तो मैंने बोला है ना, देर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर हेल्प, राइट। दूसरों से पूछने आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, चलो उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, राइट। तो यू पुट टेली मानस, दैट इज एन वॉट टू से एन इमरजेंसी सर्विसेस गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। हमारा इंडियन गवर्नमेंट का है वो, वहां पे ना आप किसी से पहचानते हो ना वो आपसे पहचानते हैं, राइट। आप उसके लिए स्ट्रेंजर हो, वो आपके लिए अनजान है, ठीक है। तो वहां पे तो आप कोल की बोल सकते हो,
1: करेक्ट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली,
0: है ना। तो यू कैन से आप किस चीज में अभी फील कर रहे हो, अभी क्या परेशानी हो रही है, डोंट थिंक मैं ये बोलूंगी तो इसका मतलब मेरा कुछ मानसिक बीमार हो गई, एब्सोल्युटली नो, राइट। सबको कोई ना कोई मोमेंट में एक हेल्प का जरूरत होती है, एक काउंसलिंग का जरूरत होती है, क्योंकि हम अभी जिंदगी जी रहे हैं एक मशीनरी वर्ल्ड में, राइट। सो प्लीज डोंट हेसिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। ये जो मैं बोल रही हूँ टेली मनाज, अगर आप हेल्प भी नहीं लेना नो प्रॉब्लम, एक बार उसको देख तो लो आप लोग, है ना। यू जस्ट पुट दैट टेली मनाज इन गूगल, AI, ChatGPT, कहीं भी, राइट। इट विल गिव यू एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन, पूरा जागरूक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम भी होगा ना, उस पेज आप खोलोगे आपको वहां पे जरूर जवाब भी मिलेगा, ओके। नॉन जजमेंटल, तो ये टर्म तो आप समझते होगे, नॉन जजमेंटल, है ना। लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा हाँ वहां पे, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर सोर्स, आपका फैमिली, आपका फ्रेंड्स हेल्प ले सकते हैं, ताकि जो पर्सन प्रॉब्लम में है वो प्रॉब्लम से जल्द बाहर आने के पूरी कोशिश कर पाएंगे, राइट। और हम यहाँ पे पूरा वादा भी नहीं करेंगे पूरा हो जाएगा, नहीं, पूरा हम कोशिश करेंगे ताकि द पर्सन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ अलोंग विथ मेडिसिन एंड थेरापी। यू अंडरस्टैंड बिकॉज मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस ऐसे एक कंडीशन है, एक बार अगर हमने दवाई छोड़ लिया है फिर दोबारा लक्षण आने का बहुत चांसेस है, राइट। और मेंटल इलनेस ऐसे एक कंडीशन है, एक बार अगर हमने दवाई छोड़ लिया है फिर दोबारा लक्षण आने का बहुत
1: चांसेस है।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी का फेवरेट कार्यक्रम शुरू हो चुका है, हेलो फरमाइश, जहां पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने फेवरेट गाने भी सुन सकते हैं और आप किसी स्पेशल को गाना डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो ये अवसर आपके पास है, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। हमें कॉल तुरंत करेंगे, आप नंबर है 9837896896। इस गर्मी में अगर कोई कूल सा गाना सुनने को मिल जाए ना, तो माइंड जो हमारा है वो कंट्रोल में हो जाता है और मन अच्छा भी हो जाता है। तो चलिए श्रोताओं, मैं आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनवाती हूँ, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर करते हैं सिलसिला शुरू।
1: Check mic, check mic.

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया गिबी ग्रेवाल एंड साथ में दिलजीत दोसांझ की खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा गाना। और ट्रैक ऐसा था जो झूमने पर मजबूर कर देता है। बहुत सारे श्रोता तो हमारे झूम भी उठे थे इस प्यारे सी गाने पर। और अभी बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: गुंजन।
0: गुंजन, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: प्रकाश नगर के चौराहे से।
0: जी बताइएगा, चौराहे पर रहती हैं क्या आप? हाँ, तो आप ये कहो कि मैम हमारा घर जो है वो प्रकाश नगर में है। क्या करते हो आप, बताओ?
1: स्टडी।
0: क्या स्टडी करते हो? अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: फिफ्थ
0: में। अच्छा, आपको गायत्री मंत्र आता है?
1: क्या दीदी,
0: आपको गायत्री मंत्र आता है?
1: नहीं।
0: कौन सा मंत्र आता है आपको, बताओ बताओ बताओ बताओ, शर्माओ नहीं।
1: सुबह आता।
0: आप सुबह सुबह स्कूल जाते हो?
1: या?
0: तो वहाँ पर प्रार्थना होती है?
1: पर लेकिन अभी मेरा एडमिशन दोबारा होगा ना।
0: नहीं तो कोई बात नहीं, पहले तो आप जाते थे ना स्कूल, बताओ। तो सुबह सुबह प्रार्थना होती है ना स्कूल में? बताओ बताओ बच्चा। क्यों नहीं
1: जाने गाने वाली होगा?
0: क्या बोला आपने?
1: जन गण मन अधिनायक, वो वाली होती है।
0: अच्छा, और उसके अलावा? ये तो हमारे

0: पढ़ाई कितने घंटे करते हो आप?
1: वैसे 10 बजे से लेके 1 बजे
0: सच्ची में झूठ बोल रहे हो?
1: तक। सच्ची। हाँ
0: फिर तो अच्छी बात है। मम्मा आपकी मैं हेल्प करती है, मदद करती है आपको पढ़ाने में?
1: यस।
0: चलिए वेरी गुड। बताओ कौन सा गाना सुनोगे आप?
1: कच्ची कली साडा मासूम सहरा, नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा।
0: जैसे गाना गुनगुनाया है ना, वैसे आप अपनी मम्मा को बोलना कि मम्मा मुझे भी मंत्र सिखाओ ताकि मैं भी मंत्र पढ़ूँ सुबह सुबह, ठीक है? चलो, अच्छा लगा बात करके आपसे। और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, अपनी संस्कृति के बारे में बताना, क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम होता है, लेकिन आप सिखाएंगे बच्चों को तो बच्चे वही सीखेंगे ना। एंड कहते भी हैं कि फर्स्ट गुरु हमारे पेरेंट्स होते हैं, मम्मा पापा होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अहम रोल पेरेंट्स का ही होता है। तो बच्चों को टीचर्स भी अच्छा स्टडी कराते हैं, जितना उनसे होता है वो भी करते हैं, लेकिन पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें, उनको संस्कार दें, बहुत ज़रूरी है। और एक खूबसूरत सा गाना हम सुनते हैं दोस्तों, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाओ, नंबर है 9837896896। और आप कॉल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाना बहुत ही प्यारा है, फ्रॉम द मूवी धुरंधर से, एंड डांसिंग नंबर है, तो आप भी डांस करो, इस गाने को एंजॉय करो और मुझे कॉल भी करो। चलिए सुनवाती हूँ प्यारा से गाना, लौट कर आती हूँ बस मैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और खूबसूरत गीतों का आप आनंद ले रहे हैं यहाँ पर एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। अभी आपने एक खूबसूरत सा गीत सुना है लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। और अभी हम बात करते हैं अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मैं गोपाल जी बात कर रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप गोपाल जी?
1: गुजरात राज्य गिर सोमनाथ से।
0: जी जय श्री कृष्ण, तुम केम छो?
1: जय श्री कृष्ण, मने सारू से।
0: अच्छा, आप ठीक हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है सर, ठीक ही रहने चाहिए सभी।
1: आपको भी दीदी गुजराती बात का भाषा आती होगी?
0: मने गुजराती नहीं आवड़े छे। हाँ, लिटिल बिट बोल लेते हैं, गुजराती लैंग्वेज अच्छी लगती है।
1: हाँ नहीं, बहुत अच्छी गुजराती भाषा है। हमारे जो अमिताभ बच्चन जी गुजरात में आते हैं तो बोलते हैं कि कुछ दिन गुजारो गुजरात में, वो बोलते हैं।
0: खूबसूरत भी है गुजरात और गुजरात का खान पीन भी बहुत ही स्वादिष्ट है। जी,
1: वो शासन गिर है, वो लायन है, लायन से प्रख्यात है। और गिर सोमनाथ हर महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग बोला जाता है मेरे गांव से 30-35 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा, 35 किलोमीटर डिस्टेंस में है आपका ना?
1: हम सासन गिर बोला जाता है ना, जूनागढ़ जो सासन गिर, यहाँ से हम वो बीच में हमारे गांव है तहसील तलारा, यहाँ से बात कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं सर आप, जरा अपने बारे में बताइएगा।
1: गुजराती में बात करूँ तो हूँ हमारे न्यूज पेपर आपको वितरण करो काम करूँ छूरिंग।
0: अरे वाह, ये कार्य तो बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह उठकर सब तक जो सब न्यूज पढ़ते हैं चाय की चुस्कियों के साथ, वो काम आप करते हैं। जी बताइएगा, आज क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: मेरे साथ श्रोता दल सुनने आकाशवाणी हमारा ग्रुप है, वो सुनने वाले आशिकी फिल्म है ना आयुब खान का, तो उसका कोई भी गीत तो मेरे श्रोताओं को सुना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं आशिकी मूवी का। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका।
1: धन्यवाद
0: जी। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत और लौट कर आते हैं। तब तक आप भी प्रयास कीजिए कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस गर्मी में ना आप अपना ख्याल भी रखिए, ढेर सारा पानी पीते रहिए, घर से बेवजह बाहर मत जाइएगा अगर कोई काम नहीं है तो। और आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए शानदार से गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
7: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
6: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।

0: बार छुरियां तो जब चल जाती है, पता है कब? जब पेट्रोल खत्म हो जाता है और गाड़ी को खींच कर ले जाया जाता है, वो भी जबरदस्ती धक्का मारकर, चलती भी नहीं है लेकिन चलाना पड़ता है। और आप सभी को बता दें हम दोस्तों कि समय हुआ है 3:55 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नाम
0: लेखराज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा, क्या करते हैं सर?
1: कपड़े की दुकान है मैं।
0: अच्छा, कपड़े की शॉप है आपकी? ओके, तो किस तरह के कपड़े आपके यहाँ पर मिल जाते हैं?
1: साड़ी है, सूट है।
0: अच्छा, तो साड़ी खरीदने के लिए हम आ जाएंगे। जी बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी? कहाँ घूम कहाँ पर जा रहे हो घूमने के लिए आप, जरा बताइएगा। क्या कहना कि 12 महीनों यहाँ मौसम है जाड़ो का, क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ो का। भैया मेरा गला खराब है, मैं नहीं गा पाऊंगी, इतनी अच्छी आवाज नहीं है मेरी, पर मैं आपको ये गाना सुना देती हूँ, ठीक है सर? जी नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज में। एंड ये गाना मेरा भी ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ों की वादियों में जब हम जाते हैं और ये गाना सुनते हैं, हाय हाय, एक अलग ही यू नो कह सकते हैं अनुभव होता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं, लौट कर आते हैं, तब तक आप हमें कॉल लगाओ, नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896।
2: आपने मेरा उनका भेज दिया,
3: अरे नहीं ध्यान से आउट हो गया, वो नींद में होगा।
2: हाँ, तो चक्कर चलवा दो यार।

0: एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम आपको मालूम है, नहीं मालूम है, ओहो चिंता मत करो यार, मैं हूँ ना आपके साथ, आपकी खुशी जो लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ। और दोस्तों आपको पता है हमारे स्टूडियो में ना एक बहुत ही स्पेशल शख्स हैं, और वो ऐसे आते हैं जैसे बिन मौसम बरसात नहीं आ जाती है, मतलब कभी भी कुछ भी पता नहीं चलता है, वो कभी भी आ सकते हैं। और वो शख्स से मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ। कौन है आप जानते ही हैं, काफी नेम फेम है उनका, नाम है अखिल। हेलो अखिल जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग।
1: बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। खुशी जी आप कैसी हैं?
0: मैं अस्वस्थ हूँ, अभी स्वस्थ नहीं हूँ।
1: आपने क्यों नहीं दिखाया किसी डॉक्टर को?
0: सर मैं लेकर आई हूँ कुल मेडिसिन, मैंने खाई भी है लेकिन वो काम नहीं कर रही है।
1: वो तो है, गर्मी का आलम कुछ यूं है दोस्तों।
0: वाह वाह वाह,
1: दिल तो करता है बर्फ बन जाऊं।
0: वाह वाह वाह,
1: ताकि लोग कम से कम हाथ तो लगाए।
0: ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। अच्छा अखिल सर, आज ईद का

0: खूबसूरत सा ये फेस्टिवल है, तो हमारे जो श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल को मना रहे हैं, तो आप भी विशेष दे दीजिएगा हमारे श्रोताओं को।
1: मेरी तरफ से सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी आज ईद
0: सेलिब्रेट
1: कर रहे हैं, सभी को बहुत ही कहते हैं ना दिल से शुभकामनाएं हैं, और आप बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही अच्छे से फेस्टिवल मनाएं।
0: हाँ जी, मिलजुल कर त्योहार को सेलिब्रेट करें। और अभी हमारे साथ कौन जुड़े हैं जरा बताइएगा।
1: हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा जी।
0: पूजा हमें काम नहीं है दूजा।
1: हेलो हाँ। पूजा जी कैसी हैं आप? आपकी आवाज को क्या हुआ? अभी तो एकदम तेज तरार वाली थी, अब एकदम हल्के कैसे हो गई? क्या करती हैं पूजा जी आप? कहाँ है, कहाँ है आपका घर? एग्जैक्ट लोकेशन मत बता दीजिएगा, बस एड्रेस बताइएगा।
0: पता चला कि शाम को हम ही पहुँच गए,
1: पता चला आज हम सबके सब ढाबा बोल दिया। 23 PAC पे हैं आप? क्या बात है, कहाँ कैसी है वहाँ पे धूप? चाहेंगी किसकी धुलाई चल रही है पीछे? किसी की धुलाई चल रही है?
2: नहीं, काम चल रहा है पीछे।
1: चलिए, और क्या करती हैं बाकी? वैसे आप हाउसवाइफ हैं?
2: हाँ हाँ।
1: बढ़िया, और आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहती हैं?
2: मैं खुद ही सुनना चाहती हूँ, किसी को नहीं करना चाहती।
1: खुद को ही डेडिकेट करना चाहती हैं?
2: हाँ।
1: शादीशुदा हैं आप कैसे?
2: हाँ,
1: तो एक आध कई प्यार से पति को भी डेडिकेट कर सकता है कोई ना कोई कोई चीज़? अच्छा, मतलब मैटर गरम है। चलिए पूजा जी, हम ये गाना आप ही के लिए डेडिकेट करते हैं और सुनते हैं इसे। धन्यवाद आपने हमें कॉल किया। देखा भाई साहब, आज सच में गर्मी है खुशी। पूजा जी तो बहुत गर्म है इस समय।
0: देखिए अभी टेम्परेचर भी ना 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, तो गर्मी बहुत है बाकी, लेकिन हमारे ऑफिस में नहीं लगती, वो अलग बात है। चलिए दोस्तों, अभी गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं,
1: पूजा जी को थोड़ा शांत करते हैं।
0: हाँ जी। अच्छा ये बताइए, हमारे जो श्रोता हैं जो अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं अखिल सर, वो कैसे हमें सुन सकते हैं, कैसे हमें कॉल कर सकते हैं, प्लीज बताइएगा।
1: वो हमें सिंपली एक नंबर है 9837896896 पे हमें डायल कर सकते हैं, हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर वो मोबाइल पे हैं तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर से। और दूसरा, हमें डाउनलोड करके, अगर वो गाड़ी में है इस समय और जब गाड़ी से उतर के शायद हमें सुनना चाहें, तो अपने मोबाइल की ऐप पे हमें डाउनलोड कर लें हमारी ऐप को। प्ले स्टोर पे जाके मुरादाबाद FM 89.6 पर रेड कलर का लोगो आएगा,

0: बॉलीवुड वाली शो में आप सोच रहे होंगे कि
1: ये
0: हेलो
1: फिर मैंने
0: फरमाइशों
1: कैसे
0: में मैं
1: सुना।
0: कैसे आ गई हूँ एंट्री। अब देखिए, जब कोई तबीयत डगमगा गई है तो हमने सोचा कि चलो हम ही चल लेते हैं। और आपको भी पता है कि अखिल सर है जिनको आप काफी देर से सुन ही रहे हैं, मेरी तो एंट्री अभी हुई है। सो हम अपने अगले कॉलर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896 पर कॉल करिए, अपना गाना सुन सकते हैं। सो चलिए देखते हैं अगले कॉलर हमारे साथ कौन कनेक्ट होते हैं।
1: हेलो फरमाइश,
2: हेलो फरमाइश रेडियो मुरादाबाद
1: कैसे हैं परवेज जी?
2: जी। बहुत अच्छे हैं। और पहले तो सर आपको और सुति जी को और रीना जी को बहुत बहुत ईद उल अजहा की मुबारकबाद।
1: आपको भी सर, आपको भी पूरे परिवार को भी, और जितने भी बनारस में हमारे साथी हैं, जितने सब कुछ सभी लोगों को।
2: जी, थैंक यू सर।
1: और कैसे हैं बनारस में, गर्मी कैसी है?
2: बनारस में तो फिलहाल सर गर्मी, यहाँ तो टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है, कभी रहता है 44 45, एक बार बीच में 46 हो गया था। तो यहाँ तो गर्मी सर, जब तक मानसून नहीं बदलेगा तब तक गर्मी ऐसे ही रहेगी।
1: दुकान में एसी लगा लीजिएगा फिर।
2: हाँ सर, ये सी तो मलिए थोड़ा खर्चा ज्यादा गिर जाता है एक उल्टा, लेकिन अब एसी का तो लगाना इसका जरूरी हो गया। या और एसी का एक से और नकारात्मक भी असर पड़ता है सर, कि अगर सभी लोग एसियां लगा लेंगे तो और लोग तो गर्मी से तड़प जाएंगे। तो
1: हाँ ये बात बिल्कुल, आपने अपने साथ साथ दूसरों की गर्मियों का भी ध्यान रखा, ये अच्छा लगा।
2: उससे जो निकलने वाली जो गर्मी खत्म हवा होती है, मान लीजिए 10 5 आदमी को तो ठंडा हवा दे रही है, लेकिन 10 आदमी तो गर्म हो रहे हैं उससे। हाँ
1: ये बात बिल्कुल सही कही आपने। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप परवेज जी आज?
2: सर, गाना रहेगा मैं हूँ बनारसी बाबू। बनारसी बाबू ओल्ड पिक्चर है देवानंद जी की। जी
1: ठीक है साहब, ठीक है, वो तो ओल्ड इज गोल्ड है सर।
2: जी
1: और किस किस को
2: सर,
1: डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना आप?
2: गाना डेडिकेट तो रहेंगे सर, आप रहेंगे, रीना जी रहेंगे, खुशी जी रहेंगे। खुशी जी को मेरी आवाज सुन रही है तो उनको भी एक गाना डेडिकेट रहेगा।
1: पक्का पक्का पक्का। और
2: आज लग रहा है कि हम हमसे बात नहीं करेंगे क्या खुशी जी?
1: नहीं, आज एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत, थोड़ी सी क्या कहते हैं ना, नासाज थोड़ी सी सही नहीं है। हाँ
2: चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सर। मैं दुआ करता हूँ कि उनकी तबीयत अच्छी हो जाए।
1: पक्का पक्का परवेज जी, और जल्दी जल्दी आपसे जब अगली बार आप कॉल करेंगे तो पूरी उम्मीद है खुशी जी ही आपसे वार्तालाप करेंगे।
2: और मेरा एक मैसेज है उनके, जो आप प्रॉमिस करेंगे मैं उनका वेट कर रहा हूँ सर। और बनारस आने वाली है, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, कब देखते हैं सर आप और वो और रीना जी कब आ रही हैं।
1: बहुत जल्द आएंगे, जिस दिन बाबा जी का बुलावा आ गया उस दिन दौड़े दौड़े चले आएंगे।
2: बाबा जी जो मन से याद करेंगे उनका बुलावा हमेशा रहता है सर।
1: हाँ तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी वहाँ से।
2: पीतल का कोई सामान लेके आएंगे पीतल नगरी से।
1: पक्का सर, हम तो मतलब पीतल पीतल शहर है हमारा, पीतल नगरी है। पक्का
2: हाँ जी, पीतल नगरी से तो सर
1: पक्का, ये भी कहने की बात नहीं, आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ लेके आएंगे।
2: सर, तो आप लोग डेडिकेट रहेंगे, पूरी आरजे टीम रहेगी। हमारे सतीश शर्मा जी चंडीगढ़ से हैं, और सोनू गौतम जी हैं, प्रीत पासवान जी हैं, और हमारे बनारस के अनवर अंसारी जी हैं, और तमाम रेडियो मुरादाबाद एफएम सुनने वाले श्रोताओं को ये गाना डेडिकेट रहेगा सर आपके माध्यम से। ओके
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
2: ओके सर,
1: ओके सर,
0: चलिए जिस गाने के बाद मिलते हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
1: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
6: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: हेलो, काफी देर अंतराल के बाद फिर से आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बचाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो समय 4:39 हो चुके हैं और आज रीना के साथ आप कनेक्ट है। हेलो फरमाइश शो में, और सो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। कौन हमारे साथ
1: फरमाइश, कौन बोल रहा है? हाँ जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है, हमारे श्रोताओं को बताइए। कैसे हैं सर आप?
2: बढ़िया हैं, आप लोग कैसे, परिवार में कैसे, कुशल मंगल है?
1: सब बढ़िया सर। बरेली में कैसे हाल चाल है? सब कुशल मंगल है सर। सूरज देवता बिल्कुल सर पे खड़े हैं। बाय बाय कब करेंगे उन्हें आप? कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? क्या बात है, गाना तो आपने बहुत ही अच्छा चुना है। कितना साल हो गए आपकी शादी को?
2: अरे मैं तो रिटायर आदमी हूँ, मुझे 7 साल से ऊपर हो गए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या काम करते हैं आप?
2: हम रिटायर हैं।
1: अच्छा, आप रिटायर आदमी हैं। अरे सर,
2: एक लड़का है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा, और सब बहुत बढ़िया, सब परिवार
2: और सब ठीक है आप लोग?
1: सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। आपने मगर ये गाना बहुत ही अच्छा चुना है, और ये गाना आज हमने भी बहुत दिनों बाद सुनेंगे आज। धन्यवाद सर।
0: चलिए जी, इस गाने को एंजॉय करते हैं, लौट कर आते हैं। अभी कॉल करती है हमारे मैजिकल नंबर पर 9837896 896। देखिए आप अपने फेवरेट गाना सुनेंगे ना तो नींद भी इतनी प्यारी आएगी आपको।

0: हम तो आपको डेली याद करते, बताओ एक दिन कैसे याद करेंगे। डेली याद करने वाला इंसान एक दिन अगर भूल जाए तो वो रह ही नहीं पाता है। सांसें लेना भूल सकता है लेकिन आपको थोड़ी भूल सकता है। हम अपने रेडियो को प्यार ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। और आप हमारे प्यारे प्यारे श्रोता है, आपसे डबल प्यार करते हैं जी।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: तो अगले कॉलर से बात कर लेते हैं ना, क्योंकि वक्त और समय हमारे पास बहुत कम है। तो चलो
1: फरमाइश। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
2: हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए आप कैसे हो?
1: ईद मुबारक हो आपको शबनम जी।
2: सर आपको भी और सभी सुनने वालों को भी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप? अभी तक तो सब बेकार था, अब आपकी आवाज आ गई तो सब ठीक ही हो गया। नहीं नहीं अभी तक आपने जिस तरीके से पूछा है तो ऐसे ही लग रहा था कि हालात ज्यादा ही गंभीर है मुरादाबाद के। आपके रामपुर में सब सही है?
2: जी हाँ माशाल्लाह सब अच्छे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है रामपुर
1: का। रामपुर का मौसम अच्छा है?
2: बहुत अच्छा है सर, आकर देखिए आप।
1: बारिश वारिश हो रही है? हाँ
2: बारिश तो नहीं हो रही है सर, धूप हो रही है और हवा चल रही है।
1: इसका मतलब आप छाता लेके खड़ी है? और क्या करती हैं आप?
2: कुछ नहीं सर, घर का काम करती हूँ मैं और आपके प्रोग्राम सुनती रहती।
1: चलिए चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। और ये आप गाना, पहले तो गाना बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
2: सर फिल्म का नाम है बेवफा सनम।
1: सनम बेवफा या बेवफा सनम? आपकी शादी हो गई है? हाँ तो फिर इन दोनों में से मिलता जुलता ही होगा।
2: जब सर गाने का बोल बतला दूं, गाने का बोल है मुझे अल्लाह की कसम तुझसे प्यार हो गया।
1: अरे क्या बात है क्या बात है। किसके लिए आप ये गाना डेडिकेट करना चाहती हैं?
2: बस ये गाना मैं अपने मियां जी के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी।
1: ठीक है ये तो
2: सुनने वाले हैं साथ में।
1: अपने मियां जी का नाम बताइए आप।
2: मियां जी का नाम है राहत अली।
1: राहत अली खान। ठीक है ठीक है। ये गाना बहुत ही अच्छा आपने चुना है और राहत अली जी को बहुत ही अच्छे डेडिकेट किया है। और सुनते हैं
2: तो तीन नाम है।
1: क्या मतलब मियाँ जी तो एक ही हैं? अरे हम मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हमें भी पता है आपने एकदम कहा ना दो तीन नाम है इसलिए। चलिए बताइए आप और किस किस को डेडिकेट करना चाहती हैं? ठीक है ठीक है, हम सभी को डेडिकेट करते हैं सॉन्ग और ये गाना सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी, बहुत ही मजा आया बात करने में।
0: देखिए गाइस जस्ट किडिंग, मजाक तो हमारा चलता रहता है, कृपया करके इसे दिल पे ना ले, दिल पे लेने की कोशिश ना। फिलहाल आपको मैं गाना सुनवाते ठीक है श्रोताओं।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
7: गुड वाली इवनिंग है। हेलो फरमाइशों में आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और अखिल सर हमारे साथ है। समय की बात करूं तो 4:51 हो चुके हैं और अब हमारा जाने का भी समय हो गया, लेकिन मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। आपको भी पता है कि मैं अभी 7 बजे तक आप सभी के साथ रहने वाली हूं, लेकिन हम अपने लास्ट लकी कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
8: हेलो फरमाइश।
9: हेलो फरमाइश, नमस्ते सर जी।
8: नमस्ते सर, अपना नाम और अपनी जगह बताइए हमारे सभी श्रोताओं को।
9: मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से रेगुलर लिस्टनर हूँ।
8: कैसे हैं डॉक्टर साहब आप?
9: जी अच्छा हूँ, ईद मुबारकबाद दे रहा हूँ।
8: आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको भी और आपसे साहब सारे जितने भी हैं जुड़े हुए लोग सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक।
9: फिल्म पकीजा का
8: जी ठीक। और क्या बाकी कैसा मौसम है वहाँ पे डॉक्टर साहब?
9: गर्मी पड़ रही है फिर।
8: अच्छा,
7: आपने भिजवाया नहीं ना सर, इसीलिए लीची नहीं भिजवाया ना आपने?
8: आपके यहाँ पे बिहार में वैशाली जगह पे लीची अच्छी निकलती है क्या?
9: जी जी।
8: तो इस बार भिजवाइए लीची मुरादाबाद, कम से कम पहुँचे आपकी लीची मुरादाबाद तक। चलिए चलिए डॉक्टर साहब, सुनते हैं आपका ये पकीजा मूवी से सॉन्ग और आशा करते हैं आप सब सही होंगे, सब स्वस्थ होंगे।
7: क्या बात है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
9: धन्यवाद।
7: अच्छा आप जाते जाते क्या कहना चाहोगे?
8: मैं तो जाते जाते ये कहूँगा कि अगर आप बाहर धूप में टहल रहे हैं तो इसे मजाक में ना लें, पानी की बोतल और सर पे टोपी जरूर रखें अपने साथ।
7: सर पे टोपी तो इन्होंने खुद भी नहीं रखा है।
8: मगर रखनी पड़ेगी भैया।
7: हाँ, वरना जो 2-4 बाल है वो भी गंजे हो जाएंगे, है ना। देखिए गर्मी से मजाक बिल्कुल नहीं करनी, आपने अपने साथ पानी की बोतल और मतलब मुझे लगता है कि जंक फूड बाहर के खाने की वजह से आप अच्छी अच्छी चीजें खाएं, घर में छाछ लस्सी वगैरह पिए ताकि आपको बॉडी की जो तासीर होती है वो ठंडा रहेगा।
8: कभी कभी रीना तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम बाहर निकली हो और एकदम तुम चश्मा भूल गई हो पहनना और जब तुम प्रकाश नगर चौराहे पे पहुंची हो तब तुम्हें याद है उफ मेरा चश्मा रह गया।
7: नहीं, मैं दुपट्टा भूल जाती हूँ, खासकर
8: दुपट्टा भूल जाती हूँ ढकने के लिए।
7: फेस कवर करके जाती हूँ ना।
8: अगर भूलने के उसके बाद क्या करती हो?
7: उसके बाद मैं पहचान नहीं आती हूँ घर पर आके। सब भूल जाते हैं ये रीना ही थी या कोई और है। मेरी शक्ल चेंज हो जाती है फिर, इसीलिए बाहर जाए तो अपने साथ यानी कि अपने फेस को कवर करके जाए। और इसी गाने के साथ हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत। कल इसी टाइम तो देखिए मैं तो अभी मिलने वाली हूँ अखिल भैया, यानी कि रात को मिलने वाले हैं आपके साथ, है ना?
8: हाँ,
7: आज क्या पिटारे में लेकर आने वाली हैं?
8: आज का जो पिटारा है बहुत ही अच्छा पिटारा है, मतलब सुनने पे मजा आएगा।
7: क्या बात है श्रोताओं, तो आप रात के 9 बजे जरूर कनेक्ट होइए, इनको मैसेज जरूर भेजिए, क्योंकि ये बातें बड़ी अटपटी चटपटी करती हैं जो कि दिल से जुड़ी बातें होती हैं। सो अभी के लिए आप बाय बाय बोल दीजिए,
8: सभी को बाय बाय, सभी को इस समय गुड इवनिंग, और सब अपना ध्यान रखें, पानी जरूर पीते रहें।
7: चलिए जी, इसी गाने के साथ

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
3: टायर लो, सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर। मैं आरजे राज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, यूं तो हम हर रोज अपने जीवन से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, पर हमारी आज की बातचीत थोड़ी ज्यादा खास है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी किसी किताब की तरह कुछ पन्ने पलटते हैं और फिर शुरू होती है एक नई कहानी। हमारे वो सभी सपने सच हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसे ही एक युवक के सपनों की दास्तान मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के कार्यक्रम में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि कैसे उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित CM युवा उद्यमी विकास योजना ने वाराणसी के चोबेपुर के सतीश के सभी सपनों को साकार कर दिया।
11: फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे हीरो रातों रात अमीर हो जाता है और उसका देखा हर एक सपना हकीकत बन जाता है, पर वास्तविक दुनिया में ऐसी बातें महज एक कल्पना है।
10: वाराणसी के एक डिग्री कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद सतीश के सारे दोस्तों का लक्ष्य दिल्ली बम्बई में ऊँचे औहदे की नौकरी पाना था, पर हमारे सतीश की अभिलाषा कुछ और ही थी।
11: मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ और मेरे लिए अपने माता पिता और गांव को छोड़कर जाना तर्कसंगत फैसला नहीं होता। बाबूजी ने मेरे लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया था और अब मेरी बारी थी कि मैं अपने अभिभावकों के बुढ़ापे की लाठी बनूं।
10: सतीश का मन लगातार अपने और परिवार के भविष्य को लेकर बोझिल रहता था।
11: मेरी रातों की नींद बस इन्हीं ख्यालों को सोच सोच कर उड़ सी गई थी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सपनों को पूरा करने के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़े या उनसे कहीं बहुत दूर जाना पड़े।
10: दोस्तों, सतीश जैसी दुविधा हमारे देश के हजारों युवाओं के मन में होती है, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर संसाधनों की कमी के चलते उनके सपने बस उनकी कल्पना में ही रह जाते हैं।
11: महीनों बीत गए थे अपने शहर में इंटरव्यू देते देते, मेहनत के हिसाब से कहीं पर भी पैकेज नहीं जमा। फिर एक दिन सुबह अखबार खोला तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में पता चला।
10: और दोस्तों, यही है सतीश की कहानी का वो पन्ना जिसने पूरी दास्तान बदल कर रख दी। इससे पहले कि सतीश आपको आगे की कहानी बताए, मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आखिर है क्या। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है जिससे वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
11: जैसे ही मैंने इसका इश्तेहार को देखा तो फटाफट से मोबाइल पर इसके बारे में मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और आवेदनकर्ता को किसी सरकारी ट्रेनिंग योजना से प्रशिक्षण लिया होना चाहिए या मान्यता प्राप्त संस्था से स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
10: श्रोताओं, इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
11: मैंने जब अपने फ्रेंड सर्कल में देखा तो मेरे जैसे दो बैचमेट्स रवि और निर्भय थे, जो मेरे ही जैसे समस्या से जूझ रहे थे। मैंने उन्हें भी इस योजना के बारे में बताया और हम सभी ने साथ में ही

0: सारी दुविधा का हल निकालने की ठान ली थी। सबसे पहले हम इस योजना से संबंधित बैंक गए और वहाँ के कर्मचारियों ने हमें लोन मिलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
1: साथियों, हमारे देश के सर्वाधिक युवाओं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा की मिशन रोड से शुरुआत की गई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधित उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना, प्रतिवर्ष 1,00,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 10 वर्षों में कुल 10,00,000 स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
0: जितनी जानकारी मैंने प्राप्त की थी उसके हिसाब से मुझे योजना को लेकर काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, पर मेरे साथियों के मन में थोड़ा डाउट था, कहीं हमारी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। पर डॉक्यूमेंट को लेकर सभी का ये संकोच जल्दी ही क्लियर भी हो गया। जब हमने हमारी उम्र के एक नौजवान को बैंक में मिठाई बांटते देखा, उससे बात हुई तो पता चला कि वो भी युवा उद्यमी विकास योजना के जरिए अपना बिजनेस चला रहा है और जोरों शोरों से व्यवसाय चलाने के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी भी तय कर दी है। फिर क्या, हमने हमारे भी सपनों को अपनी आँखों के सामने सच होते हमें भी दिख रहे थे।
1: अब सतीश और उसके दोस्तों की गाड़ी तो चल पड़ी, पर आप सभी के लिए योजना के चरणों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। साथियों, इस योजना के पहले चरण में 5,00,000 तक की परियोजना हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण मिलता है और दूसरे चरण के लिए पहले चरण में लिए गए मूलधन पैनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होता है। साथियों, सतीश की इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम सुनते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी का ये मुख्य संदेश।
2: उपायुक्त उद्योग मुरादाबाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10,00,000 युवा उद्यमी बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जो प्रमुख एलिजिबिलिटी है वो है कि कोई भी युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो और न्यूनतम 8वीं पास हो और 21 से 40 साल का अगर वो युवा आयु है उसकी, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5,00,000 रुपए तक का कोलेटरल फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन उस पर मिलता है, जिस पर युवा को कोई भी ब्याज अगले 4 वर्ष तक नहीं देनी है। ऊपर से उसको 10% उसको सब्सिडी उसको मिलेगी। अब तक जनपद मुरादाबाद में इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 2230 युवाओं का ऋण स्वीकृत हो चुका है, जिसमें कि 2,000 युवाओं को ऋण प्राप्त भी हो चुका है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी अपना कार्य शुरू करना चाहता है तो हमारी इस योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से 5,00,000 रुपए तक का कोलेटरल फ्री इंटरेस्ट फ्री बिना किसी गारंटी के बिना किसी ब्याज के ये ऋण प्राप्त करके अपना व्यवसाय अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, जिस पे उसको 10% जो ऋण है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% उसको सब्सिडी के रूप में भी मिलेगा। महिलाओं के लिए और SC/ST के लिए जो परियोजना लागत का जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है स्वयं का अंशदान होता है वो सिर्फ 10% उनको लगाना होगा, सामान्य वर्ग के लिए 15% उसको लगाना होगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के लोगों से युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रोजगार सीकर न बन के जॉब गिवर के बारे में सोचें और अपना स्वयं का व्यवसाय उद्योग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपना उद्योग स्थापित करें।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मन में सिर्फ नौकरी करना यही विचार आता था। मेरा खुद का बिजनेस होगा और मैं अपने साथ दूसरों को भी नौकरी देने में सक्षम बन पाऊंगा, ऐसा मैंने और मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा था।
1: साथियों, इस योजना के तमाम फायदे हैं और कुछ लाजमी शर्तें भी हैं, जैसे डिजिटल लेन देन के सापेक्ष रूप 1 प्रति ट्रांजेक्शन तथा अधिकतम 2,000 रूपए प्रति वर्ष के अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी दे होता है। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सभी वित्तीय संस्थान ऋण वितरण हेतु पात्र है। तंबाकू उत्पादक जैसे गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट पेय पदार्थ, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रोन से कम तथा भारत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होते हैं। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होता है। जिला स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अधिक जानकारी के लिए आप cmyuva.org.in विजिट कर सकते हैं।
0: जब हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक कंप्यूटर और डिवाइस सर्विस सेंटर खोलना है, तो बिना देरी के हम अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पहुंचे और वहां जाकर हमें पता चला कि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए MSME पोर्टल को लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया कि पोर्टल पर लिंक आवेदन किया जाता है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के उपरांत आवेदनों को बैंक में भेजा जाता है, जहां समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति एवं वितरण की व्यवस्था की जाती है। साथ ही बैंकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मार्जिनी मनी, ब्याज उत्पादन तथा CGTMSE प्रतिपूर्ति प्राप्त किए जाने की व्यवस्था भी होती है। आज मेरी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्हें महज वादे ही नहीं किए बल्कि धरातल पर कोशिशों को साकार भी किया। आज ये उन्हीं की देन है कि मैं और मेरे साथी काम करने वाले पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। सचमुच लीडर हो तो ऐसा, योगी जी इसी दूरदर्शी सोच के लिए उन्हें मेरा सैल्यूट है।
1: दोस्तों, वाराणसी के चौबेपुर निवासी सतीश और उनके बिजनेस पार्टनर्स रवि, निर्भय और उन सभी के परिवार वालों को आज महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आज वो आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और अपने शहर में रहकर अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम भी हैं।
0: मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ही असली फ्रीडम है और हम सभी युवाओं के लिए यही बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी है। ये नया यूपी है जहां अब युवा रोजगार के लिए भटकेगा नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद तय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और युवाओं के हित में सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारा धन्यवाद। और साथ ही रेडियो के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि खूब सपने देखिए, क्योंकि आपके सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश आपके साथ है।
1: साथियों, बदलते और प्रगति की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश की और भी कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में। साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी कहानियाँ हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचा सकते हैं। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे राज। जल्दी ही मिलूंगा ऐसी और बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

जी हम तो आ गए आप सभी के बीच, आरजे ना कनेक्ट हो गई है लेकर शो इवनिंग मस्ती। ढेर सारी बातें करेंगे और समय की बात करूं तो 5:21 हो चुके हैं। आई नो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आपकी, ओ हो कब आएगी रीना जी। अरे रीना जी आ गई है, बस आपने कितने नहीं जाना जी। 2 घंटे ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी अपडेट्स लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जो कि देखिए हम रूबरू होने हमारा बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस महीने महंगाई ने तो भैया रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। हर चीज़ किचन से लेकर यानी कि गाड़ियों से लेकर हर चीज़ महंगी हो गई है, फर्नीचर से लेकर गैस से लेकर भाई, मतलब ऊपर से सुबह का नाश्ता भी इतना महंगा कर दिया ना कि इंसान सोचेगा कि रहने दो यार, बस घर पे ही लस्सी छाछ बनाकर पी लेते हैं और गर्मियों में यही पीते रहेंगे तो आप ठंडक आपको फील होती रहेगी, गर्मी से आप बचे रहेंगे। और जब भी आप बाहर जा रहे तो अपना ध्यान जरूर रखिए और यही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। अगला गाना क्या बात है जी, जलते दिए, गर्मी में जलते दिए। और टेम्परेचर की बात करूं तो 41 डिग्री सेल्सियस जी।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ, इवनिंग मस्ती शो में, और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है। और ये समय आपको भी पता है कि ट्रैफिक वाला समय होता है, यानी कि ऑफिस से हर कोई बस घर की तरफ रवाना हो जाते हैं कि कैसे तैसे इस गर्मी में घर पहुंच जाए। और आज बकरा ईद है, तो आप सभी को, हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, उनको ईद मुबारक की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और आप अपनी ज़िंदगी में यूँ ही खुश रहे, आगे बढ़ते रहें। और ट्रैफिक की बात करूं तो दिलारी रोड, कपूर कंपनी चौराहा, बुद्ध बाजार, रेलवे स्टेशन के आसपास, यानी कि लाजपत नगर, काट रोड और पाकबाड़ा साइड भी काफ़ी लंबी कतार में, यानी कि लाइन लगती है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन, कहीं हॉर्न की आवाज़ तो कहीं लोग एसी फुल करके भी परेशान हैं। भाई गाड़ी में है फिर भी, मतलब जो बाइक पे रहते हैं, स्कूटी पर रहते हैं, वो तो परेशान होते होते हैं, क्योंकि उनको ना ही एसी की हवा मिल पा रही है, बस नेचुरल हवा, वो भी गर्म लू वाली हवा। और जो गाड़ी में है फुल एसी करने के बाद भी कह रहे कि भैया शीशे से ना बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो यार राहत नहीं मिल पा रही है, यानी कि एसी में रहने के बाद भी ये हाल हो जाता है जी। हाँ जी, मुरादाबाद की सड़कों पर इस समय ट्रैफिक अपने पूरे रंग में है। काट रोड से लेकर कपूर कंपनी चौराहे तक हर कोई बस जल्दी घर पहुंचना चाहता है। अगर आप भी इस वक्त जाम में फंसे हैं तो गुस्सा नहीं, थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि सफ़र आसान हो जाता है जब साथ हो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, यानी कि अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, और साथ ही साथ पानी पीते रहिए, धूप और गर्मी से बचिए, और गाड़ी आराम से चलाइए, क्योंकि आपका जो एक गुस्सा है ना, शांत हो जाएगा थोड़ा सा। और यूं ही आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगला गाना भी बड़ा ही लाजवाब है, और इस गाने के बाद लौट कर आते हैं और करते हैं आप सभी से ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना जी, बस यही एक बात कहना है कि तुम चाहे कहीं भी रहो, लेकिन मेरी धड़कन ना तुम्हें पहचान ही लेती है। क्या बात है जी। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल आर्ट ब्रेक।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। इवनिंग मस्ती शो में आर्जेरीना के साथ, और समय की बात करूँ तो 5:40 हो चुके हैं। और देखिए, इस भीषण गर्मी में भी ना, यानी कि देखिए, आप घूमने की प्लानिंग तो बना रहे हैं, लेकिन गर्मी का भी ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लू लगने की वजह से आपको भी पता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा है बात कि इस भीषण गर्मी में भी वैष्णो देवी की यात्रा यानी कि रुक ही रही है, बढ़ चढ़कर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यानी कि भारत में रिकॉर्ड तोड़ दिया है गर्मी ने, और लू के बावजूद भी माता वैष्णो देवी के भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। देश के कोने कोने से रोजाना यानी कि 35,000 से लेकर 40,000 श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं। और 26 तारीख की बात करूं तो 44,500 यात्रियों ने दर्शन किए, और वहीं 27 तारीख की बात करूं तो 26,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए हैं। यानी कि तेज धूप से बचने के लिए श्रद्धालुओं ने दोपहर में विश्राम कर रहे हैं और शाम ढलते ही चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। बुधवार सुबह बादलों की करवाहट ने रुख लिया तो मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन फिर से उमस गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि श्रद्धालुओं के लिए हर एक जगह जगह पर सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। यानी कि यात्रा में पंखे लगाए जा रहे हैं, उनके लिए रास्तों पर पानी छिड़के जा रहे हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु आए और परेशान ना होए। क्योंकि वैसे आपको बता दूँ, चढ़ाई 16 किलोमीटर चढ़ना कोई कम बात नहीं है। ठंड में भी इनफैक्ट आप चढ़ेंगे तो स्वेटर निकालना ही पड़ जाता है, इतनी गर्मी लगती है। सोचिए, इस गर्मी में चढ़ाई करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन वही है ना कि मन में आस्था हो तो भक्त है ना, जो गर्मी होता है वो भी सहन कर लेता है कि बस हमें वैष्णो देवी जाना है, दर्शन करके आना है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ, आपकी सेहत बहुत पहले है, जब आप ठीक रहेंगे तो आप जाके बाद में भी दर्शन कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए इस गर्मी में कुछ टाइम के लिए यानी कि घर पर रहिए, और जैसे मौसम ठीक हो फिर से आप इंजॉय कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। लेकिन गर्मियों में थोड़ा राहत और थोड़ा सोच कर बाहर निकलिए, क्योंकि गर्मी से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गर्मी आपकी मम्मी नहीं है जो आपको बोलेगी अच्छा अब फीवर हो गया है तो चलो मैं तुम्हारी, मतलब मम्मी होती है ना, बहुत केयर करती है, लेकिन ये केयर नहीं करता, ये तो ऐसा तबीयत खराब करता है भैया कि हॉस्पिटल ही पहुंचा देता है। इसीलिए इस गर्मी में बच कर रहिए, बाहर जा रही हैं तो अपने साथ ज़रूरतमंद की चीज़ें ज़रूर लेकर जाए, पानी की बोतल ज़रूर रखिए अपने साथ, क्योंकि पानी की बोतल अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप छाता लेकर बाहर जाइए, गर्मी धूप में बाहर जा रहे हैं, धूप से बच सकते हैं, वरना भैया पता चले कि आप दुपट्टा लेने भूल गए और ऐसे चले गए, कैप लेना भूल गए ऐसे चले गए, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जो जिनकी फेस सेंसिटिव है ना वो और भी ज़्यादा डल हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं इस गर्मी में सनस्क्रीन लगाओ, लेकिन थोड़ा बच के भी रहो बाहर जाने से। चलिए, फिलहाल अगला गाना बहुत शानदार है, इस गाने के बाद मिलते हैं आप सभी से और करते हैं ढेर सारी बातें।

जी, गुड वाली इवनिंग है आरजेरीना के साथ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जो समय की बात करूँ तो 5:52 हो चुकी है और आज का डे हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज मनाया जाता है यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। 28 मई का दिन यानी कि मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस, ऐसा दिन जो सिर्फ जागरूकता नहीं बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मविश्वास की बात करती है। आज भी कई जगह पर पीरियड्स को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती, जबकि ये हर लड़की और महिला के जिंदगी का एक सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा है। जरूरी है सही जानकारी, साफ सफाई और सुरक्षा यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन अपनाना, साफ सफाई पर सैनिटरी पैड बदलना, साफ पानी का इस्तेमाल करना और खुद की सेहत का ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें बड़ी बीमारियों से हमें बचा सकती है। और सबसे जरूरी बात, पीरियड्स शर्म नहीं है, समझदारी और देखभाल का विषय है। तो आइए चुप्पी नहीं, जागरूकता फैलाइए। अपने घर, अपने परिवार और अपने आसपास की महिलाओं को स्वस्थ रखिए और उनकी मदद करिए। बहुत से जगहों पर आपने देखा होगा कि जब लड़कियां दुकान पर जाती है तो शर्माती हैं, मतलब इस टॉपिक पर खुल के बात ही नहीं करना चाहती। उनको पता नहीं क्या लगता है कि ये कोई गंदी बात है क्या, ये गंदी बात नहीं है। अगर आप साफ चीज़ यूज़ करते हैं तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर देखिए कि वॉशरूम क्लीन है या नहीं है, क्योंकि अगर क्लीन वॉशरूम नहीं है तो आप यानी कि बीमार पड़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि लड़कियों की जो बॉडी होती है बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है और कुछ भी हो हमें खुलकर बात करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है और इसी से हम सब बनते हैं। तो ये कोई गंदगी नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है, हमें इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। कोई भी हो, अपने फैमिली में बात करिए आप, क्योंकि ये जो दिन होते हैं 5 दिन ना, बहुत टफ भरा वाला दिन होता है। इस टाइम जितना हो सके आराम करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और वही अपने शहर का सामुदायिक रेडियो सुनते रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए जी, अगला गाना भी बहुत शानदार है, इस गाने के बाद हम मिलते हैं आप सभी को।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:01 हो चुके हैं और वेदर की बात कर लेते हैं क्योंकि आज है 28 तारीख और कल है 29 मई। यानी कि कल मौसम है, यानी कि करवाहट ले सकती है, अपना रुख बदल सकती है क्योंकि 29 मई को ये बताया जा रहा है कि बारिश आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बहुत सी जगह बारिश बता रखी है। साथ ही साथ बहुत जगह ये भी कहा जा रहा है कि यानी कि 2 जून तक बहुत प्रचंड वाला जो गर्मी है वो पड़ने वाला है, यानी कि ताबड़तोड़ वाली गर्मी है। लेकिन आज के अगर वेदर की बात करूँ तो अभी यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हवाओं में आज थोड़ा सा नमी है जिससे हल्की सी राहत मिल रही है लोगों को। लेकिन वैसे गर्मी कम नहीं है श्रोताओं, इसीलिए गर्मी से बचकर रहिए और कल थोड़ा सा भगवान जी रहम करिए, थोड़ा सा मौसम है तो बदल जाइए क्योंकि मौसम चलता फिरता बदल ही जाता है। फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आता है। हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं। आज तो मौसम में गर्मी कम है, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा नमी है आज हवाओं में। और बताइए सब बढ़िया? हाँ जी बहुत बढ़िया है। और रीना जी बीच बीच में जो आप अपडेट देती हैं ना, अच्छा लगता है, क्या बात है, थैंक यू सो मच जी। राहुल जी का मैसेज आता है मुरादाबाद से और इनका कहना है कि मैडम हम आपका रेडियो सुन रहे हैं ईयरबड्स लगाकर। ओके, और क्योंकि मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो, और वैसे भी बाइक चलाता हूँ तो मैं बाइक से ही घर और ऑफिस जाता हूँ, सो मैंने देखा बीच में भाई काफ़ी टाइम हो गया मुझे मूंग दाल खाए, तो मैंने सोचा कि मूंग दाल खा लेता हूँ। और जो आपने गाना चलाया था ना वो बहुत प्यारा था, थैंक यू सो मच जी। और आपकी बातें भी बड़ी अटपटी चटपटी है जी। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया सो मच। फिलहाल के लिए एक और गाना, जो कि इस गर्मी में हमें क्या करना है जी, नींबू पानी पीते रहना है और ये गाना भी एकदम परफेक्ट है जी। चलिए फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: क्या बात है जी, अब तो दिन में भी आपको तारे दिखेंगे, वो कैसे मैं बताती हूँ जी। आपके साथ मैं आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे इवनिंग मस्ती शो। और समय की बात करूँ तो 6:13 हो चुके हैं। और देखिए, हर चीज तो महंगी हो रही है ना, महंगाई ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, जिससे हम सभी बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक एक बार भी अगर फोन में नजर मारते तो सबसे पहले व्हाट्सएप इंस्टा जरूर खोलते हैं, दोस्त हो या फिर हम किसी को रील भेजते हैं ना, तो मतलब रील भेजने के इतने शौकीन हैं कि पूछिए मत। ऊपर से कॉल कम, मैसेजेस ज़्यादा करते हैं, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टा हुआ। लेकिन सोचिए, अगर वही आपको ये बोल दे कि अब आपको व्हाट्सएप और इंस्टा चलाने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे उस टाइम? मैं बताती हूँ जी। बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ। अब तक वो दिन भी आ सकता है, यानी कि आने वाला ही है, जब घर वाले से छुप कर बातें करना पड़ता था। लेकिन अब बातें करना हो गया है महंगा, क्योंकि खबर ये है कि मेटा ने कुछ फीचर के लिए पैसे लेने की तैयारियों में है। अब सोचिए, लोग रात में रजाई के अंदर जाकर पता क्या कहते हैं, हाँ जानू अब सब सो गए, अब तो कॉल कर लो, कॉल पे बात करते हैं, सब सो गए, कोई डर नहीं है। अब वो पहले रिचार्ज नहीं, यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको, प्लान देखने के लिए, भैया बात करने के लिए। और जिनका पूरा रिश्ता यानी कि इंस्टाग्राम रील्स व्हाट्सएप डीपी पर टिका है, उनके लिए उनकी धड़कनें पता कितनी हो गई है, यानी कि धक धक करने लगा। ओ भाई साहब, ऐसी वाली हालत आ गई, तो हर कोई एक ही बात बोलेगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, फिलहाल चैटिंग बंद नहीं हो रही है इस दुनिया में, यानी कि धीरे धीरे फ्री और पेडिड वाली तरफ भी बढ़ रही है, यानी कि जो फ्री चल रही थी अब वो पैसे के तरफ रवाना हो चुका है। जब भैया चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, हर चीज़ महंगा हो सकता है, तो ये भाई सोशल मीडिया क्यों महंगी नहीं हो सकती है? क्योंकि भाई बताऊँ, आधी दुनिया मतलब पूरी ज़िंदगी हमारा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर टिका हुआ होता है, कुछ भी हो मैसेज कर देते हैं, या जा नहीं पाएंगे उसके घर मैसेज करके बुला लेते हैं ना, है ना। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले हमें जाना पड़ता था, लेकिन हम बहुत शॉर्टकट हो चुके थे कि हर चीज़ व्हाट्सएप पे भेज देते थे। तो जब तक फ्री है, यानी कि मीम्स भेजते रहिए, रील शेयर करते रहिए और प्यार भरी बातें करते रहिए। यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। तू है मेरी दिलरुबा। हां जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अगर सोचिए कि मतलब जो छोटे बच्चे हैं जो कि घर पर रहते हैं, और घर वालों ने, हाँ ठीक है अभी कॉलेज के टाइम, स्कूल के टाइम फोन मिल गया है, लेकिन वो अपने मोहब्बत भरी प्यार भरी बातें कैसे करेंगे? तो मेरा उनसे क्वेश्चन है और आप सभी से क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप के बिना तो मुझे नहीं लगता कोई भी रह सकता है, हर किसी की ज़रूरत है आजकल व्हाट्सएप पर। भाई कुछ भी हो जाए, ऑफिस से लेकर ग्रुप में ऐड है, कोई भी काम हो चलो एक मैसेज कर देते हैं। सोचिए अगर यही जितना फ़ोन रिचार्ज करते हैं उतना अगर मेटा पैसे लेने लग जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इंस्टा व्हाट्सएप चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? सो आपका क्या राय है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9837896896, मैसेज करके बता सकते हैं। और फिलहाल मेरे पास प्यारे प्यारे मैसेज आ भी रहे हैं, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन आज आप सभी से मैंने ये पूछ लिया है कि अगर सोचिए कल से मेटा ये बोले कि भाई बिना पैसे बिना रिचार्ज करे आप व्हाट्सएप इंस्टा नहीं चला पाएंगे, तो क्या करेंगे आप, ये हमें आपसे जानना है। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने उदित नारायण जी की आवाज में, अनुराधा पौडवाल। ओ माय गॉड, बेटा मूवी से आपने ये गाना एंजॉय किया है और साथ ही साथ आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है, अपने शहर का सामुदायिक रेडियो आप एंजॉय कर रहे हैं जो कि आपको सुबह से लेकर शाम तक अपडेट के साथ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट करता रहता है और गाने भी बड़े मजेदार प्ले होते हैं। सो समय की बात करूँ तो 6:24 हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है यानी कि 1 जून से यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये ऐलान कर दिया है कि 1 जून से यानी कि छात्रों जो टॉपर छात्रा हैं उनको 1,00,000 रुपए टैबलेट मेडल दिया जाएगा जिन्होंने 10th और 12th अच्छे मार्क्स से पास आउट किया है। तो देखिए श्रोताओं, आपके पास अब नंबर आपकी बारी आ चुकी है यानी कि जिन्होंने 10th पास आउट कर लिया है और जो अभी 12th पास आउट कर लिया है और जो बच्चे 10th और 12th में हैं अभी उनके लिए गोल्डन लकी चांस है कि अगर आप भी चाहते कि हमारे अकाउंट में भी 1,00,000 रुपए और टैबलेट और मेडल आए तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अरे मेहनत, जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा आपको। लेकिन देखिए प्रेशर के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है कि नहीं भैया मुझे तो चाहिए, पता चले कि आप दिन रात बुक लेकर बस पढ़े जा रहे हो, इतना भी नहीं पढ़ना है, अपने आप को रेस्ट भी देना है, नींद भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये अगर आपके भी सही नंबर आए हैं तो आपको मिल सकता है 1,00,000 रुपये और टैबलेट और मेडल, जो कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो टैबलेट पर आप ऑनलाइन क्लासेस आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं भैया कि बहुत से बच्चे फ़ोन को ना मतलब गलत तरीके से यूज़ करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फ़ोन को फ़ोन के तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है फ़ोन है आपके पास तो रील्स गाने ही सुनो, बल्कि आप उस पर पढ़ाई भी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें हमारे पास फ़ोन पर यूज़ करने के लिए। लेकिन बस आप काम की चीज़ें अगर देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। फिलहाल हमने आप सभी से यही पूछा था कि अगर मेटा ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर आज से ही बोल दे कि भैया बिना पैसे दिए तो तुम किसी को मैसेज चैटिंग नहीं कर पाओगे, रील नहीं भेज पाओगे, तो आपका क्या कहना है। चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सो विक्की सागर जी का कहना है कि वाईफाई चला लेंगे, व्हाट्सएप क्या ही होएगा। अरे सर, जिनके शादियां हो गई हैं वो तो फिर भी ठीक है, अरे व्हाट्सएप क्या ही करेंगे, वैसे भी चला नहीं पाते हैं ना लेकिन जो बच्चे सोचिए छुपके छुपके व्हाट्सएप और रील भेजते हैं उनका क्या होएगा, उनके दिल पे तो पत्थर आ चुके हैं ना सोचिए तो वो क्या करेंगे। सो फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो एक हमारे पास प्यारा सा वॉइस मैसेज आता है, सो चलिए गाइस उसको सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे अपने शो में।
1: नमस्कार, राधे राधे, सुन रहे हैं FM 89.6, बजाते रहो गुनगुनाते रहो आरजे

0: रीना के साथ, और मैं आपका दोस्त गुपी शर्मा नगर पंचायत बागबड़ा से बोल रहा हूँ। जैसे हम या आप सुकून के लिए भाग रहे हैं, वैसे ही सुकून भी हमारे पीछे भाग रहा है कि ये आदमी रुके तो मैं इसको मिल सकूं। इसीलिए कुछ देर रुककर थोड़ा आराम कर लीजिए ताकि सुकून आपको मिल सके। नमस्कार, राधे राधे। सुनते रहो FM मुरादाबाद, भेजते रहो अच्छे अच्छे मैसेज, वॉइस नोट नंबर 98-378-96-896। नमस्कार, राधे राधे।
1: राधे राधे, क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सुकून के पीछे मत भागी, और सुकून तो देखिए आपको हर छोटी छोटी चीज में मिल जाती है, है ना। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में सुकून ढूंढिए और अपनी ज़िंदगी को यूं ही इन्जॉय करते रहिए। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो, हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है, और आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसी है। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, और आज मेरी छोटी सिस्टर का बर्थडे है, तो आपकी छोटी सिस्टर का बर्थडे है तो हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे जी। और साथ ही साथ इनका कहना है कि मैम चाय पी लीजिए। चाय तो हम पी लेंगे मैडम, लेकिन चलिए आपके सिस्टर के लिए हम एक गाना भी प्ले कर देंगे, यानी कि बर्थडे वाला। लेकिन बर्थडे वाला गाने से पहले एक और गाना, उसके बाद आपको हम अपनी तरफ से एक गाना सुनवाते हैं। आपके सिस्टर के लिए बर्थडे है यार, इन्जॉय करिए, और यूँ ही अर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: गुड वाली इवनिंग है, आज रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 6:40 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज की अगर आईपीएल मैच की बात करूं तो आज क्वालिफायर यानी कि मुकाबला होने वाला है, यानी कि आज 29 मई गुजरात और राजस्थान के बीच मुकाबला होने वाला है। यानी कि इस टीम में, यानी कि इस दोनों टीम में जो भी टीम अगर जीतती है, यानी कि सीधा फाइनल मैच यानी कि 31 मई को होने वाला है फाइनल मैच, जो कि बेंगलोर के साथ खेला जाएगा। सो आज का भी मैच बहुत ही शानदार होने वाला है। कल तो फिलहाल राजस्थान रॉयल टीम ने भैया धमाल मचा दिया है, यानी कि मारो राजस्थान प्यारो बिल्कुल धमाल मचा है कल। इस वैभव सूर्यवंशी ने जो भाई छक्के चौके उड़ाए हैं लड़के ने, मतलब शब्द नहीं उसके लिए। मतलब एक 15 साल का लड़का, और आज तक कोई भी ऐसा क्रिकेटर बॉलर नहीं है जो ये रिकॉर्ड बना पाया, यानी कि भाई आगे है ये लड़के ने। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि 15 साल की एज में तुम इतना रोक मचा रहे हो ना, आगे तो तुम बवाल भौकाल लाने वाले हो। साथ ही साथ आज का जो मैच, सच बताऊं बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम वैसे भी है राजस्थान रॉयल, मेरी फेवरेट टीम है। साथ ही साथ गुजरात के मुकाबला होने वाला है गुजरात के साथ। भाई जो भी टीम जीतेगी, आपको क्या लगता है कि आज यानी कि कौन सी टीम जीतने वाली है जो कि फाइनल में जाने वाली है, वो भी बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेला जाएगा 31 मई को। तो आज का मैच और 31 मई का मैच देखना बिल्कुल ना भूले, वरना बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि काफी टाइम से आप मैच देख रहे हैं, आईपीएल मैच देख रहे हैं, और ये दो लास्ट के मैच मिस कर जाए तो सोचिए आप फिर बोलेंगे यार रिग्रेट हो जाएगा, फिर कि यार बस रिग्रेट करते रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि रिग्रेट को परे टालिए और आज का मैच जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल आप सभी के लिए कड़क सवाल भी लेकर आएंगे और बहुत प्यारे मैसेज भी आए, उनको भी शामिल करेंगे। फिलहाल के लिए घना, क्योंकि ऑल इज वेल, यानी कि आज का मैच खेलने से पहले ऑल

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर

क्या बात है जी, ऑल इज वेल बोलते रहिए और अपनी जिंदगी में रोक मचाते रहिए। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहिए, गुनगुनाते रहिए जी। समय की बात करूं तो 6:47 हो चुके हैं और इसी बीच लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए कड़क सवाल। आखिरकार कड़क सवाल आज का क्या होने वाला है? सच बताओ तो हम सभी ने पढ़ा है और छोटे बच्चे तो खासकर हम उनको पढ़ाते ही हैं, सो बच्चे से लेकर बड़े तक इसका आंसर आसानी से आप दे पाएंगे। सो चलिए आखिरकार देखते हैं क्या है आज की कड़क सवाल, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 26 अक्षर होते हैं लेकिन सिर्फ 3 मात्राएं होती हैं। सोचना है आपको और हमें मैसेज करना है, नंबर है 9837896896 पर मैसेज करके पहुंचाना है, राइट आंसर के साथ कनेक्ट होना है। वंस अगेन एक बार और सुनिए, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 26 अक्षर होते हैं लेकिन सिर्फ मात्राएं 3 होती हैं? सोचिए भैया क्या हो सकता है आखिरकार, अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि बचपन में कोई भी पढ़ाई हो शुरुआत इसी से होती है। अब इतना हिंट काफी है आप सभी के लिए। सो एक मैसेज भी आ गया, मैडम एक बार और रिपीट करो। अच्छा जी अभी करते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 26 अक्षर होते हैं लेकिन सिर्फ 3 मात्राएं होती है और बचपन में शुरुआत भी हम उसी से करते हैं। अभी सच बताऊं तो मतलब मैं भूल जाऊंगी बीच में, अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूं तो भूल सकती हूँ। बहुत से भूल गए होंगे लेकिन बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनको अभी याद होगा ये। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और उसके बाद लौट कर होते हैं आप सभी के बीच। मैसेज आया बड़ा ही कमाल का भैया। सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए जी।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: हां जी, हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ। और कल भैया 29 मई है, तो जरा ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि कल वेदर करवट ले सकती है, यानी आंधी तूफान आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ जो बारिश आएगी उसकी अलग ही बात है, यानी कि थोड़ा सा गर्मी से, हमें भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। और आज का कड़क सवाल, जल्दी मैसेज करिए गाइस, क्योंकि अगली बारिश सिर्फ और सिर्फ आपकी मैसेज की ही है। यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 26 अक्षर होते हैं लेकिन सिर्फ 3 मात्राएं होती है? सोचिए और समझिए, फटाफट मैसेज करिए, क्योंकि अगली बारिश सिर्फ और सिर्फ आपकी मैसेज की है। चलिए फिलहाल एक गाना बहुत प्यारा,

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:57 हो चुके हैं और अब अपने शो से यहां तो जाने वाले हैं, लेकिन आज के जो कड़क सवाल का कड़क आंसर आए वो भी तो शामिल करना है जी। यानी कि आज की कड़क सवाल, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 26 अक्षर होते हैं लेकिन सिर्फ 3 मात्राएं होती है उसमें। चलिए जी, बढ़ते हैं आप सभी के प्यारे मैसेज की तरफ। विकी सागर जी का कहना है कि भैया कल का जो मैच था बड़ा ही लाजवाब था, मतलब शब्द नहीं है कल के मैच के लिए। यानी कि जो वैभव सूर्यवंशी के बल्ला एक बार जब घूमता है तो ऐसा घुमाता है कि पूरे ग्राउंड में जो भी बैठे होते हैं ना, शोर शराबा से मच जाता है, यानी कि दिल खुश हो जाता है। चलिए जी, मैसेज की बात करते हैं। यानी कि राधे राधे जी, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखे। आनंद में कभी वचन मत दीजिए, धर्म संकट में आ सकता है। क्रोध में कभी उत्तर मत दीजिए, रिश्ता खराब हो सकता है। और दुख में कभी निर्णय मत लीजिए, आपका नुकसान हो सकता है। आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं सपना शर्मा जी, नगर पंचायत पागबाड़ा से। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही प्यारी लाइनें लिखी है आपने। जीवन में हमें ये मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए। और गुस्से में कभी भी अपने मुख मंडल से कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आपको नहीं पता कि आप क्या बोल जाते हो, इसीलिए हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। और मैसेज आते हैं हमारे पास, आप सभी को नमस्कार है और सभी लोगों को हैप्पी ईद हम लोग की तरफ से। क्या बात है जी। ये हमारे साथ उमा शंकर सिंह कनेक्ट होते हैं उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड से कनेक्ट होते हैं। इनके साथ अवनिका सिंह भी कनेक्ट होती है, अरिचित सिंह कनेक्ट होते हैं। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमारे पास किन का आता है, ये ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती है और इनका कहना है कि आज के जो कड़क सवाल है उसका कड़क आंसर होता है अल्फाबेट। यानी कि ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। क्या बात है जी, रॉक मचा दिया आपने तो, बड़ी टैलेंटेड लेडी है ये, सच बताओ तो। चलिए फिलहाल टेक्स्ट मैसेज की तरफ भी बढ़ते हैं।

0: अगले मैसेज की बात करूं तो हाय, ये हमारे साथ कनेक्ट होती है संजू जी। हाय रीना दी, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। और इनका कहना है कि दी ठंडी हवाएं चलने लगी है, क्या बात है जी। छत पर ठंडी हवाओं के आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, क्या बात है जी। अभी से देखिए, यानी कि ये कहा जा रहा है कि रात को भी बारिश आने की संभावना जताई जा रही है, आ सकती है बारिश रात को भी, क्योंकि आज सुबह से ही मौसम हवाओं में नमी है। तो आज तो भैया ऐसा लग रहा था कि मैं थर्ड फ्लोर पर रहती हूँ कि हाँ ठीक है, आज ऊपर रह लेती हूँ कुछ काफ़ी टाइम तक, यानी कि 12 बजे मुझे नीचे आना होता है अपने स्टूडियो में। सो हर रोज़ तो मैं 9 बजे ही आ जाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज मैं पूरे 12 बजे आई हूँ क्योंकि हवाओं में नमी के साथ मज़ा आ रहा था। आज पंखे भी चल रहे थे, ऊपर से हवाओं का आनंद भी ले रही थी मैं। सो इनका कहना है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा, यानी कि ए बी सी डी तीन और ए ई ओ, ये तीन होते हैं यानी कि अल्फाबेट। क्या बात है जी, आपने तो पूरा समझा दिया है मुझे। वैसे ए बी सी डी मुझे भी याद है, अभी मैं भूली नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने भतीजे को पढ़ाती रहती हूँ। सच बताओ एक टाइम के लिए तो भूल ही गई थी। अरे अरे क्या हो गया, क ख ग घ ये भी सही सही मैं पढ़ लेती हूँ, अभी भी मेरे को याद है फिर भी। चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ, आज के शो में विनर बनती हैं ललिता कश्यप जी और संजू जी, हमारे शो के विनर बनती हैं। सो आपको यही कहना चाहूँगी कि इस गर्मी में आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए नींबू पानी बनाकर पी सकते हैं जी, इस गर्मी में राहत मिलेगी आपको। और अभी देखिए, रात को दही छाछ लस्सी आपने नहीं लेनी है क्योंकि रात के समय ये चीज़ें नहीं खाई जाती, आपका गला ख़राब हो सकता है, इसीलिए दोपहर में और सुबह आप दही छाछ लस्सी ले सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह और रात के 9 बजे भी मिलने वाले हैं श्रोताओं, आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करने वाले। अभी के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए और यूं ही अपनी ज़िंदगी में रोक मचाते रहिए, और वेदर अभी चेंज होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं जी। चलिए जी, बाय बाय बाय।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है, और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले अपना नाम बता देता हूँ, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद, और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन? मेरी प्यारी दोस्त
1: आरजे रीना।
0: यस आरजे रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, और सबसे मजेदार बात, स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहे है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए आखिर यह योजना कैसे काम करेगी।
1: जरूर, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस

0: व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
1: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
0: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
1: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
0: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
1: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
0: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
1: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
0: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
1: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
0: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
0: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
1: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
0: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
1: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों
0: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
1: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
0: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
1: दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गांव या शहर तक सीमित था, अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
0: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है, यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
1: सही कहा आपने आरजी रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा,
0: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करे, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखे और कैसे ब्रांडिंग करे और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाए।
1: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
0: बिल्कुल, कल्पना कीजिए, किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाई या स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे, तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
1: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
0: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
1: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी,
0: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा,
1: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
0: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा,
1: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
0: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
1: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक हाजिर है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
0: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए,
1: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे तभी सचमायनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।
0: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: तो मैं हूँ आरजे आनंद
0: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना।
1: फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। और आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनुरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही
1: का तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
1: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही सर, और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
1: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
0: बिल्कुल सर, तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
1: देखिए, आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटम ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटम ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटम ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटम ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो बात जो अदालत ने जो बात कह दी है, आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
0: शो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
1: देखिए, कंटम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक सिविल कोर्ट का कंटम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कंटम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है, तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट
0: कार्यक्रम
1: फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
0: सुना सकते हैं, बिल्कुल
1: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
0: अगर कोई व्यक्ति कंटम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
1: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है।
2: घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा।
1: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188,00,000 टन अधिक है।
0: सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन, थाना बैरक, अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज लखनऊ में जोन 4 के भैंसोरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी

0: मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है।
1: लखनऊ आलेदी शिवरी में और भेला में 20 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके देश में एक चुनिंदा शहर बना है। लखनऊ आलेदी स्वच्छता सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर आकर के देश में अपना नाम बना चुका है। अब ये 51 ट्रांसफर स्टेशन जो इस तरह से बन रहे हैं, उनकी वजह से लखनऊ नगर में कहीं भी कूड़े का बड़ा ढेर जो है खुले में नहीं दिखेगा। सब कुछ कॉम्पैक्टिंग होगी, सब कुछ बंद गाड़ियों में ट्रांसफर होगा।
0: इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में शामिल करना है।
2: आज लखनऊ स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ा है। भरवारा मल्लौर वार्ड में भी हमने ट्रांसफर स्टेशन लगाया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में हमारे कम्प्लीट 51 ट्रांसफर स्टेशन बन जाएंगे, 24 पूरे हो गए, और लखनऊ में कहीं भी कूड़ा ना दिखे, इसका मेरा पूरा प्रयास है।
0: अयोध्या में कल 29 मई को राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंभरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। राजधानी लखनऊ में सुन्नी समुदाय के लोग ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में नमाज में शामिल हुए। वहीं शिया समुदाय ने आसिफी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। एक रिपोर्ट।
4: लखनऊ में ईद उल अजहा का पर्व आज सुबह नमाज अदा करने के साथ शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। त्यौहार के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम ने भी 30 मई तक पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या, बाराबंकी, पीलीभीत, श्रावस्ती, प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। आगरा में ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर आज देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। प्रदेशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
5: होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है, एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकती है। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पर कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
6: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
5: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है। भारत में कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा। तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
6: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
5: हाँ, अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पर जो हैबियस कॉर्पस रेट होती है, ये रेट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटिशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको।
6: ओके,
5: थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके अगेंस्ट में विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, उसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है, ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये इस सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाई कोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पे बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है या नहीं है। हाँ, तो मुख्यतः ये 5 रिट होती हैं। तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते।
6: अंत में सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
5: देखिए, कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है, हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ।
6: परफेक्ट हूँ बिल्कुल।
5: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स हैं हमारे।
6: बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
5: मेरे को मानत उपाधि एक यूनिवर्सिटी से मिली थी, और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में मानत उपाधि मिली हुई।
7: वैसे
5: एक क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और एलएलबी मेरा है, और अभी नाउ आई एम परसुइंग एलएलएम।
6: LLM. तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
7: देखिए,
5: बाकी सब तो ठीक है, मेरा वो बेसिक जो है मेरा
7: खुद का ड्रीम था,
5: हाँ मुझे एमकॉम करना है, उसके बाद मेरे को एमबीए करना है, लेकिन एलएलबी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
6: हाँ सर, वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
5: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में, किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कंप्लेंट करी,
6: ओके,
5: और वो फेक कंप्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल एथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को, मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं। मैं इसको
6: बिल्कुल, क्या
5: क्योंकि
6: बात
5: इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
6: बिल्कुल,
5: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा, मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में।
6: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।
5: बस एक एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
6: और कहते हैं ना सर, एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है,
5: मिलती है, और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
6: बिल्कुल बिल्कुल सर, सही।
5: तो मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
6: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में, आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम ना वहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल
5: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिंदगी, वो एक गाना ना, जीवन चलने का नाम चलते रहना है सुबह शाम।
6: बिल्कुल,
5: तो बस यही लाइफ है
6: सर। किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती है।
5: किताबें ही आपकी
6: बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहा आपने।
8: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
9: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
10: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
11: कॉल 8826213131।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
11: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
12: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
11: अरे वाह।
12: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी
11: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।

0: कचरा प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एनसीआर को जाम मुक्त, यातायात को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में एक्सप्रेसवे, सुरंग और एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी विस्तार सड़क 2 के माध्यम से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, जिससे पश्चिमी दिल्ली और गुरुग्राम से उत्तराखंड तक सीधा संपर्क मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने के लिए 65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को शहरी विस्तार सड़क 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे भारी वाहनों का बेहतर डायवर्जन होगा और जाम में कमी आएगी। वहीं एम्स से गुरुग्राम तक 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे धौलाकुआं और महिपालपुर क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम होगा। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली को विश्व स्तरीय हरित और जाम मुक्त बनाना है। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। दिल्ली भाजपा कार्यालय पर श्री मल्होत्रा ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दायित्व उनके लिए संगठन और जनसेवा के प्रति और अधिक समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा दिल्ली के विकास में पूर्ण निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी को श्री मल्होत्रा के अनुभव से फायदा होगा।
2: पार्टी में हर दायित्व बड़ा होता है और ये जो दायित्व हर जी को मिला है कि उनको अनुभव बहुत है, प्रशासनिक भी है और संगठन का भी है, तो निस्संदेह उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा और पार्टी को और ऊंचाइयों तक वो उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।
0: एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से दिल्ली में भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी और जनसेवा के कार्यों को और सशक्त बना सकेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज देश की लोकतांत्रिक विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकलन जारी किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र संवाद, बहस, सहमति और असहमति पर फलता फूलता है। इस अवसर पर 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के संकलन का विमोचन किया गया। श्री बिरला ने कहा कि ये संग्रह आने वाली पीढ़ियों और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक सार्थक मार्गदर्शक साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र वैश्विक मंच पर एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा भवन का निर्माण मात्र 11 महीनों में 22 एकड़ क्षेत्र में किया गया था, जो आज भी आश्चर्य का विषय है।
3: वैसे इन्होंने एक साल में इसकी सुंदरता को, हमारे इतिहास को ये पूरा जीवित करके रख। तो यहाँ पे जब बच्चे हमारे जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जब वो आके इस पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, हम सब आपके ऋणी हैं ना स्पीकर महोदय, कि आपने छोटा काम नहीं किया है। ये सब कहीं पे किसी कमरे में धूल मिट्टी खा रहा था, आप उसको लेकर आए, आपने उसको पढ़ा, आपने टीम लगाई और आपने इतिहासकार लगाए, उसके बाद में ये सारे इतिहास को संयोजना, उसको लेकर आना छोटा काम नहीं है और वो भी इतने कम समय में, इसलिए हम सभी आपके प्रति ऋणी रहेंगे।
0: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये सदन देश की ऐतिहासिक लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है। श्री गुप्ता ने कहा कि हाल ही में प्रदर्शित डॉक्यूमेंट्री इस बात की पुष्टि करती है कि ये सदन ऐतिहासिक महत्व रखता है।
4: जो सदन है ये एक ऐतिहासिक स्थल है। जनवरी 1926 में पहली परंपरा वीर विट्ठल भाई पटेल जी ने अध्यक्ष बनने के बाद जो स्थापित की, हर वर्ष वायसराय साल के पहले सिटिंग पर सदन को एड्रेस करने आते। विट्ठल भाई जी अध्यक्ष थे, उन्होंने वायसराय को मैसेज किया कि वो आने से पहले विचार कर ले कि जो परंपरा थी मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। परंपरा ये थी कि जब वायसराय आते थे तो अध्यक्ष जाकर नीचे बैठ जाते थे, खड़े होकर उनका स्वागत करते थे बाकी सदस्यों के साथ, और मंच पर सिर्फ एक कुर्सी लगती थी। उन्होंने संदेश भिजवाया कि मैं इस सदन का कस्टोडियन हूँ, इसलिए मंच पर एक नहीं दो कुर्सी लगेंगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर वहां चल रहे पुराने कचरे के बायो माइनिंग और बायो रेमिडिएशन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने कहा कि भलसवा लैंडफिल साइट पर स्थित कूड़े के विशाल पहाड़ समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुराने कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया को तेज किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। इस अवसर पर छात्राओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता, मानसिक सशक्तिकरण और स्कूलों में बेहतर सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि छात्राओं के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भूमिका केवल प्रशासक की ही नहीं बल्कि अभिभावक की भी होती है। उन्होंने कहा कि कई छात्राएं मासिक धर्म के दौरान असहज महसूस करती हैं और ऐसे समय में उन्हें संवेदनशीलता, विश्वास और सहयोग की आवश्यकता होती है।
5: दिल्ली सरकार ने स्कूलों में स्वच्छ टॉयलेट, मेडिकल रूम और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन के नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी स्कूलों में साफ सुथरे शौचालय और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैटर्स अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक शौचालय और आरोग्य मंदिर में लगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों के नियमित मेंटेनेंस और समय पर रिफिल सुनिश्चित करने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे दिल्ली में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कक्षा 6 से 9 तक के पाठ्यक्रम में मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बाद दिल्ली सरकार छात्राओं को निःशुल्क साइकिल भी उपलब्ध कराएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी यादव।
0: दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण केंद्र सरकार के निर्धारित वित्तीय ढांचे, तकनीकी दिशा निर्देशों और स्वीकृत मानकों के अनुरूप किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण और उन पर किए गए व्यय को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट पर सरकार ने कहा कि ये दावा गलत है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में तय सीमा से ज्यादा खर्च हुआ है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मॉडल के तहत हर केंद्र के लिए भवन सुधार पर 25 लाख रुपए और फर्नीचर तथा जरूरी सुविधाओं के लिए 1 लाख रुपए तय हैं। सभी काम इसी निर्धारित बजट के भीतर किए गए हैं। विभाग ने बताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली में कुल 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनः मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
6: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनः निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया है कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा है कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upseonline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य नमाज ईदगाह जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद में अदा की गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये पर्व समाज में शांति, भाईचारे और करुणा की भावना को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सावरकर जी ने भारत माता के अनन्य भक्त, एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और अदम्य साहस के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र सर्वप्रथम के संकल्प, सांस्कृतिक गौरव और अखंड भारत की भावना को समर्पित था। उर्दू साहित्य की एक महान आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उनके परिवार के अनुसार उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें आज भोपाल टॉकीज के पास स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा है और राजधानी में आज शाम कुछ इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली NCR में निर्बाध यातायात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष मनोनीत। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर कचरा प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
9: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
8: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
9: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
10: कॉल 7500153841।
11: टायर लो सोना जीतो।
12: क्या?
11: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
13: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
14: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: अमरत्व प्राप्त किया। अपने लेखन काल में वे चुनारगढ़, प्रतापगढ़, बहराइच, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, महोबा, बंबई आदि कई स्थानों में कार्यरत रहे, पर काशी के बाद उनका सर्वाधिक जुड़ाव लखनऊ से रहा। यहां से ही उन्होंने किस्सा गोई और कथा भाषा ली और उसे पराकाष्ठा पर पहुंचाया। यह लखनऊ के लिए भी गौरवास्पद है।
7: प्रेमचंद और लखनऊ, ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यही संपन्न होता है।
8: अपने बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं तो फिर देख लीजिए इश्क में हारा ऐसा दिखता है। इसके आगे के अपने शहर मुरादाबाद के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जब अब भी तेरी याद में है तो क्यों तेरे लिए सबसे बाद में है। हम जब अब भी तेरी याद में हैं तो क्यों तेरे लिए सबसे बाद में है। खुशी होगी तुम्हें ये जानकर हम तेरे ही शहर मुरादाबाद में।
9: हाँ जी, कैसे हालचाल है? गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है एंड आई रियली होप सब बढ़िया ही होंगे। देखो यार, शाम होते होते ना मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है यार, काश कोई शेर व शायरी सुना देता तो नींद थोड़ी अच्छी आ जाती। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि शेर व शायरी सिर्फ नींद के लिए सुनी जाती है, नहीं भाई, ये ना बिल्कुल सुकून देती है। शेर व शायरी जो होती है ना भाई, उसकी वाइब ही अलग होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो मैंने सोचा इस बात को जरा थोड़ा सा आज और बढ़ाते हैं, हालांकि नए रूप में लाने की कोशिश की है और कुछ ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में अपने साथ। हालांकि इनको आपने पहले भी सुना है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज वो कुछ नया लेकर आए हैं और मेरे साथ तो आई थिंक फर्स्ट टाइम होने वाला है उनको और मेरा कॉन्वर्सेशन, तो आई एम सुपर हैप्पी। और साथ में हमारी हवा हवाएं, आई मीन टू से अखिल भैया भी, जो अपने लैपटॉप में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं भाई, मतलब ही इज अ बिजनेस मैन यार, बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, वार्म वेलकम करेंगे। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में राघव जी। राघव भाई, बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद के स्टूडियो में, कैसे हाल चाल है आपके?
8: थैंक यू आनंद जी, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर?
9: मैं बढ़िया हूँ सर, एंड डोंट कॉल मी सर, हम सब ऐसे भाई भाई वाले हैं और एक महफिल जमाने आए तो यहाँ पे कोई नहीं, कोई आप नहीं, मतलब एक फ्रेंडली माहौल बनना चाहिए यार,
10: क्योंकि मैम भी नहीं है, क्योंकि सर ही सर हैं।
9: हाँ मैम नहीं है, नहीं मेरा सर वैसे सही है, ओके ओके,
8: मैम का तो अभाव ही है जीवन में सर।
9: क्या बात है। तो राघव जी, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो दीजिए भैया।
8: आई थिंक मुझे पहले भी काफी लोगों ने सुन रखा होगा,
9: एब्सोल्युटली
8: आनंद तो आप हैं ही। हाँ। आरजे राज जी जो हैं उनके साथ में रहता था, हमारी जुगलबंदी रहती थी पोइट्री की।
9: बिल्कुल बिल्कुल।
8: और मेरा नाम राघव गुप्ता है, शहर मुराद से बिलोंग करता हूँ, पेशे से वकील हूँ और आज शाम आपकी खिदमत में।
9: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ यार, आपने बताया आपका प्रोफेशन कुछ और है, वकील, तो मतलब वकील लोग किस लड़ते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, ये मुझे पता नहीं था यार, गलती से कहीं अगर कुछ लिख दिया, लिखने की जगह कुछ दिल की बात लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगा।
8: ऐसा है सर, जो दलीलें जज के सामने पेश कर रह जाती है वो शायरी के तौर पर कह देते हैं।
9: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा पहले आपका इंटरव्यू ले लूँ, उसके बाद शुरू करेंगे सिलसिला। ये आपको आया कहाँ से, मतलब कि यार मुझे ये शेर व शायरी में भी करना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप लॉ कर रहे हैं आपका तो सारा फोकस वहाँ होना चाहिए, लेकिन ये वाला कैसे मतलब हुआ, पहले ये आया या पहले लो आया, मेरे को ये जानना है।
8: नहीं नहीं, पहले मैंने लिखना काफी समय से ही शुरू कर दिया था।
9: अच्छा।
8: मतलब 10th क्लास के बाद जब कैप मिलता है आपको, रिजल्ट का जब वेट होता है, तभी मैंने पोएम्स लिखना शुरू कर दी थी।
9: अरे वाह।
8: लेकिन फिर मैं पहले बीच में रैप सॉन्ग्स भी लिखे और उसके बाद फिर मैं पोइट्री की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि काफी मुझे सुकून देती है।
9: अरे वाह, बहुत।
8: और अगर देखा जाए तो कि मेरी मम्मी को पढ़ने की आदत काफी है, वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ती है।
9: ओ, वाव।
8: तो पुरानी किताब वो एकदम छोड़ती नहीं है हिंदी की, तो मुझे वहां थोड़ी आदत लगी,
9: मतलब इंस्पिरेशन मम्मी से मिली है, थोड़ा सा बैकग्राउंड कह सकते हैं वो पढ़ने पढ़ाने वाला।
8: बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे दादा तो उर्दू और हिंदी दोनों जानते थे।
9: अरे वाह, क्या बात है।
8: उनको काफी शौक था शायरी गजल सुनने का।
9: आपके तलफ्फुज़ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, हम भी हिल रहे हैं आज बैठे बैठे। चलो कुछ नया सीखेंगे। तो राघव भाई थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि यार बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिनका दिल टूट जाता है या थोड़े से जो प्यार श्यार करते हैं वो कुछ ज्यादा शेर व शायरी करते हैं, क्या ये सच बात है?
8: देखिए अगर हम गजल की और शायरी की बात करें तो इनिशियली इसकी शुरुआत लड़की की तारीफ करने से हुई थी।
9: ओके
8: ठीक है, किसी आप कन्या की तारीफ कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका की तारीफ, अपने आप की आप तारीफ कर रहे हैं
9: जी,
8: शुरुआत वहां से हुई थी। फिर उसके बाद उसको अलग अलग आप ये कह सकते हैं अलग जोन में उसको बांट दिया गया।
9: ऑलराइट, कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट
8: कर दिया। जी, कहीं सियासत वाली बात कह दी,
9: हाँ।
8: कहीं गुरूर वाली बात कह दी आपने, ठीक है, और कहीं परेशानी आपने झलका दी, इंसानी जो एक परेशानी है उसको झलका दिया, तो इस स्तर में बढ़ता गया। तो अब आज के टाइम पे ऐसी कोई ब्रांच नहीं है कि आप उसको छोड़ सके, ठीक है, जैसे पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं ऐसे ही अब लिखने की अलग अलग शाखाएं, आप जिस मर्जी टॉपिक पर लिख सकते हैं।
9: 100%
8: तो ये डिपेंड करता है लिखने वाले पे, वो किस तरह से किस बात को बयां करता है। बस ये है एक फाइनल एम हर राइटर का, ये रहता है कि वो सामने सुनने वाले तक पहुंच जाए।
9: वेरी गुड यार, एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें भाई।
8: बिल्कुल बिल्कुल,
9: चलो जी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। अब बातें चल रही हैं इतनी खूबसूरत आज की शाम, और ये महफिल और भी खूबसूरत होगी क्योंकि राघव जी हमारे बीच में है, अखिल भैया भी है, तो कुछ शेर व शायरी करेंगे, कुछ उनकी दिल की बात सुनेंगे। फिलहाल आप सुनिए ये दिल से जुड़ा गाना, लौट कर आते हैं थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन जी. राघव जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में. आई एम श्योर आपको भी आनंद आ रहा होगा आनंद के साथ.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपके नाम के साथ ये महफिल सूट कर रही है. बिल्कुल,
0: चलो बहुत अच्छी बात है. फिलहाल तो सूट कुछ और नहीं कर रहा है, वो जो लैपटॉप लेके भैया ऑफिस में नाच रहे हैं ना भैया, भरतनाट्यम मत करो, हम आज शेर व शायरी सुनेंगे. सो आगे बढ़ते हैं राघव जी. अब जो है मैं चाहूंगा कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो ऑफकोर्स आप खाली हाथ तो नहीं आते हो यार मेरे ऑफिस में, कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हो. तो आज की शाम जो है आप क्या लेकर आए हो मेरे लिसनर्स के लिए, हमारे एफएम मुरादाबाद के श्रोताओं के लिए, क्या आप सुनाने वाले हो?
1: जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक बहुत फेमस पोएट है
0: जी,
1: जवाद शेख
0: जी,
1: पाकिस्तान के हैं
0: जी,
1: उनकी कुछ लाइनें मेरे जहन में आ गई थी.
0: अरे वाह.
1: तो मैं अभी आपने जस्ट पूछा तो मैं उनको ही कहता हूँ कि
0: सो राघव भाई की जो बात है ना वो मैं डेफिनेटली पूरी सुनना चाहूंगा और जरूर सुनूंगा. लेकिन उससे पहले ये जो हवा हवा है, इन्होंने कहा भैया मेरा माइक रेडी है तो जरा मेरे को तुम थोड़ा सा बोलने का मौका दो. तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए आप कैसे हैं.
2: धन्यवाद आनंद जी, आपने इतना बेहतरीन स्वागत किया है
0: जी.
2: हवा हवाई हमें बोल के बिल्कुल याद दिला दिया है कि एक आप ही हैं जिन्होंने नया नाम रख दिया है.
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज आप कभी गाड़ी में, कभी गाड़ी के बाहर, कभी स्कूटी में, कभी अपने जंक्शन पे, कभी हमारे स्टेशन पे, तो इतने सारे बंदे, एक ही बंदा इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होगा तो उसका नाम तो यही होना चाहिए यार भाई.
2: तुम नाराज हो तो ये दिल उदास है,
0: आय हाय हाय.
2: तुम पास हो तो हर लम्हा खास है.
0: अरे वाह क्या बात है.
2: तुम ही है ये जिंदगी मेरी, तुम बिन हर खुशी बेकार है.
1: वाह
0: वाह वाह वाह, क्या बात है
1: सर.
0: तो ये खुशी किसके लिए बेकार है, भाभी जी के लिए या अपने लिए, आप किसके लिए बोलना चाहते हो?
2: कुछ तो सरप्राइज है ना, तुम तो यहाँ पे भी जो है
0: टांग खींच रहे हो.
2: यहाँ भी
0: देखो ऐसी बात है, जब शेरो शायरी या पोइट्री चलेगी तो भैया उसमें तो पता चलेगा किसके लिए कौन क्या बोल रहा है.
2: दोस्तों और... मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, ये जो जग्गा जासूस है ना ये हमारा आनंद ही है.
0: नहीं देखो ऐसा है ना, मैं चाहता हूँ कि अंदर की बातें भी थोड़ी सी बाहर आ जाए. जब जब बात दिल तक पहुंच जाती है तो जुबा पे भी आ जानी चाहिए. क्यों राघव भैया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और का तो काम ही यही है.
0: एब्सोल्युटली यार. तो राघव भैया मैं थोड़ा सा आपसे भी सुनना चाहूंगा, आपकी तरफ हम शिरकत करेंगे, कुछ आप भी पेश कीजिए जनाब
1: जी. वो जो लाइन थी,
0: हाँ, मुझे लगता है कि शायद आ गई है.
1: हाँ,
0: में वापस,
1: जहन में वापस.
0: प्लीज हम उसका इजहार
1: शेख कहते हैं कि
0: जी
1: आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं.
0: अरे वाह.
1: आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं
0: जी,
1: मगर ऐसा ना कहिए वफा कुछ भी नहीं.
0: अरे वाह.
1: मगर ऐसा ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं. आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर.
0: वाह.
1: आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर इस ताल्लुक में अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं.
0: क्या बात है.
1: बहुत कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं.
0: क्या बात है.
1: हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं. अब क्या मैं अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं, मान लेता हूं शख्स में था कुछ भी नहीं. और मैंने दुनिया से अलग रह के भी देखा जवाद, ऐसी मुजोर उदासी की दवा कुछ भी नहीं.
0: अरे वाह.
1: ऐसी मुजोर उदासी की दवा.
0: फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया.
1: ये बहुत मुझे पसंदीदा गजल लगती है जवाद शेख की. और एक आपको आज के टाइम का पता होगा, जो कोर्स चलता है वो सेमेस्टर वाइज चलता है.
0: करेक्ट.
1: ठीक है. और वहां मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैं तब नैनीताल में रहता था मास्टर्स डिग्री के लिए, तब मैंने

0: झांक कर देखो, दिख जाएगा आशिक तुम्हारा, बस आज आज के लिए अनब्लॉक कर दो, आज जन्मदिन है तुम्हारा।
1: क्या बात है, बहुत ही शानदार। मुझे लग रहा है कि आज राघव जी चुन चुन के आपके लिए शेर व शायरी लेकर आए। गाइस, अगर आपके पास भी कुछ अच्छी थॉट है, अच्छी शायरी है, तो डेफिनेटली आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं एफएम मुरादाबाद की ऑफिशियल आईडी पे। एफएम मुरादाबाद 9.6 की ऑफिशियल आईडी है, वहां जाके आपको जो भी लगता है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप जरूर शेयर करें। तो राघव जी आगे क्या क्या कहती है आपकी शेर व शायरी?
0: आपने ये देखा होगा बहुत से लड़के या बहुत से प्रेमी अपनी प्रेमिका को पसंद करते हैं, तो अगर वो डिनाई करते हैं सामने से, प्रेमिका डिनाई करती है, तो पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन एक मेरी कोशिश देखिएगा, मैंने लिखा कि मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो, मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो, ये तुम्हारी मर्जी, तुम जिसके साथ में रहो, वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना, वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना, मैं तो यही चाहूंगा तुम फायदे में रहो।
1: अरे क्या बात,
0: मैं तो यही चाहूंगा तुम फायदे में।
2: बातों पे एक बात याद आ रही है,
1: स्वागत जी, स्वागत है,
2: मतलब थोड़ा ऐसा है, अटपटा सा है, मगर चलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सच्ची मोहब्बत चेहरे से नहीं होती, मतलब जो आजकल मोहब्बतें चल रही है ना
0: जी,
2: वो आजकल लाइक वाइक तभी मिलते हैं जब आपके सामने चेहरा बिल्कुल एकदम गोरा हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सच्ची मोहब्बत चेहरे से नहीं होती,
0: नहीं होती।
2: सच्ची मोहब्बत दिल से होती है, वो जो बिना कहे समझ जाए हर दर्द, वही तो असली हमदर्द होती है।
0: वाह
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। उस हमदर्द को अपने पास रखना थोड़ी देर, नहीं तो मुझे दर्द हो जाएगा आपकी शायरी सुन के। तो एक काम करते हैं गाइस, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। आप सुनते रहिए आपकी शायरी का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। ये महफिल ऐसी जमती रहेगी, कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: Once again, welcome back है जी, एक बार फिर से आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में महफिल जमा रहे राघव जी। राघव जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरे को दिमाग से आउट हो रहा है।
1: ये मैं राघव गुप्ता लिखता हूँ।
2: अच्छा, गुप्ता जी, हमारे गुप्ता जी,
1: क्या देश के अच्छे नागरिक बनिए।
0: बहुत ही बढ़िया। और गुप्ता जी, जब यहाँ पर पधार रहे हैं तो वो बढ़िया बढ़िया शेर व शायरी से जो है आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो गाड़ियों में अगर आप हैं गाड़ियों में तो वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ा लो, कुछ अगला और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे उनके चेहरे की स्माइल से लग रहा है कि कुछ तो तगड़ा सुनाने वाले हैं राघव जी।
1: एक बहुत कॉमन चीज आपने देखी होगी, अगर व्हाट्सएप पे हम या फेसबुक पर होते हैं तो सबसे पहले हम किसी की प्रोफाइल चेक करते हैं, तो डीपी जो डिस्प्ले प्रोफाइल है वो देखते हैं।
0: तो आजकल हालांकि उसका स्क्रीनशॉट लेना अब अलाउड नहीं है, अब आप ले नहीं सकते हो, बंद हो गया, सिर्फ अंधेरा आएगा, पिक्चर नहीं आएगी।
1: लेकिन डीपी अगर अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो डीपी दिख जाती है।
0: करेक्ट।
1: तो है कि इंसान दिल का कमजोर है मगर मकान पक्का बना लिया।
0: क्या बात,
1: इंसान दिल का कमजोर है मगर मकान पक्का बना लिया। वो जब मेरे साथ था तो सबसे छिपाया, वो आज जिसके साथ है उसे डीपी बना लिया।
0: अरे
2: किसने बनाई डीपी, अब ये राज खोल ही दो।
0: लेकिन यार राघव जी, जो आपने बात बोली ये एक्चुअली बिल्कुल सच्चाई से रूबरू करा देती है। आपकी सारी बातें, सारी जितनी भी आप बातें बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एकदम रिलेटेबल है। ऐसा लग रहा है कि आपने चीजों को सोच सोच के लिखा है। ये आपने खुद ने लिखा है?
1: जी बिल्कुल, मेरा ही लिखा है।
0: अरे वाह, क्या बात है, सकता ओरिजिनल है इसका मतलब।
2: बिल्कुल,
0: बहुत ही बढ़िया। अब और क्या कुछ स्पेशल सुनाने वाले हो?
1: और मुझे मालूम है हर कोई जिंदा रह जाता है।
0: जी,
1: मुझे मालूम है हर कोई जिंदा रह जाता है जुदा होने के बाद किसी के बिना, जैसे तारे निकल आते हैं आसमान में चांद के बिना।
0: क्या बात,
1: मुझे आज उसका एक खत आया है जिसमें लिखा है, राघव मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना।
0: वाह,
1: राघव मैं खुश नहीं हूँ।
0: क्या बात है,
2: जी लिखना भूल गई वो उसमें।
0: यार लेकिन मानना पड़ेगा राघव जी, आपकी बातें और आपके अल्फाज एकदम मतलब दिल को छू जा रहे हैं। गाइस आपको भी मजा आ रहा है ना?
2: बहुत
0: ही बढ़िया।
1: आप, मुझे ऐसा लगता है फिर आपने भी कहीं ना कहीं स्टेज पे कुछ ना कुछ इनमें से जो मैंने कहा है वो कहीं ना कहीं आपने
2: इनके साथ
1: फेस किया होगा।
2: इनके साथ तो हर बार फेस करते ही आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है ना, जब आदमी बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो चीजें उसके साथ धीरे धीरे चल रही होती है। क्यों राघव जी?
1: बिल्कुल,
0: समय के साथ हर किसी के साथ होती है।
1: बिल्कुल,
0: और ये जो समय है ना ये दोबारा नहीं आने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम में आपको जो चीज मिल रही है ना उसका आनंद उठाओ।
2: आनंद जो तुम्हारी
1: आनंद उठाओ की बात से याद आया कि आपको ना हर चीज के लिए व्याकुल नहीं हो जाना है।
0: ये भी
1: जो जीवन में घट रहा है उसके पीछे आपको पढ़ने ही जाना है, उससे समझौता आपको करना ही होगा, मन को आपको समझाना होगा। ठीक है, और इसीलिए शायद लिसनर्स के सामने हम हैं जो हमें सुन पा रहे हैं।
2: आनंद आनंद जी के मन की बात मैं थोड़ी सी पढ़ पा रहा हूँ। आनंद जी कहना चाह रहे हैं, रूठना भी जरूरी है मोहब्बत में,
0: अरे वाह,
2: तभी तो मनाने का मजा आता है।
0: अरे वाह,
2: जो बिना कहे समझ जाए दिल की बात, वही तो सच्चा हमसफर कहलाता है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपके हमसफर से मैं आज ही बात करता हूँ। आपकी तरफ आना चाहूंगा। जी, आप प्लीज कुछ सुनाइए बढ़िया सा। और यार माहौल वैसे इंटरेस्टिंग बना हुआ है, नो डाउट, बहुत अच्छा लग रहा है राघव जी। गाइस अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पर्सनली राघव जी से भी जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम आजकल बहुत वायरल हो रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा एक बार आप बता दें अपना इंस्टाग्राम भी, भाई जरूरी है।
1: जी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यूजर नेम है adv.raghavgupta।
0: अच्छा, मतलब अपना प्रोफेशन सब कुछ उसमें ऐड कर दिया आपने। शॉर्ट शॉर्ट
1: मल्टीपल पेजेस नहीं बनाए, मैंने एक ही पेज बनाया।
0: वेरी नाइस यार, वेरी।
1: तो adv.raghavgupta, और अगर आप सर्च करेंगे एडवोकेट राघव गुप्ता से तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाऊंगा।
0: दैट्स वेरी नाइस।
1: वरना आप आनंद जी को मैसेज भेजिएगा, एफएम पर पढ़कर हमको बताएंगे जरूर।
0: अरे डेफिनेटली बताएंगे, उसके लिए आपको सुनना भी तो पड़ेगा।
1: मैं सुनता हूँ सर, मैं सुनता हूँ सर।
0: अब आप ये मत बोलिए, पड़ोसी भी सुनता है मेरा, इसलिए
1: ये सच बात है। मैंने आपको अभी ऑफ माइक भी बताया था, मैंने अभी आपको
0: ये एक दो बार और आपने बताया हम कहीं शादी में। हम मजे की बात पता है क्या है गाइस, इनकी बात रोक के कह रहा हूँ मैं, हम जब भी मिलते हैं किसी दावत में मिलते हैं, पहले तो खाली में नहीं मिलते हैं। ये आई डोंट नो, ये हुआ है हमारे साथ राघव जी एक दो बार।
1: ये इत्तेफाक है कि जब भी मैं आपसे मिला हूँ तो आपने मुझे खाने का सौभाग्य प्राप्त कराया है।
0: इसका मतलब ये है कि आज हम खाने का सौभाग्य बिल्कुल आपको प्राप्त कराएंगे। आप आए हैं
2: जो पार्टी है वो आनंद जी जो है, मतलब
0: मैं भी नहीं दे रहा हूँ, तो वो हम शादी में मिल रहे होते हैं।
1: हमारा बॉन्ड ही ऐसा है ना,
2: दोनों का लिफाफा एक हो जाता है उस समय।
0: नहीं यार वो बात अलग है, नहीं ऐसा नहीं होता। राघव जी का अपना होता है, मेरा अपना होता है, वो बिल्कुल नहीं है। और
1: खाली अपनी अपनी है लिफाफा।
2: देखिए साहब, कैसे आप सभी लोग सुन रहे हो, इस बात को कैसे छुपाया जा रहा है ये आप आज सब जान सकते हैं कि आनंद ने और गुप्ता जी ने दोनों ने कैसे इस बात को एकदम पानी डाल दिया।
0: बिल्कुल भैया, और आप जो है पानी डाल के आग मत बुझाओ, माहौल को गर्म ही रहने दो अभी। सो राघव जी, अभी आपने बताया ना मुझे एक दो शादियों में बताया था कि आपके पड़ोसी भी रेडियो सुनते हैं।
1: बिल्कुल, मैं जहाँ रहता हूँ टाउन हॉल जगह है मुरादाबाद में, तो वहाँ पर ही मेरा निवास है, उसके बराबर में एक परिवार है, तो वो मतलब मॉर्निंग में आठ साढ़े आठ के आसपास जब मैं 9 बजे करीब निकल रहा होता हूँ घर से ऑफिस के लिए, तब मैं सुनता हूँ कि आपकी आवाज आ रही होती है। तो मैंने एक बार कहा भी है, बराबर में जो पड़ोस में बड़े भैया हैं, तो उनको बताया था मैंने कि ये हमारे मित्र हैं और काफी अच्छा बोलते हैं आरजे आनंद जी, ठीक है। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आपको परिचित हूँ।
0: ऐसा होता है भैया ऐसा, क्योंकि जो लोग सुनते हैं ना जब आप उनको बताते हैं उनको लगता नहीं है थोड़ा,
1: पर वो डेली आपको सुनते हैं।
0: क्या
1: मॉर्निंग में वो डेली सुनते हैं, आप शाम कुछ एफएम यूज करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है ना थोड़ा पुल होता है।
0: एब्सोल्युटली, ठीक है। और तो, बंदे को अपडेट चाहिए होती है।
1: हाँ, भाई, बिल्कुल,
0: एकदम से वो क्या होता है ना न्यूज पेपर खोलने का मन नहीं करता, तो उसने अपना ट्यून कर दिया और अपने काम काज में
1: वो, हाँ बिल्कुल, गृह कार्य करते हुए आपको सुन लिया, ये हो रहा है।
0: बड़ी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं राघव जी, हमें स्टूडियो से बाहर भगाने की इरादा है क्या?
1: नहीं,
0: मतलब इतनी बढ़िया हिंदी आप बोलोगे तो कल ऐसा ना हो कि बॉस बोले बेटा आनंद तू बाहर, राघव जी तुम अंदर आओ, तुम्हारा टिकट जो है बाहर का है, मतलब इतना बढ़िया।
1: आप राघव गुप्ता देख के राघव चड्ढा समझे क्या?
0: अरे नहीं यार, राघव चड्ढा तो उनकी बात ही मत करो यार। चलो बैक टू पॉइंट यार, बातचीत के साथ साथ जो है
1: पॉलिटिकल टॉक्स,
0: समझदार है आप, समझ गए मेरी बात को। सो बैक टू पॉइंट, अब एक काम करते हैं, कुछ बढ़िया सा सुन लेते हैं राघव जी से, और मैं चाहूंगा कि यार हमारे लिसनर के लिए कुछ बढ़िया सा सुना दो यार, जो लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। और आजकल ना मुरादाबाद के अंदर एक समस्या बड़ी हो रही है जाम की, शाम को जब आप सड़कों में निकलेंगे तो तगड़ा जाम मिलता है, तो ऐसे में वो आपकी आवाज
1: वो तो कॉमन है ना, शाम को तो जाम चलता ही है,
0: वो तो चलता ही है। ओ माई गॉड, समझ गया मैं, हाँ थोड़ा सा ना समझ हूँ बट अब समझदार बन गया हूँ मैं। हाँ तो कुछ सुना दो यार हमारे लिसनर्स के लिए बढ़िया।
2: पूरा बोल लेना ट्रैफिक जाम।
1: ट्रैफिक जाम, यस बिल्कुल।
0: अखिल जी आपकी बातों ने जो है ना हमें भी थोड़ा सा पूरी बात कहना भुला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि जब एक प्रेमी के अंदर दर्द होता है ना और वो इस स्थिति में होता है या उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है वो और भुला भी नहीं पा रहा है, तो उस एक स्टेज में लिखा था मैंने कि तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, हिजर के दिन भी हमने जुदाई की बात नहीं की, तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, हिजर के दिन भी हमने जुदाई की बात नहीं की, क्या इतने गैर हो गए हम तेरे लिए, करीब से गुजरे तो तूने बात नहीं की, करीब से गुजरे तो तूने बात नहीं की, और कोई कैसे कोई इतना करीब आ गया तेरे, तू तो कहती थी ना किसी से बात नहीं की, तू तो कहती थी ना किसी से बात नहीं की, और लग जाए सर के बल चोट हमें, लग जाए सर के बल चोट हमें, भूले तुझको जैसे कभी बात नहीं की, भूले तुझको जैसे कभी बात नहीं की।
2: बहुत ही बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रेमी को समझ नहीं आ रहा कि वो डोलो खाए या डिस्प्रे। दर्द बहुत है,
0: क्या बात है। अखिल जी आप भी कुछ बढ़िया सा सुना दीजिए।
2: मोहब्बत की राहों में क्या क्या सितम सहते हैं, हम तो तैयार बैठे हैं साहब, आप जी, जी, बस बोलो सुना दो, हम तो एकदम
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सेवा में।
2: हाँ, गूगल बाबा को लेके बिल्कुल सामने बैठे। मोहब्बत की राहों में क्या क्या सहते हैं, जो प्रपोज करते हैं वही ब्लॉक भी रहते हैं, जिन्हें प्रपोज कर दिया वही ब्लॉक हो जाते हैं।
0: अगली बार
2: वो कहती थी तुम ही हो मेरी दुनिया, अब वही स्टेटस लगाती है फीलिंग सिंगल अगेन।
0: चलिए मैं आपसे बाद में पूछूंगा कौन है जो आपके लिए सिंगल बैठी है। आगे बढ़ते हैं। तो श्रोताओं देखिए, राघव जी के साथ यानी राघव गुप्ता जी के साथ हमारी जो ये कॉन्वर्सेशन है वो चलती रहेगी, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो इमिडिएटली इंस्टाग्राम पे आके आप हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं बहुत ईजी है, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से आपको मिलता हूँ, डोंट फॉरगेट, वहां भी अच्छी चीजें आपके लिए चलती रहती हैं, तो फॉलो कीजिए, ऑफिशियल पेज मिलेगा एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से। कोई आपके आसपास है जो ऐसी शेरो शायरी करता है या कुछ बढ़िया लिखता है तो उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म खुला है, आप हमें इंस्टेंट डीएम करिए और हम जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: वेलकम बैक है, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, शाम हो रही है, आई नो दैट आपकी जो शाम है वो और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं साथ में राघव जी हैं, अखिल भैया हैं, और हम तीनों लोग मिलकर आपको थोड़ा सा प्यार वाला एहसास भी दिला रहे हैं। उनकी पोएट्री, उनकी जो शायरी है वो कहीं ना कहीं आपको फील दे ही रही होंगी, बाकी हमें भी फील आ ही रहा है यार। मतलब अब तो लग रहा है कि यार प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन प्यार में जब दिल टूटता है उसकी फीलिंग अलग होती है। वैसे राघव भाई आपका क्या मानना है, लाइफ में कुछ लोग कहते हैं एक बार दिल जरूर टूटना चाहिए,
1: मुझे ऐसा
0: मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं
2: वो नाम
0: लाइफ में ना एक बार दिल जरूर तोड़ना चाहिए। मैंने क्या कहा है वो डॉक्टर जो कहते हैं दिल में हड्डी नहीं होती, फिर उनसे भी मिलो। आपको क्या लगता है अखिल भाई, सच में
2: दिल टूटना तो नहीं चाहिए, दिल लगाना जरूर चाहिए लाइफ में एक बार,
0: लेकिन जब जो दिल लगाते हैं ना उसका दिल टूट भी जाता है।
1: देखिए मुझे ऐसा लगता है कृपा ना अलग अलग प्रकार की होती है जो भगवान आपके ऊपर देते हैं। आपको प्रेम होता है ये अलग प्रकार की कृपा है, और आपका दिल टूटता है अलग प्रकार की कृपा है। लेकिन अगर आप चाहे प्रेम में हो या दिल टूटा हो, आपको अपने आप को बनाना ही होगा। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप उसको अपने आप को डिमोलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है।
0: एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ लोग ना इतना सीरियस वाला प्यार कर लेते हैं कि वो एक ही बंदे में पूरी दुनिया बसा लेते हैं राघव भाई, और वो बाद में बड़ा उनके लिए बहुत तकलीफ वाला होता है।
1: और वो इसके आगे की अगर मैं आपको बात बताऊं, सामने वाले को और तकलीफ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई प्रेम है, ठीक है, एक फीलिंग तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे की लाइफ की केयर बहुत जरूरी है।
0: करेक्ट यार, मतलब मुझे लगता है कि देखो हम प्यार कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला अगर नहीं इतना इंटरेस्टेड है तो हमें भी हम उसे प्यार समझ के भी छोड़ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: बुलाया जा सकता है, बट वही होता है ना कि कई बार ऐसा लगता है हम खुद भी परेशान हैं, कोशिशें करते हैं कि शायद चीजें सही हो जाए, बट हमें पता है कि वो होंगी नहीं, उसके बावजूद भी हम मशक्कत करते रहते हैं कि शायद।
1: देखिए आपकी फीलिंग एक अलग साइड है, लेकिन दूसरे की जो सोच है या दूसरे का जो डिसीजन है उसकी रेस्पेक्ट एक बहुत जरूरी है।
0: गॉट इट यार।
2: पहली मोहब्बत की खुशबू भी अजीब होती है।
0: वाह।
2: दिल धड़कता है मगर बात नसीब होती है।
0: वाह वाह वाह।
2: वो नाम सुनते ही मुस्कुराना पड़ता है
0: जी,
2: क्योंकि पहली मोहब्बत कभी गरीब नहीं होती है।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तभी मैं कहूँ आपके पास इतनी बड़ी कार कैसे है, समझ चुका हूँ मैं। मतलब पहली मोहब्बत इनकी बहुत अमीर वाली थी, समझ क्यों हूँ मैं अखिल भाई।
2: अमीरी,
0: आज अमीरी मैं कली मिली भाभी से मिलता हूँ, मैं कली भाभी से मिलूंगा।
2: भाभी पे क्यों पहुंच जाते हैं,
0: जरूरी है ना इतनी सारी मोहब्बत।
2: तुम्हें मुस्कुराता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं?
0: नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, वो बात अलग है, वो बात अलग है।
1: इस कन्वर्सेशन में भी ना भाभी जीत गई। हाँ डर तो डर दिख रहा है ना, तो भाभी जीत गई।
0: वो कुछ सुन रही हूँ, नहीं पता है, डर तो है। आज घर पे आ जाओगे फिर शाम को तो सारी अमीरी और गरीबी एक साथ ही होगी।
1: तो आप
2: डर के आगे जीत है।
1: आरजे आनंद जी, अब आप इस एंगल से देखिए कि जो भाभी प्रेम करती है भैया से
0: जी,
1: वो कितना खुश हो रही होंगी ना।
0: करेक्ट,
1: उनका प्रेम तो जीत गया ना।
0: बिल्कुल, चलिए भाभी जी हमने आपकी भी तारीफ करी दी, और बाकी
1: कुछ लाइन सुनाने के लिए
0: मैं यही कह रहा था,
2: ये जो इनके पास जो घर में भाभी रहती है उन्हें मना
0: नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अभी ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, जो लोग अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, जो हस्बैंड अपनी बीबी के साथ जा रहे हैं, उनके लिए कुछ बढ़िया सा हो जाए।
1: बिल्कुल, मैं सारी सुंदर कन्याओं के लिए, और जो पति हैं अपनी पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ बैठे हुए, तो उनकी तरफ से उनके लिए
2: प्रेमिका के साथ बैठा दिए।
0: नहीं मतलब एक बार बताओ, शादी के बाद हमारी बीबी हमारी प्रेमिका नहीं हो सकती यार? आकर
2: गाड़ी
0: यार कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये तो गलत बात है यार।
2: ये गाड़ी जो है मतलब पहुंचाना चाहता
0: मैं आपकी बात पे यहीं पे मैं अखिल जी, अखिल भैया आपकी बात पे कहना चाहता हूँ। आपने बोला क्या आपकी बीबी आपकी प्रेमिका नहीं है, है?
2: अब आप बोलते हो,
0: चलो राघव जी शुरू करते हैं यार प्लीज। यार
1: एक बहुत सुंदर मैंने लाइन लिखी थी, वो आपने याद दिलाया बस, कि हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे। हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे।
0: वाह,
1: तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे, मेरे शौक वैसे इतने खास तो नहीं, मगर हाँ हम तुम्हें अपना जरूर बनाएंगे। मगर हाँ हम तुम्हें अपना जरूर बनाएंगे, और मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने वाले, मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने वाले, तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे। तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे, और कोई तस्वीर जमाने में उदासीन दिख गई तो फिर, कोई तस्वीर जमाने में उदासीन दिख गई तो फिर, तेरी चमकती मुस्कुराहट का हिस्सा उसमें लगाएंगे, और फूल लगाकर घर की रौनक नहीं बढ़ाऊंगा। आनंद जी, फूल लगाकर घर की रौनक नहीं बढ़ाऊंगा, हम तेरे दुपट्टे से अपना कमरा सजाएंगे।
0: आनंद जी मुझसे पहले ख्याल में खोया हुआ था यार,
2: तुम शायरी सुनते खो जाते हो ना।
0: अरे यार
2: मैं बस इनसे यही कहूंगा कि जी, जो अभी इन्होंने बात कही
1: मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने,
2: नहीं मिट्टी के बर्तनों से पहले वाली बात जो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बात बोली थी,
1: तेरे जन्मदिन की खुशी,
2: तो ये अपना जन्मदिन भले ही भूल जाना

0: शादी के बाद मगर बीवी का जन्मदिन मत भूलना कभी भी।
1: आपने कितनी बार याद रखा यार ये बता दो।
2: तो और सर इसके आगे बोल दीजिए,
0: लिखवा लिया टैटू बनवा लिया उसका।
2: इसके आगे बोल दीजिए जनहित में जारी।
1: मैं आज इनका टैटू इंस्टाग्राम पे रिवील करता हूँ, है भी या नहीं।
0: भाभी के लिए कुछ नहीं बोले, भाभी के लिए मैं बोल देता हूँ।
1: अच्छा आप ही बोल दो,
2: हमारी भाभी के लिए
1: राघव जी। मैं अच्छा हमारी भाभी के लिए या
0: नहीं, जनरल भाभी
1: जितनी भी लोग तो राघव जी काम करते हैं और आप बाहर निकलते हैं, जूते अगर पड़े तो हम दोनों बच जाएंगे, बेटर यही है। तो आप प्लीज
2: सेफ्टी बहुत
0: जरूरी है। आनंद के भी बोल हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ।
1: हाँ हाँ प्लीज।
0: भाभी का प्यार भी अजीब होता है,
1: अरे वाह,
0: डांट में भी मिठास करीब होता है, राखी सही पर खास होता है, घर में वो खुशियों का आकाश होता है।
2: क्या अलग एंगल में मोड़ दिया सर।
1: नहीं समझदार है, मुझे पता है। अच्छा राघव जी मैं बस जाते जाते आपसे एक चीज पे बात करना चाहूंगा, मतलब अगर आप इसमें कुछ कह सको कि आजकल ना लोग रिश्ते दिल से नहीं, उनका वो फायदा देखकर रिश्ते निभाते हैं। अब जो है रिश्तों में फायदे ज्यादा हो गए और प्यार थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब जो जेन्युइन चीज मुझे लगती है अब, जैसे आजकल सुपर
2: बेनिफिशियरी रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं।
1: करेक्ट करेक्ट वही वाला। तो उसके ऊपर कुछ अगर आप कहना चाहें मैं चाहूंगा, क्योंकि आजकल ये हो रहा है नो डाउट।
2: बिल्कुल ऐसा है। एक हमने लिखा था, देखता हूँ कितनी आपकी बात से बात पे, एक मैंने लिखा था देखता हूँ कितने आपकी बात पर फिट बैठता है कि
1: जी
2: हमें छोड़कर तुझको जो मुनाफा हुआ, हमें छोड़कर तुझको जो मुनाफा हुआ
1: जी,
2: दुगना करो ये शख्स फिर तुम्हारा हुआ।
1: क्या बात है,
2: दुगना करो ये शख्स फिर तुम्हारा हुआ, कैद रखिए अपनी निगेबानी में हमें, वसूल लीजिए अगर तुमको कोई खसारा हुआ।
1: क्या बात है,
2: कैद रखिए अपनी निगेबानी में हमें, वसूल लीजिए अगर कोई खसारा हुआ, कर लेंगे खुद को हम खत्म तेरे लिए, हमारे लिए तू शख्स इतना प्यारा हुआ, और बता हमसे ज्यादा ख्याल रखता है क्या, वो रकीब जो तेरा नया सहारा हुआ, वो रकीब जो तेरा नया सहारा।
0: बहुत खूब,
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और ये जो शेरो शायरी का सहारा ही आप हमें देते रहिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसी अच्छी अच्छी पोएट्रीज और शायरियां, अपने दिल के जज्बात हमारे रेडियो श्रोताओं तक जरूर शेयर करते रहेंगे। आपको कैसा लगा राघव जी आकर स्टूडियो?
2: मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो जुगलबंदी हम तीनों की बैठी है बहुत अच्छा लगा।
1: नहीं आपकी और राज की तो बैठती रहती थी, बट आज थोड़ा सा चेंज हो गया है
2: जी। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आपने एकदम खट्टा मीठा एक,
1: वो तो हमारे अखिल भाई की क्रेडिट है इसमें। थैंक यू सो मच अखिल जी, आप सोचने जाते जाते भी कुछ चिपका दूं तो वो बात अलग है। फिलहाल अब हम इस रैप अप करेंगे अपने शो को, तो
2: जाते जाते बस इतना कहूंगा कि कैंडल पिघल रही है तुम कब आओगे, हमारे केक की मिठास तुम कब बढ़ाओगे, तुम्हारे बगैर ही गुजर रहे हैं जन्मदिन सारे, तुमने क्या सोच रखा है सीधे मौत पे ही आओगे। बहुत
1: बहुत ही बढ़िया राघव जी, थैंक यू सो मच जी। अखिल जी आप प्लीज कहिए।
0: मैं तो कहता हूं धमाकेदार, बहुत ही बात एकदम, मतलब आपने गहरी सोच, मतलब दिल से एकदम गहरेपन से निकाल के गई है
1: राघव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि अगली बार भी आप अपने दिल के पन्नों से ऐसी ख्याल शेरो शायरी करते रहें और लाते रहें, और हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपने जो ये एक बहुत ही अच्छा अपना एक प्लेटफॉर्म चुना है बेसिकली, क्योंकि यार मुझे लगता है पढ़ना हर किसी को आता है लेकिन लिखना हर किसी को नहीं आता।
2: बिल्कुल सर,
1: करेक्ट, जो लिखता है वही एक कलाकार होता है, क्योंकि कॉन्टेंट किसी का चुरा के तो कोई भी पेस्ट कर देगा, लेकिन खुद से क्रिएट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
2: तो थैंक यू, और आरजे आनंद जी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और मैं थैंकफुल हूँ FM मुरादाबाद का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। हर मेरे को यहाँ पर, मैं जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा प्लेटफॉर्म मुरादाबाद में है हमारे पास, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लिसनर से भी कि बने रहें, सुनते रहें 89.6 मेगाहर्ट्ज FM मुरादाबाद, और साथ ही जो भी कोई यहाँ पर सुनाना चाहते हैं, अपने आप को पेश करना चाहते हैं, तो ओपनली आप आरजे आनंद जी से कॉन्टेक्ट कीजिए, और मेरी जगह एक दिन वो भी होंगे।
1: जरूर जरूर, हम तो चाहेंगे साथ में बिठाएंगे भाई, हो सकता है राघव जी भी आपके साथ बैठे और आप मिलकर एक धमा चौकड़ी मचाओ। तो वही बात मैं भी अगेन रिपीट करूंगा, अगर आपके पास भी कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, स्पेशली शेर और शायरी का, आप लिखते हैं या आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आपका स्वागत है FM मुरादाबाद स्टेशन में। आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, FM मुरादाबाद 89.6 हमारी ऑफिशियल आईडी है, वहां जाके आप हमें बता सकते हैं आपकी जो भी आपके पास टैलेंट है, आप प्लीज हमें मैसेज कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं 9837896896, ये स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप हमें अपनी जो भी आपके अंदर टैलेंट है अपनी चीजें हमें शेयर कर सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच इस सेशन को खूबसूरत बनाने के लिए राघव जी, आप दिल से धन्यवाद। आपका भी
0: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी,
2: आपने
0: एकदम आनंद मैं कर दिया इस पूरे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अब जो है हम सब अपने अपने घरों के लिए रवाना होंगे
2: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में कुछ और नई बातों के साथ, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो बजाते रहिए
0: गुनगुनाते
1: रहिए, बाय बाय।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे FM मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू FM मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
8: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
7: थैंक यू सर,
8: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
7: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
8: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
7: क्या बात है।
8: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
7: जी जी, प्लीज।
8: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
7: ब्यूटीफुल।
8: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
7: वाओ।
8: उसके बाद मैंने किया है DM नियोटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
7: क्या बात है।
8: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोटोलॉजी है क्या?
7: जी,
8: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
7: हाँ जी।
8: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
7: हाँ जी।
8: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
7: Alright.
8: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
7: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
8: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
7: जी, जी।
8: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं।
7: जी, जी, जी, जी।
8: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
7: जी, जी, जी, जी।
8: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
1: ओके सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
8: हाँ डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है मतलब नॉर्मली क्या होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी है
1: हाँ जी,
8: तो
1: हाँ
8: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन वन आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
8: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
1: ऑलराइट,
8: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: जी हाँ जी,
8: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन
1: रहता है,
8: बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
8: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सिजेरियन डिलीवरी से होता है
1: तो जी जी।
8: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
1: ओके
8: ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
8: बेबी को 2-3 आवर्ली इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
1: हैं उनको
8: नहीं पता होता है, वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
8: तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: Okay.
8: क्योंकि क्या होता है अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ
8: उसमें
1: हाँ
8: हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाए ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए।
1: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
8: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चे तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
8: है ना,
1: बिल्कुल।
8: वो कॉमन कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: कोई रीजन कोई कारण मतलब जिससे पता,
8: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
8: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है, बहुत
8: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमें मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो, ठीक है। और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर, आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
7: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
8: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
7: जी,
8: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है,
7: हाँ जी हाँ जी,
8: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
7: हाँ जी हाँ जी,
8: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
7: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
8: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
7: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
8: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेरेंट्स पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
7: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा। श्योर, और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश देंगे जाते जाते?
8: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
7: हाँ जी।
8: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है? अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
7: हाँ जी हाँ,
8: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है, और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीज देखने को मिलती है तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखें। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
7: बिल्कुल सही कहा,
8: क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
7: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू, और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
9: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
10: टायर लो सोना जीतो।
11: क्या?
10: जी हाँ,
12: चावला टायर
10: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए।
12: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
13: अपोजिट
12: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
13: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 9:14 हो चुके हैं और आज के शुरुआत में एक शायरी से करना चाह रही हूं। आखिरकार ये शायरी बोलने का और इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी हम आप सभी को बताने वाले हैं, यानी कि उनकी बहुत प्यारी शायरी है। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना होना। यानी कि दुश्मनी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए जब एक अंतराल के बाद मिलते हैं तो। जमाने अपनी यादों के हमारे हाथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। यानी कि ये जो आपने प्यारी शायरी सुनी है, यानी कि मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र जी का है और इनका जन्म 15 फरवरी 1935 को अयोध्या यूपी में हुआ था और इनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद बशीर जी। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की पढ़ाई की उन्होंने। साथ ही साथ इनका जो ये उर्दू के प्रोफेसर और एक बहुत ही प्यारी बहुत शायर रहे हैं, और साथ ही साथ इनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उनकी गजलें आम लोगों की जुबान तक पहुंची और आज भी, यानी कि उनकी गजलें हैं वो, मतलब आज क्या जन्मों जन्मांतर तक याद किया जाएगा और ये आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। सो इन्हीं की ये प्यारी शायरी थी, यानी कि बशीर बद्र जी की, जो कि 91 में, यानी कि 91 के होकर ये हमें, यानी कि दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। सो आप क्या कहना चाहेंगे? अखिल सर भी मेरे साथ हैं।
1: मैं तो बस यही कहूँगा कि एक शायर जो है उनका मतलब इस समय जाना एक बहुत ही बड़ा एक वो है, क्या कहते हैं,
0: शायर है,
1: हाँ शायर,
0: उर्दू प्रोफेसर, हाँ, है,
1: पोइट्री की, उसमें एक बहुत बड़ा लॉस है और ये आसानी से भरने वाला नहीं है। उर्दू के बहुत ही अच्छे और नामचीन पोइट में से एक थे बशीर सर। बशीर सर की मैंने बहुत सारी वीडियोस और सब सुनी हुई हैं, मतलब आज कुछ कहने के लिए ऐसा शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ।
0: क्या बात है जी। चलिए फिलहाल हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। श्रोताओं, यूं ही आप कनेक्ट रहिए आर्जरीना के साथ और अखिल सर मेरे साथ है, ढेर सारी बातें करेंगे। और एक मतलब एक सर हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं, उनका क्या नाम है क्या नाम नहीं है उनसे रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ। और समय की बात करूं तो 9:27 हो चुके हैं। और श्रोताओं, जैसे कि हमने बात आपसे कही भी थी कि आज हमारे साथ एक सर कनेक्ट होने वाले, तो चलिए उनसे रूबरू करवाते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप?
8: मैं बहुत अच्छा हूं।
7: सर, आप अपने बारे में जरा हमारे श्रोताओं को बताइए।
8: मेरा नाम मनोज मनु है, मुरादाबाद से ही मैं बिलोंग करता हूं। आज एक शायरी की दुनिया में बहुत बड़ा घटा हुआ है।
7: बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा आपने।
8: बहुत अजीम शायर जनाब बशीर बद्र साहब इस दुनिया से कूच कर गए। तो मैं सोचता हूँ कि आज उन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी, उन्हीं के अशार के बारे में बातचीत होगी, और उनसे जुड़ी जो भी कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे।
7: बिल्कुल सर,
8: क्योंकि मेरा मानना है एक शायर, एक कलाकार कभी मरता नहीं, वो अमर,
7: वो हमेशा हमारे दिल में अमर रहते हैं सर।
8: जी जी जी, तो यही अमरता उनकी हमारे बीच बनी रहे। तो

0: बस इस चीज पर बात होगी।
1: हाँ बिल्कुल सर, सही कहा आपने। और जो अभी न्यू रिलेशनशिप में आए हैं या जिनके टूटे हुए दिल है, वो एक शायरी होता है जो उनको जोड़ पाता है, कनेक्ट कर पाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन हकीकत ये है कि शायरी का दायरा और बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। ये सिर्फ टूटे दिलों को ही नहीं जोड़ता, टूटे दिलों को बनाता
1: भी है,
0: और ये सामाजिक संदेश भी देता है और बहुत सारी चीज। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी इसमें चीज नहीं है, कोई ऐसा इसमें सब्जेक्ट नहीं है जो इसमें ना पिरोया हो। ये अपने आप में बहुत बृहद, बहुत बड़ी, अपने आप में ये एक संसार सा है। तो शायरी अपने आप में बहुत अजीम चीज़ है, और शायर होना ये ऊपर वाले की मर्जी पर ही निर्भर करता है। ऊपर वाला
1: सर, ऊपर वाले की मर्जी के साथ साथ आपके अंदर का खुद, ये आपको दूसरा इंसान बोले कि तुम ये काम करो, जब तक आपका मन ना हो तो आप कैसे काम कर पाओगे।
0: जी जी सही कह रहे हैं आप। दरअसल यही है, मैं अभी यही कह रहा था कि ये सलाहियत केवल ईश्वर के प्रदत्त है। जब वो जिस पर नवाजता है उसी को उसका हक देता है।
1: बिल्कुल।
0: दरअसल होता ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि कार पे कसरत रख जाती है, ऐसा हो तो जाता है, लेकिन जो उसकी नेचुरलिटी है, जो उसका स्वाभाविक अंदाज है, वो कहीं छूट जाता है। आपने देखा होगा बहुत से शायर ऐसे जो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा आला दर्जे से नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनके पास इतना हुनर उस ईश्वर ने प्रदान किया है जिसके बारे में कहना मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़े लोग दो मिसरे नहीं कह पाते। और जिस पर वो उतारता है उस पर पूरी नज़में, गज़लें, सब कुछ उतार देता है। बशीर बद्र साहब के बारे में मैं कहूँ कि वो एक टैलेंटेड व्यक्ति भी रहे और खुदा ने उन्हें नवाजा भी इस सलाहियत से, और हर दिल अजीज बने रहे। वो लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया। जब मुशायरे की शुरुआत उन्होंने की तो वो मुशायरों पर इस कदर छा गए कि उनके बिना मुशायरे अधूरे लगते थे।
1: क्या बात है
0: जी।
1: तो एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद श्रोता आप सभी कनेक्ट होंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। बस आप बने रहिए। अगर आपके दिल में भी है कोई शायरी तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर मैसेज करिए। और आपका जो शायराना अंदाज होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए फिलहाल एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो 9:38 हो चुके हैं और हम बशीर जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्हीं की एक शायरी है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। क्या बात है, लगता है सर ने भी यही शायरी निकाल रखा है।
1: ये निकालने की बात नहीं, दरअसल चीजें हैं जो मौजूद रहती हैं और जो शायरी है, जो शायर है, जो शायरी को पसंद करते हैं उनका सिस्टम भी आप ऐसे ही समझिए जैसे क्रिकेट का जो हिस्ट्री होती है
0: आज, हाँ,
1: मतलब बॉल बाई बॉल ओवर याद रह जाता है। तो बस ये शायरी के बारे में भी है।
0: तो आप उनकी कौन सी शायरी सुनाना चाहते हैं सर?
1: देखिए शायरी मैं उसे साथ लेके चलूंगा, जैसे चूंकि आज वो इस दुनिया से कूच कर गए तो मैं उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उनका परिचय मैं दे दूँ। हालांकि
0: मैंने सुना है कि वो मुरादाबाद भी आए हैं।
1: हाँ, मुरादाबाद अक्सर जितने भी नुमाइश के शायरे मुशायरे हुआ करते थे तो उसमें जो राष्ट्रीय मुशायरे हुआ करते थे, अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे हुआ करते थे, उसमें हमेशा जब तक उनका दौर रहा वो हमेशा उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है, यहाँ पर उपस्थित रहे हैं वो। और इसके बाद उनकी बीमारी की वजह से उन्होंने जब मुशायरों में आना छोड़ा तब ये समझ लीजिए कि जो अध्यक्षता जिसे निजामत बोलते हैं, जिसे सदर बोलते हैं, तो जो सदारत है वो फिर दूसरे कंधों पर आई। यानी कि जब तक वो मुशायरों में बाध्य रहे तब तक सदर उसके अध्यक्षता उन्हीं के हाथों में रही। एक लंबा सफ़र बशीर साहब ने तय किया है अपनी ज़िंदगी का, सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मुरादाबाद से रिश्ता इसलिए भी ज़्यादा ख़ास है क्योंकि उनके जो नौकरी रही वो मेरठ जिले में रही, इसलिए यहाँ से वाबस्ता रहते ही थे। बशीर बद्र साहब उर्दू साहित्य में बड़े फेमस
0: प्रोफेसर भी रहे हैं,
1: बड़ा प्रिय नाम रहा। आधुनिक दौर के तो वो दिग्गज शायर हैं। उनके बारे में बताऊं मैं कि 15 फरवरी 1935 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। वैसे ये नसीराबाद के मूल पैतृक, इनका जो गांव है वो नसीराबाद है, लेकिन चूंकि इनके फादर भी पुलिस सेवा में सेवारत थे तो जब फैज़ाबाद उनका ट्रांसफ़र हुआ इसके बाद इनका जन्म यहाँ अयोध्या फैज़ाबाद में रहा। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए, एमए और पीएचडी की भी हासिल की। उसके बाद मेरठ कॉलेज में ये लंबे समय तक प्रोफेसर रहे, वहाँ के प्रिंसिपल रहे। वहाँ एक हादसा भी इनके साथ जुड़ गया। 1987 में जब मेरठ में दंगे भड़के तो उस समय इनके घर में जो आगजनी हुई तो उसमें बाकी सब कुछ के साथ जो उनका कलेक्शन, उनकी जो डायरियां थी जिसमें अजीम अजीम शेर, वो शेर जो कई बार दोबारा नहीं आते, वो उस दंगे की, उस आग की, उस नफरत की आग की भेंट चढ़ गए थे। और इस चीज़ ने उन्हें बहुत तोड़ भी दिया था, जिसके बाद वो यहाँ से भोपाल कूच कर गए और फिर वहीं के होके रह गए। तो
0: एक मुझे भी उनकी बहुत प्यारी जो शायरी है
1: जी,
0: वो मेरे जहन में है, तो मैं भी सुनाऊं?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताएं।
0: मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ी, मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कभी कहा नहीं।
1: कहा नहीं, जी हाँ जी हाँ।
0: अजीब लोग हैं मेरी तलाश में, मुझको वहाँ पर ढूंढ रहे हैं जहाँ मैं नहीं हूँ।
1: नहीं हूँ, बिल्कुल सही बात।
0: घर से मस्जिद है, बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन कहाँ आते हैं जमाने में।
1: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल बशीर साहब की जो खासियत थी वो यही थी कि इनकी जुबान बहुत सरल, बहुत मीठी और जरा से मतलब दो मिसरे जो शेर में होते हैं उसमें अपनी मुकम्मल बात कह दिया करते थे, और इसी इतने आसान लफ्ज़ों के साथ वो कहा करते थे कि लोग सोचते रह जाते थे कि हाँ भाई इतनी आसानी से भी कोई इतनी बड़ी बात कही जा सकती है। तो खैर, सरकार ने इस बात को महसूस भी किया और इसके लिए उन्हें साहित्य में जो ये इनका योगदान रहा है उसके लिए उन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और शेर तो जैसे आप भी उनके बोल ही रहे हैं कुछ मैं शेर पढ़ देता हूँ उनके भी।
0: हाँ, हाँ, जी।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
0: शाम हो जाए,
1: ये इतना मकबूल, इतना यादगार शेर रहा जिसने उन्हें बहुत आइडेंटिटी दी। और आज देखिए वो जिंदगी की शाम आज तय थी, लेकिन किसी शायर ने कहा है कि गमे हस्ती से भी कहाँ फुर्सत, मौत आई अगर हयात गई। तो ऐसी बातें, ये एक पड़ाव है, चलती रहती हैं, लोग जिंदा रहते हैं जब अपने शरीर में होते हैं और इसके बाद जिंदा रहते हैं यादों में, स्मृतियों में। ये जो कुछ मुख्तलिफ शेर हैं इनके ज़रिए वो पूरे दुनिया के जहन में बने रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आप बता रहे थे कि दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। देखिए आप कितने आसान लफ्जों में बशीर साहब ने बात कही। और हालात हाजरा जो वर्तमान समय है जब लोग अपने अपने मतलब में घिरे हुए हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक जदीद शेर पढ़ा, बहुत मुझे अच्छा लगता है। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो।
0: क्या बात है,
1: ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। तो बशीर साहब मंच के बेताज बादशाह रहे हैं, जब वो मंच पर होते थे तो ये समझे कि फिर स्थिति ये होती थी कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी न रही। और इसी फन ने उनको हमेशा, उनको किसी भी मुशायरे में, ज़्यादातर मुशायरों में उन्हें सदारत पर रखा जाता था और पब्लिक उनके, उनको सुनने के लिए ही सुबह सुबह तक एक पैर पर खड़ी होकर भी उनको सुना करती थी और उनके लिए रुकती थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब मुशायरों का दौर चलता है तो वो बाद नमाज़ ईशा यानी कि रात के 9-10 बजे के बाद शुरू होता है और फज्र तक यानी कि सुबह 4-4:30 बजे तक चलता है। तो लोग जब उनको सुनने के लिए रुकते थे तब वो एक कामयाब मुशायरा माना जाता था।
0: क्या बात है जी। सर हम एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ श्रोताओं, और कमर्शियल ब्रेक का भी टाइम हो गया है।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
3: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
2: अरे वाह।
3: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
2: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: क्या बात है जी, कुछ किशोर कुमार जी की आवाज में अपने गाना एंजॉय किया। मुसाफिर हूँ यारो, और यूं ही गुजर जाता है। सो समय की बात करूँ तो 9:55 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हैं। साथ ही साथ एक और शायरी बशीर जी की, जिन्होंने लिखी है, बहुत ही प्यारा अंदाज है उनका। पत्थर मुझे कहता है मेरे चाहने वाले, पत्थर मुझे कहता है मेरे चाहने वाले, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। यही बहुत है कि तुमने पलट के देख लिया, ये लुफ्त भी मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा है। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है।
1: क्या
0: हाँ
1: बात है, आपका तो वास्तव में
0: जी सर, तो आप बताइए।
1: नहीं, बशीर साहब की शायरी वास्तव में ऐसी है कि कोई भी उसमें खो जाने के लिए मतलब इसमें अचंभे की बात नहीं है। आपने जो शेर पढ़े हैं यकीनन इनके मकबूल, इनके बड़े फेमस शेर हैं। मैंने खुद सुना है, खड़े होकर सुना है दादा को।
0: अच्छा, मैंने मैंने वो मैंने भी सुना है उनको, बल्कि सामने से।
1: जी,
0: हाँ जी,
1: तो दरअसल हुआ ये कि जब मेरठ में जो दंगे हुए उसमें उनका जो डायरी वगैरह सब जल गया, घर जल गया, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ दिल पर बड़ा गलत असर डालती है। और सिर्फ जहन ही नहीं बल्कि माशी तौर पर भी लोगों को कमज़ोर कर देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
1: हादसे
0: आपने।
1: इतने गहरे हो जाते हैं कि लोग डीप में चले जाते हैं। तो बशीर बंद साहब के साथ ये एक बेहतर बात रही कि ये जो मुशायरों में जब उनकी आमद हुई तो इस आमद ने, उनकी उपस्थिति ने हम श्रोताओं के साथ साथ उनको भी ये फैज दिया, ये लाभ हुआ कि वो अपने उस चीज़ से उबर आए। और फिर जब उनका सिलसिला चला तो ये सिलसिला आज तक कायम है। देखिए, चीज़ें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। इनका एक मैं मकबूल शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद इन्हें खिलाज अकीदत,
0: बिल्कुल
1: ये ऊपर वाला इनको जन्नत अता फरमाए।
0: बिल्कुल सर।
1: जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, ये देखिए जिंदा दिली का नमूना देखिए। हालांकि इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन शेर देखिए, शायरी अपने आप बताती है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।
0: क्या बात है,
1: आंखों ने कभी मील का पत्थर
0: पत्थर
1: नहीं
0: नहीं
1: देखा,
0: देखा।
1: यही उनका अंदाज था। और एक शेर दिल अंदाज से वो इस दुनिया से कूच कर गए। हालांकि इस सराय फानी से वो कूच कर गए हैं, लेकिन हमारे दिलों में वो ताकायामत जिंदा रहेंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ताकायामत जिंदा रहेंगे।
0: क्या बात है। और इसी के साथ एक गाना भी है, चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना, यानी कि चाहे वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जो उनकी शायरी है, उनकी यादें हैं हमारे दिल में, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। और मैं भगवान से यही कहूंगी कि उनकी आत्मा को शांति दे।
1: शांति प्रदान करें।
0: चलिए सर, इसी के साथ हम लेते हैं जाने की इजाजत। श्रोताओं, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, ढेर सारी बातें करेंगे। और अभी के लिए आपने रेडियो नहीं बंद करना है, बल्कि रेडियो की सुई चालू रखनी है। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर्स
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
0: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
4: सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी 24 घंटों में खराब मौसम, तेज आंधी, भारी वर्षा एवं वज्रपात की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी नगर व क्षेत्र वासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें एवं पेड़ों, बिजली के खंभों तथा कमजोर निर्माणों से दूर रहें। मौसम खराब होने पर खुले स्थानों में खड़े होने से बचें तथा बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें एवं सतर्क रहें। धन्यवाद।

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है, और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले अपना नाम बता देता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद, और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन, मेरी प्यारी दोस्त
1: आरजे रीना।
0: यस आरजे रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, और सबसे मजेदार बात, स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए आखिर यह योजना कैसे काम करेगी।
1: जरूर, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
0: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
0: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
1: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
0: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
1: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
0: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
1: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
0: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
1: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
0: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
1: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
0: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
1: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
0: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों,
1: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
0: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
1: और इससे

0: उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
1: दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गांव या शहर तक सीमित था, अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
0: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
1: सही कहा आपने आरजे रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा
0: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करें, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखें और कैसे ब्रांडिंग करें और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाएं।
1: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
0: बिल्कुल, कल्पना कीजिए किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाइयां, स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
1: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
0: दोस्तों सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
1: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
0: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
1: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
0: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
1: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
0: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
1: तो दोस्तों अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
0: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए।
1: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे तभी सच मायनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।
0: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: तो मैं हूँ आरजे।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: कह दूं तुम्हें
6: हाँ
5: या चुप रहूं
6: ना,
5: दिल में मेरे आज क्या है,
6: क्या है?

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी 24 घंटों में खराब मौसम, तेज आंधी, भारी वर्षा एवं वज्रपात की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी नगर व क्षेत्र वासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें एवं पेड़ों, बिजली के खंभों तथा कमजोर निर्माणों से दूर रहें। मौसम खराब होने पर खुले स्थानों में खड़े होने से बचें तथा बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें एवं सतर्क रहें। धन्यवाद।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी 24 घंटों में खराब मौसम, तेज आंधी, भारी वर्षा एवं वज्रपात की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी नगर व क्षेत्र वासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें एवं पेड़ों, बिजली के खंभों तथा कमजोर निर्माणों से दूर रहें। मौसम खराब होने पर खुले स्थानों में खड़े होने से बचें तथा बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें एवं सतर्क रहें। धन्यवाद।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी 24 घंटों में खराब मौसम, तेज आंधी, भारी वर्षा एवं वज्रपात की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी नगर व क्षेत्र वासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें एवं पेड़ों, बिजली के खंभों तथा कमजोर निर्माणों से दूर रहें। मौसम खराब होने पर खुले स्थानों में खड़े होने से बचें तथा बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें एवं सतर्क रहें। धन्यवाद।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।